मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: सभा की शुरुआत रोज ही की तरह समाचारों के साथ हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और

0: मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। NTA ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinzo Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhya. It will bring together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The event will provide a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building and inclusive digital connectivity. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of Jammu and Kashmir High Court in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah disclosed this

ईश्वर की भक्ति हमें अद्भुत शक्ति देती है। हमारे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, मन शांत और सरल हो जाता है। हम अपने मन को अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। ईश्वर के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद मात्र से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। भगवान केवल एक अनुभूति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसे आपको स्वयं ही अनुभव करना होता है।

जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें हजार दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जब हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हजार कदमों के साथ हमारी ओर आता है।

यदि आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। जिस प्रकार दूध में उपस्थित होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं देता, फूल में होते हुए भी खुशबू किसी को नजर नहीं आती, उसी प्रकार अपनी बुराई, दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी स्थानों पर उपस्थित ईश्वर कभी कभी हमें नजर नहीं आता।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: गीता में कर्म योग पर इतना विशद विवेचन है कि मद भगवत गीता स्वयं कर्म का पर्याय बन गई। एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन है। इसमें एक बात ये स्पष्ट होती है, हमारे हाथों में केवल कर्म ही है, फल पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है। पुरुष व महिलाएं जब भी आराधना स्थल पर जाते हैं, श्रद्धा भाव से ईश्वर को जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वह भी तो ईश्वर का ही दिया होता है। हमारा तो वहाँ भी कर्म ही होता है। जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी तो कर्म पर ही आधारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष का मूल आधार भी कर्म है। यह भी सत्य है कि कर्म रहित जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। कहा भी जाता है, अकर्मण्य व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है। परिवार, समाज, देश के लिए वो भार स्वरूप होता है। येषां विद्यान तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्म है ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप जानते हैं, किसान वर्षा होने के बावजूद यदि खेत में बिजाई और निराई नहीं करता है, खेत की समय पर उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है। अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं भी अपना अध्ययन कड़ी मेहनत से नहीं करते हैं, यानी एकलव्य जैसी एकाग्रता, कलाकार जैसी सतत साधना और रियाज नहीं करते हैं, तो सफलता की उम्मीद करना बेमानी होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसे कर्म की प्रधानता तो स्वीकार करनी ही होगी। जीवन में कर्म ही एक ऐसा योग है जिसके करने से हम अपना अभीष्ट लक्ष्य अर्जित कर पाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात, मात्र इच्छा करने अथवा हवा में किले बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए करना होता है उद्यम, परिश्रम। उसी प्रकार जैसे जंगल में सिंह सोया रहता है,

0: विचरण नहीं करता है, तब ऐसे में उसके मुख में स्वतः ही कोई आहार नहीं जाता है, यानी शेर को भूखा रहना होता है। कर्मयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, व्यक्ति का कर्ता भाव। जहाँ भी व्यक्ति कर्ता भाव बनकर कर्म करता है, वहीं प्रकृतिजन्य परिणाम जुड़ जाते हैं। अतः उचित यह है कि कर्म भी करें और कर्ता भाव का बंधन या अहंकार व्यक्ति पर हावी न हो। व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कर्म तो करना ही होता है। कर्म ही लक्ष्य प्राप्ति अथवा सफलता का मूल स्रोत होता है। जीवन यात्रा में चरैवेति चरण वै मधुविदंती ही, यानी चलते रहो निरंतर कर्म करते रहो। अनवरत चलने वाले पथिक कर्म योगी को ही जीवन के माधुर्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम खेती हराम वास्ते। आज जानकारी देंगे कीटनाशकों के छिड़काव में सावधानियां। मानसगान का समय रहेगा 7:20। आज हम आपको सुनवाएंगे भाग संख्या 341। सुप्रभात में 7:30 पर बात करेंगे श्रम की महत्ता, नेत्रदान महादान और सत्यमेव जयते। साथ ही हिंदी कहानी पाठ कवि गुरदीप सिंह सोहल की। सुगम संगीत में सुनिए कुछ भजन 8:45 पर। 9:10 पर मरुमंगल में आज कलाकार होंगे श्रवण जौड़ा। 9:30 पर फिल्म संगीत और आज के फनकार प्रातः 10:00। प्रातः 11:00 सुनिए प्रतिक्रिया आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला। कार्यक्रम सैनिकों के लिए 12:05 पर और कुछ गजलें 12:30 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत 12:50 पर खेत खलिहान में बात करेंगे मूंग मोठ की फसल में कीट रोग नियंत्रण। घरांगन का समय 1:05। आज बात करेंगे ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, पोषण और संतुलित आहार। उर्दू सर्विस के प्रसारण 2:00 से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये प्रसारण केवल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और एफएम पर रहेगा। शाम 5:00 सुनिए युववाणी। आज बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक जागरूकता, विज्ञान और मानव जीवन, जीवन में धैर्य, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत और आज का इतिहास। सरायकी शाम 6:05 पर और चौपाल आप सुन पाएंगे संध्या में 7:00। चौपाल में आज गीतारों गजरों आपको सुनवाएंगे, साथ ही साथ बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी देंगे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से रात्रि 8:00 और विधानसभा समीक्षा रात्रि 8:15 पर। सुगम संगीत 9:15 पर और हमारा विशेष कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू रात्रि 9:30 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने

कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: entitled to. National Testing Agency NTA has said that its Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students and rejected concerns about it being expensive. An NTA Answer Key Challenge is an online process where candidates who take an exam like JEE Main, NEET or UGC NET can object to errors in the provisional answer key. In a social media post, NTA said, if even a single candidate challenges a question and the subject experts accept the challenge, the revised answer key applies to every candidate who wrote the exam. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy, HPEC, to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi. In badminton, Indian shuttlers will be in action today in the men's and women's doubles quarterfinals at the BWF World Championships 2026 in New Delhi. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में आज जानकारी देंगे कीटनाशकों के प्रयोग के समय सावधानियां।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज अपन बात कर सियां कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग करता टेम अपन के सावधानियां रखनी चाहिए। आज विज्ञान को युग है और इन युग में जब तक मनुष्य शरीर पशु पक्षी अंग बीमारियां खातर नित नई दवाइयों को इस्तेमाल या फिर यहाँ केसका का आविष्कार होने ला रहे है, बटे कृषि क्षेत्र गमा फसलों की बीमारियां या फिर कीड़ा से बचाने खातर या फिर ज्यादा फसल लेने खातर कीटनाशक जिकी दवाइयां है बांगो ज्यादा प्रयोग होने लग गयो, तो अपनी बात इनकार कौन कर सका नहीं के खेती का मां कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से ज्यादा उत्पादन बढ़ियो है। फिर भी इन दवाइयों को असावधानी पूर्वक प्रयोग करने से कई तरह की दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़े। आज कृषि का मां या फिर केस का खेती का मां कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हर किसान के लिए जरूरी हो गयो है। ये कीटनाशक दवाइयां किसान भाइयों मनुष्य खातिर नहीं बल्कि पशु है या फिर पक्षी है बांग खातिर भी बहुत ज्यादा घातक है। इन वास्ते इनका प्रयोग में अपन सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दवाइयां कई बार सांस है मुंह है नाक है आंख है इनसे अपने शरीर गमा पुगजे और खून में मिलने से कई तरह की बीमारियां भी पैदा करती है। आजकल घर गमा चींटियां है मच्छर है मक्खी है खटमल है या फिर तिलचट्ठा है जका मारने खातर अपन दवाइयां प्रयोग करा तो ये कई बार की होगा अपना खाना पीने का सामान के सागे भी मिल जाए जका से बहुत ज्यादा दुर्घटना बड़ी हो सके। तो अपन कीटनाशक दवाइयों को प्रयोग करते टाइम कई तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी है और भी की सावधानियां है आज आप बात करा। लोग कीटनाशक दवाई खरीदता टेम अपन ने बीम पर लिखा जगह नियम है नहीं बे पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जगह सो अपन पतो लाग सके का कीटनाशक दवाई कितनी पावर की है और किसी किस्म की है और कितनी जहरीली है। कीटनाशक दवाइयों के पैकेट पर लिखी तिथि यानी कि जकी बिंग उत्पादन तिथि है एक्सपायर तिथि है वह अपन पढ़ लेनी जरूरी है ताकि अपन बिन काम में लेता टेम अपन ठा लाग जाए का आ दवाई कितनी नुकसान कर सके या फिर फायदा कर सके। अपन जिकी दवाई अवधि पार होगी और बिंगी एक्सपायर डेट खत्म होगी तो अपन बा दवाई कदी भी नहीं खरीदनी चाहिए कदी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिस तो अपनों पीछे बेकार जा सके। दवाई छिड़कने से पहला छिड़कने वाला जो यंत्र है बना अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए कि भी प्रकार का जो स्प्रिंकलर नोजल है या फिर जो छिड़काव करने वाला दूसरा यंत्र है बना अपन मुंह कदी नहीं खोलना चाहिए खुला हाथ से भी कदी नहीं खोलना चाहिए और अपन कई बार किसान भाई लोग यहाँ भी देखा नहीं कहे मुंह फूंक मार दे तो बात बहुत ही माड़ी बात है इसे अपन कतई नहीं करना चाहिए। यहाँ करने से क्यों किसान भाइयों की दवाई अपने शरीर के ऊपर गिर जाए कई बार आंख में पड़ जाए या फिर सांस के द्वारा अपने शरीर में पुग जाए तो नुकसान को अपने सामना करना पड़ सके। इनके अलावा किसान भाइयों दवाई छिड़कने वाला जो व्यक्ति है वो पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए बिंग शरीर पर कई भी तरह को घाव या फोड़ो नहीं होना चाहिए क्योंकि घाव या फोड़ा के ऊपर कई बार दवाइयां छिड़कते टाइम अपने पड़ जाए नहीं तो फिर नुकसान हो सके। इनके अलावा दवाइयां को छिड़काव अपने की करना चाहिए सुबह या शाम का टाइम ही करना चाहिए। दवाई की किस्म और मात्रा फसल की अवस्था का ध्यान में रख के अपन करनी चाहिए। जे रस चूसने वाला कीड़ा है जिया चेपा है हरा तेलो है पेद मक्खी है जे ए हो नहीं तो भी वास्ते अपन की करना चाहिए फास्पीमिडॉन मिथाइल डेमोटोन या फिर डाइमिथियोट ये दवाइयां अपन प्रयोग करनी चाहिए। जे कटन वाला या चबान वाला कीड़ा फसल गमा हो तो अपन कॉन्टेक्ट जकन आप उधरविश भी कह दिया वो अपन काम में लेना चाहिए। और किसान भाई दवाई छिड़कता टेम शरीर को पूरा हिस्सो है वो अपन पूरा ढकेड़ होना चाहिए जे आंखें पर चश्मा पहनना जरूरी है हाथों पर रबड़ गज का मोजा है या फिर दस्ताना है बेपैर लेना चाहिए मुंह पर मास्क लगाए होना चाहिए जैसे क्यों क्या कर मुंह और नाक दोनों ढकेड़ो रहे। और इनके अलावा किसान भाइयों अपने पैरों का मजबूत लंबा बूट

है, बेपेर लेनी चाहिए, और सिर के ऊपर टोपी या फिर कपड़ो बांध लेना जरूरी है। दवाई को छिड़काव है वो अपन लगातार नहीं करना चाहिए, बीच बीच में थोड़ो आराम कर लेना चाहिए। जिसमें कई बार हो जाए कि अपन लगातार दवाई छिड़का और अपनों कई बार उबाक आने ला जाए, उल्टी आने ला जाए, फिर जी मचलन ला जाए, तो इसी बात होती हुए तो अपन आराम करना चाहिए। और ज्यादा तकलीफ होती हो किसान भाई हो तो तुरता फुर्त डॉक्टर जी कन जाके अपने राय ले लेनी चाहिए, इलाज कराना चाहिए। इन अलावा किसान भाई ये बात की भी ध्यान रखनी जरूरी है कि दवाई छिड़कते टाइम अपने बीड़ी है, सिगरेट है, जर्दो है या फिर खाने पीने की चीजें भी काम नहीं लेनी है। और जे रोटी पानी खावा, चाह पानी पिया तो अपन ने अच्छी तरह हाथ साबुन धोगे और फिर ही खानो पीनो करना चाहिए। दवाई को छिड़काव अपन ने हमेशा ही पी दिशा में करना चाहिए जिसकी दिशा का मां हवा चलन ला रही है। विपरीत दिशा में अगर हवा चलन ला रही है तो अपन दवाई नहीं करनी चाहिए। जे विपरीत दिशा में अपन दवाई छिड़कांगा नहीं तो दवाई अपने ऊपर आगे पड़ेगी जो अपन नुकसान हो सके। और इन अलावा बहुत ज्यादा जरूरी एक बात आ भी कि कीटनाशक जो दवाइयां का डब्बा है नहीं बन अपन ने खाने पीने की चीजों तो दूर रखना ही रखना है। इन अलावा जो छोटा बच्चा है या फिर पालतू जानवर है बांसू भी अपन दूर रखना चाहिए। और हो सकता किसान भाई जी अपन दवाई को प्रयोग करो तो अपन भी डिब्बे जगह हाथों हाथ नष्ट कर देना चाहिए। और खान पीन का जगह बर्तन है, भंडा है या फिर जकी चीज का मां दवाई घोलन ला रहे हैं बाल्टी है तो बिना भी अच्छी तरह धोगे साफ करके फिर ही न्यारी रख देनी चाहिए ताकि छोटे टाबरा या फिर पशुओं के संपर्क में ना आवे। इनके अलावा किसान भाइयों अपने दवाई छिड़कने से पहला कि थोड़ा बहुत खा पी लेना चाहिए ताकि दवाई को जो असर है वो अपने पर डायरेक्ट ना हो। तो हाँ छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप दवाई को छिड़काव करना है कि अपनी फसल पर कि अपने स्वास्थ्य पर भी की तरह को विपरीत जो को प्रभाव है वो ना पड़े। तो अब मैं खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।

आज से आरंभ होता है श्री रामचरितमानस के सातवें तथा अंतिम सोपान उत्तर कांड का संगीतबद्ध पाठ। मयूर कंठ की हरित आभा वाले नीलवर्णी शोभाधाम पीताम्बरधारी धनुषवाण धारण करने वाले रघुकुल मणि की वंदना का पद है प्रारंभिक श्लोक। भक्त कवि ने भगवान शंकर का वंदन भी किया है जो भक्तों को वांछित फल देते हैं, जिनकी कृपा से जीव को विषय वासनाओं से मुक्ति मिलती है। 14 वर्षों की अवधि समाप्त होने में मात्र एक दिन शेष है। अयोध्या निवासी नर नारी, महलों में माताएं सभी उत्कंठित हैं कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण अब तक क्यों नहीं आए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस गान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम सुप्रभात।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: श्रोताओं, सुनेंगे कहानी पाठ, कवि गुरदीप सिंह सोहल की रचना।

मेरी कहानी का शीर्षक है मम्मी खाना दो। मैं अपनी कक्षा के कमरे में बंद हो चुका हूँ। शायद हमारा चपरासी यह भूल गया था, या कमरा बंद करते समय उसने देखने की आवश्यकता नहीं समझी होगी कि डेस्कों, बेंचों, ब्लैक बोर्ड, पंखों, स्विचों तथा बल्बों के अतिरिक्त कमरे में कोई अन्य भी है। वह अपनी ही मस्ती में आया होगा, बीड़ी फूंकता, गुनगुनाता, झूमता, लापरवाही से कमरे बंद करके चला गया था। उसने सोचा होगा कि रोज की तरह बच्चे अपने अपने घरों को चले गए होंगे, लेकिन आज उसकी यह सोच झुठला गई, मात खा गई। सुबह से ही तबीयत कुछ खराब सी थी, कक्षा में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। दिन भर बैठे रह पाना मेरे लिए आसान काम नहीं था, फिर भी जैसे तैसे पढ़ रहा था। जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तब मैंने पीछे पीछे डेस्कों के बीच पड़ी बेंच पर आराम करना ठीक समझा। दवा की खुराक घर से लेकर चला था, कब मुझे नींद ने याद बोचा, कब छुट्टी हुई, कब सहपाठी चले गए, कब चपरासी कमरा बंद करके चला गया, तनिक भी मालूम नहीं पड़ा। सहपाठी भी मुझे जगाकर साथ नहीं ले गए। उन्होंने सोचा होगा कि छुट्टी होते ही मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, लेकिन उन बेचारों को मेरे वहां सोने का पता ही नहीं था। इस मामले में वे बेचारे दोषी नहीं थे। कितनी देर तक मैं सोता रहा मालूम नहीं। जब नींद खुली, खिड़कियों की दरारों में से बाहर झांकने की हिम्मत की तो बाहर काफी रात घिर आई थी। अंधेरा हो गया था। कमरे के बाहर बरामदे में चांदनी दिखाई दे रही थी। कमरे में अकेले रहकर मुझे डर सा महसूस हो रहा था। भूख प्यास भी सता रही थी। कमरा बाहर से बंद था और मैं हर प्रकार से असहाय, बेबस सा कमरे का कैदी। बीच में 2 दिन का अवकाश आ गया। मुझे कोई ऐसा उपाय सूझ नहीं रहा था जिससे मैं अपनी भूख प्यास पर काबू पा सकता। हार कर अंधेरे में गिरता पड़ता मैं बिजली के बटन तक पहुंच ही गया और बत्ती जलाने में सफल हो गया। बस्ते में से कॉपी पेन निकालकर सोचना शुरू किया। जो भी सूझता गया पेन चलता गया और पन्ने पर उतरता चला जा रहा है। घर में मम्मी पापा का क्या हाल हो रहा होगा मेरी समझ से बाहर है। शाम ढले 4:30 बजते ही दरवाजे पर मम्मी मेरे आने का इंतजार करने लगती। जब तक मैं कमरे में नहीं पहुंच जाता, बस्ता ठिकाने नहीं लगा देता, मम्मी बाहर ही रहती, फिर धीरे धीरे मेरे पास आती, दिन भर की पढ़ाई का हालचाल पूछती, एक कप चाय पिलाती और होमवर्क के लिए बिठा देती। अक्सर ऐसा हो जाता कि कभी मैं अपने साथियों के घर चला जाता, मम्मी पापा को मेरी खोज में भेजती और पापा घर घर तलाशते मुझे घर लेकर आते। घर में घुसते ही मम्मी की डांट फटकार पड़ती, कभी कभार एक दो हाथ भी पड़ते। इस गुनाह के बदले कि क्यों मैं पहले घर जाने की बजाय किसी भी सहपाठी के घर चला जाता। मुझे कहीं भी जाने से पहले हमेशा घर जाना चाहिए ताकि मम्मी की चिंता खत्म हो जाया करती। मैं बालक बुद्धि का जो ठहरा दूसरे दिन भूल जाता। आज जब मैं

नहीं पहुंच पाया तो मम्मी ने परेशान होकर अंदर बाहर चहलकदमी प्रारंभ कर दी होगी। उनका दिल बार बार किसी भी अनहोनी को लेकर कांप जाता होगा। पल पल घबराहट बढ़ रही होगी। वे बार बार मुझे कोसती जा रही होंगी कि बार बार समझाने पीटने पर भी मैं सीधा घर क्यों नहीं जाता। क्या पता मैं अपने किस साथी के यहाँ मिलूंगा। पापा थके हारे दफ्तर से घर लौटे होंगे। मम्मी के बुझे रोने को बेताब चेहरे को देखकर पापा ने मामला समझने की कोशिश की होगी, लेकिन पापा के कुछ भी पूछने से पहले ही मम्मी ने अपनी चिंता बता दी होगी। पापा को गरम गरम चाय पिलाने की अपेक्षा उन्होंने यही कहा होगा कि मैं अभी तक नहीं लौटा हूँ, जाने कहाँ दफा हो गया, कम वक्त कहीं का। पापा ने हर प्रकार से उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की होगी कि जरा सा सब्र से काम लें, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, परंतु मम्मी पर पापा की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा होगा। वे अपनी ही जिद पर अड़ी होंगी कि मुझे तुरंत खोज कर लाओ वरना उनका हार्ट फेल हो जाएगा। हार कर पापा ने बड़ी मुश्किल से स्कूटर खींचा होगा, सुस्ती से किक मार कर स्टार्ट किया होगा और अजमंजस में पड़े सोचों में डूबते उतरते मुझे तलाशने चल दिए होंगे। एक एक कर उन्होंने मेरे तमाम सहपाठियों के यहाँ देखा होगा, मगर हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी होगी। वे उनसे बार बार यही पूछते होंगे कि उन्होंने मुझे अंतिम बार कब और कहाँ देखा था, परंतु सहपाठी उन्हें कुछ भी बता पाने में नाकाम रहे होंगे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से किसी को भी बताए बिना मैं डेस्कों के पीछे सोने जा रहा था। किसी के भी यहाँ मुझे ना पाकर पापा के मन में तरह तरह के बुरे विचारों ने घर कर लिया होगा कि कहीं उनके बेटे का किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि आजकल कदम कदम पर जोखिम सिर उठाए खड़े हैं जो कभी भी हम पर हावी हो सकते हैं। पापा भी निराश होकर सोच रहे होंगे कि वे क्या मुंह लेकर घर जाएंगे, किस प्रकार स्कूटर खड़ा करेंगे, चुपके से सोफे में धस जाएंगे और सिर झुका लेंगे और मम्मी से कहने का साहस जुटा पाएंगे कि मैं कहीं नहीं मिला, उन्होंने मुझे कहां कहां नहीं तलाशा, परंतु सब व्यर्थ रहा। पर मैं घर से स्कूल की दूरी का अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है, परंतु फिर भी स्कूल बस हमारे घर से स्कूल पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लेती है। पापा ने घर जाकर मम्मी को सब कुछ बता दिया होगा और बता देना ही बेहतर समझा होगा। पापा के घर पहुंचते पूरी बात बताते बताते घर में कोहराम मच गया होगा। गली मोहल्ले वाले शक्कर के दाने पर चींटियों की तरह टूट पड़े होंगे। सबको मामला समझने की जल्दी लगी होगी। वे लोग अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे होंगे, तरह तरह के मशवरे दे रहे होंगे। पड़ोसियों के लाख समझाने के बावजूद भी मम्मी बराबर रोए जा रही होंगी। कोई तुरंत FIR दर्ज करवाने की सलाह दे रहा होगा, दूसरा अपनी टांग अड़ाकर कह रहा होगा आजकल भ्रष्टाचार ज्यादा है, उनकी मजबूरी देखकर पुलिस ज्यादा रिश्वत लेने की कोशिश करेगी। तुरंत रिक्शा कर गली गली मोहल्ला मोहल्ला ढिंढोरा पिटवा देना चाहिए या रेडियो पर गुमशुदा की तलाश, टीवी पर मिसिंग पर्सन, अखबारों में चित्र छपवाकर सूचना दिलवा देनी चाहिए ताकि युद्ध स्तर पर तलाश करके मेरा पता लगाया जा सके। पापा ने सिर थाम लिया होगा, असमंजस में पड़े होंगे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा होगा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, वे कुछ भी कर नहीं पा रहे होंगे और सोचते होंगे वास्ते में किया क्या जावे जिससे मैं उन्हें सही सलामत मिल जाऊं। अब मुझे भूख जोरों से लग आई है, प्यास भी जानलेवा होती जा रही है, कंठ सूख रहा है, पेट में चूहों ने उथल मुथल मचा रखी है, हर चीज में मुझे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लगता है बल्लब दो हो गए हैं, पंख के पर छह हो गए हैं। हाँ, एक काम करता हूँ, बस्ते में से एक कॉपी और निकालता हूँ, कुछ पन्ने फाड़ता हूँ, पन्नों को दोबारा मोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में फाड़कर तश्तरियों की तरह सजा लेता हूँ, सब पर नाना प्रकार की भोजन सामग्री के रूप में शब्द परोस रहा हूँ, कुछ पर लिख रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो। मुझे डेस्क अब डाइनिंग टेबल नजर आ रही है, मम्मी पापा के बीच में बैठा मैं खाने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे मुझ पर नींद भी घेरा डाल रही है, अब ज्यादा देर तक बैठ पाना, भूख से जूझ पाना मुश्किल है।

0: धीरे धीरे मैं बेहोशी में डूबता चला जा रहा हूँ। एक एक कर मैं टेबल पर से सामग्री के रूप में शब्द कागज के टुकड़े उठाता जा रहा हूँ, मुंह में रखता हूँ, चबाता हूँ और निगलता जा रहा हूँ, मुंह में रखता हूँ, चबाता हूँ और निगलता जा रहा हूँ।
1: सुनी कहानी, मम्मी खाना दो। रचना गुरदीप सिंह सोहल की। सुनते हैं एक गीत, फिर बातें और करेंगे।

0: सियाग हॉस्पिटल सूरतगढ़, एक ही छत के नीचे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें है कंप्यूटराइज्ड नेत्र परीक्षण एवं रिफ्रैक्शन सुविधा, येग लेजर कैप्सुलोटॉमी, बिना टांके की फेको मोतियाबिंद सर्जरी, मल्टीफोकल और EDOF लेंस, साथ ही एडवांस रेटिना जांच भी की जाती है। नवजात शिशुओं के लिए नीकू पीकू वेंटिलेटर सुविधा और साथ ही एडवांस लैब, डिजिटल एक्सरे और C-arm रेडियोलॉजी सुविधा। यहाँ पर सभी प्रकार की लेजर सेवाएं, हेयर ट्रांसप्लांट और त्वचा रोगों का आधुनिक उपचार किया जाता है। हड्डी, जोड़ों एवं गठिया का आधुनिक उपचार, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और फिजियोथेरेपी भी की जाती है। पता है 155 ट्रांसपोर्ट नगर, न्यू बस स्टैंड के सामने, सूरतगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9983249502। सियाग हॉस्पिटल सूरतगढ़।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन श्रम के साथ प्रारंभ किया है, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ईमानदारी के साथ प्रारंभ किया है, वो जीवन में कभी पीछे मुड़कर उसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक आम कहावत है कि यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो दूसरे आप पर विश्वास क्यों करेंगे। जीवन में कुछ भी हासिल करने का रहस्य उसे आदत बना लेना है, श्रम को अपनी आदत बना लेना, कि जिस व्यक्ति ने ठान ली उसे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। आस्था पहाड़ों को भी हिला सकती है, और एक सशक्त चिंतन शक्ति सफल और प्रभावशाली व्यक्तियों को एकजुट कर सकती है। श्रम पर भरोसा रखने वाले, अपने हाथों पर भरोसा रखने वाले लोग आत्मसंदेह नहीं करते, उन्हें भूरा भरोसा

है कि वो अपने श्रम से किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को हल कर सकते हैं, अपनी ईमानदारी से उसे पूरा कर सकते हैं। श्रम और सफलता एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी अधिक सफलता आप प्राप्त करेंगे, वो आपके श्रम का परिणाम होगा। आपकी इच्छा शक्ति और क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी और अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपका आत्मविश्वास बनेगा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुप्रभात संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार।

0: से माधव जायभाय के साथ सुरेखा जोशी।
1: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि ये निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6

0: भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदले की राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नज़रिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फ़ायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने ईरान की हुकूमत के साथ हिजबुल्ला के राबतों का हवाला देते हुए मस्कुरा तंजीम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रिहायशगाह पर मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल के इकदामात के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। इनमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, उमूर खारजा और गवर्नेंस शामिल हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरियों से जोर देकर कहा कि वो इस बारे में तवील मुद्दती नुक्ता नज़र के साथ गौर खोज करें कि मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: डेटा के मौसर इस्तेमाल और बेहतर हमांगी पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि डेटा एक कौमी असासा और मुस्तकबिल का वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रुकावटें सिर्फ एक तंजीमी मसला नहीं है बल्कि ये सोच का भी मसला है। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो अपने पन के जज्बे के साथ काम करें। अफसरान के दरमियान गैर रस्मी बातचीत और टीम स्प्रिट की तामीर की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने पॉलिसी साजी में ताज़ा तरीन ख्यालात लाने के लिए सरकारी शोबों, यूनिवर्सिटियों और नौजवानों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा रबतों पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क की दिफाई सनत को मजीद मजबूत बनाने और इसे आलमी सतह पर मजीद मुसाबिकती बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। COVID-19 वबा और मगरबी एशिया के बहरान के तजुर्बात की मिसालें देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हमाहंगी के तरीक़ेकार को हुकूमत के कामकाज के कल्चर का एक कुदरती हिस्सा बनना चाहिए। जनाब मोदी ने इंसानी मुदाखलत को यकीनी बनाते हुए मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल और इंसानी महारत के साथ AI की सलाहियतों को जोड़ने के नए तरीक़े तलाश करने पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेचीदा चैलेंजों से निपटने और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र के साथ भारत के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुकम्मल हुकूमत के नुक्ते नज़र, बेहतर हमांगी, जदीद सोच और इज्तिमाई मिल्कियत की ज़रूरत का अयादा करते हुए अपनी बात ख़त्म की। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरियों ने शोबा जाति तरजीहात, उभरते हुए चैलेंजों और अमल दरामद के मसाइल पर अपने तजुर्बात शेयर किए। काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और महकमों के सेक्रेटरीज और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के सीनियर हुकाम ने इस मीटिंग में शिरकत की। सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट की जानिब से मुरतब किए गए कानून की खुली खिलाफवर्जी के मुतरादिफ है और ये मुल्क मुखालिफ है। जनाब अमित शाह ने दावा किया कि 1937 में कांग्रेस ने खुशनूदी हासिल करने की खातिर वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर मरकजी सरकार ने इस तारीखी गलती की इसलाह करते हुए पूरे कौमी गीत को कानूनी एतबार से तस्लीम शुदा हैसियत दी। जनाब अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी की क़्यादत में कांग्रेस पार्टी फिर से वोट बैंक सियासत के लिए खुशनूदी हासिल करने के रास्ते पर चल रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ

0: आज बुलंद करें कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के रुकने पार्लियामेंट राजू बिस्ता और सियाहत के वजीर शंकर घोष और दीगर ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जनाब अमित शाह आज सिलीगुड़ी में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर पर कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, 2 मीटिंगों में भी शरीक होंगे। दोपहर में वजीर दाखिला कवाखाली ग्राउंड पर भारतीय न्याय संहिता पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी और दीगर रियासती वुजरा उनके हमराह होंगे। इस नुमाइश में नए फौजदारी कानून के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और ये इस महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगी। शाम में जनाब अमित शाह पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात करेंगे। पहाड़ी इलाकों और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर कल 2 जायजा मीटिंगें भी होंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत आज पुणे में मवासलात के वुजरा की 12वीं ब्रिक्स मीटिंग की मेजबानी करेगा। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इसमें ब्रिक्स रुकन ममालिक के मवासलात के वुजरा और सीनियर नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी, डिजिटल तब्दीली, इख्तरा और पायदार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग का मौजू है एक पायदार मुस्तकबिल के लिए इख्तरा, इश्तराक और तब्दीली। वहीं ब्रिक्स की सदारत में, भारत की ब्रिक्स की सदारत में 2026 के तहत आज जयपुर में सियाहत के वुजरा की ब्रिक्स मीटिंग का आगाज होगा। ब्रिक्स रुकन ममालिक से सियाहत के वुजरा और सीनियर ओहदेदारान इस 2 रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मीटिंग में जिन अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा उनमें पायदार और जिम्मेदार सियाहत, हुनरमंदी के फरोग, बिला रुकावट सफर और सियाहत में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फ़ायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। NTA का आंसर की चैलेंज एक ऐसा ऑनलाइन अमल है जहां JEE मेन और नीट या UGC नेट जैसे इम्तिहान में बैठने वाले उम्मीदवार उबूरी आंसर की में गलतियों पर एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने कहा कि अगर एक उम्मीदवार भी किसी सवाल को चैलेंज करता है तो मुतालिका माहिरीन उस चैलेंज को कबूल करते हैं और नज़रसानी शुदा आंसर की का इतलाक इम्तिहान देने वाले हर उम्मीदवार पर होता है। उसने कहा कि गैर संजीदा चैलेंजों की हौसला शिकनी की खातिर जवाब को चैलेंज करने के लिए फीस ली जाती है और चैलेंज के दुरुस्त पाए जाने पर यह फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने कहा कि एक सवाल पर वसूल किए गए 200 रुपये की फीस मुतालिका चैलेंज के दुरुस्त ठहराए जाने पर उस उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि हकीकी उम्मीदवारों से मुनाफा हासिल करने के लिए फीस नहीं ली जाती, बल्कि फिजूल के चैलेंजों की हौसला शिकनी के लिए यह फीस रखी गई है। उसने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से दाखिल किए गए सही चैलेंज से दीगर लाखों उम्मीदवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने हिजबुल्ला ग्रुप पर नई पाबंदियां आयद की हैं और उसे ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार दिया है। अमरीका के महकमा खजाना ने हिजबुल्ला को नकद रकम मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क से मुबैन तौर पर वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकली के लिए मस्कूरा नेटवर्क ने लेबनान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल एयरलाइन परवाजों में सफ़र करने वाले कुरियर्स का इस्तेमाल किया ताकि गैर मुल्की करेंसी हासिल करने और पाबंदियों से बचने के लिए हिजबुल्ला को बाजाब्ता माली निज़ाम के बाहर एक रास्ता फराहम किया जा सके। हिजबुल्ला को ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार देने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि मस्कूरा ग्रुप ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की ईमा पर काम करता है और वो कोई अलहदा तंजीम नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान के पासदार इनकलाब दोनों को अमरीका आलमी दहशत

0: गत करार दे चुका है। हिजबुल्ला लबनान की एक सियासी पार्टी होने के साथ साथ मुसल्ला ग्रुप भी है। सोमालिया के कज़ाकों ने गुज़श्ता चार दिन में दो बहरी जहाज़ों को अगवा किया है। इन वाकयात से इस तश्वीश में इजाफा हो गया है कि बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में सोमालिया और यमन के नज़दीक समंदर में कज़ाकी के वाकयात में फिर से तेज़ी आ रही है। सोमालिया के पंटलैंड साहिल के नज़दीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बंदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 अहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें मवासलाती और सटलाई साजो सामान के साथ मोगदीशु में फौजी तरबियत के एक मरकज ले जाया जा रहा था। अमले के अहलकारों में 6 भारतीय शहरी, तुर्की का 1 शहरी, जॉर्जिया का 1 और सर्बिया के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटें पड़ने और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। करेलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुज़ा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नज़दीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्स्टलफेन में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर ख़त्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में BWF आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के माहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब उम्मीदवारों को राहत, इम्तिहानात मनसूख करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, यह खबर इनकलाब में सफ़े अव्वल पर है। अखबारात ने मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम के बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब होने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं, ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाह कुन मौशी कार्रवाई का ऐलान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय कौमी गीत के सिर्फ 2 अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेज़बानी करेगा जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। और हॉकी में आज एम्स्टलफेन में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन में एआई के इस्तेमाल, कौशल विकास तथा पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। जयपुर में 19 और 20 अगस्त को आयोजित ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक में इन विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद अब पर्यटन मंत्रियों की बैठक में इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक के माध्यम से भारत का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी को नई गति देना तथा सदस्य देशों के बीच पर्यटन आवागमन को बढ़ावा देना है। उधर आज पुणे में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक होगी। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न विभागों से संबंधित प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाएंगी। कार्य सलाहकार समिति का 22वां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया जाएगा। वित्तीय कार्य के तहत वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रथम संकलन पर चर्चा, मतदान और पारण की कार्यवाही होगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित जिलों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा का काम जारी है। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं सवाई माधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने निर्वाचन प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। जैसलमेर में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं सलूम्बर में स्वीप गतिविधियों के तहत दीप जलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने मीडिया को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
1: मीडिया के माध्यम से हम ये सभी को ये कहना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन है वो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि जो भी चुनाव होंगे बहुत ही निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कानूनन कार्रवाई करने में किसी तरह परेशानी नहीं हो। उनसे भी हमारे आह्वान रहेगा कि जो भी नियम है उसकी पालना करते रहे, आप अपना चुनाव प्रचार करें, चुनाव लड़े।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान

0: AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। कल जयपुर में हुई यूएई राजस्थान टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट की राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कला और संस्कृति से समृद्ध राजस्थान में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी निवेशकों को हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। बैठक में यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी ने कहा कि यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक हैं। श्री अलमरी ने जयपुर और दुबई के बीच हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने की भी बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री को दुबई यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार के प्रस्ताव पर यह मंजूरी दी गई है। आदेश के अनुसार उनका सेवा विस्तार 1 सितंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रहेगा। गौरतलब है कि मुख्य सचिव का कार्यकाल इस महीने की 31 तारीख को समाप्त हो रहा था। पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्यस्तरीय वेबिनार आज जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश के सभी पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संवाद करेंगे। इस दौरान विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, स्वच्छ तथा हरित विद्यालयों के निर्माण, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास पर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। वेबिनार का उद्देश्य पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है। जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं और जौ पर 3 दिन की 65वीं राष्ट्रीय कार्यशाला कल संपन्न हुई। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि कार्यशाला में गेहूं और जौ की उत्पादकता बढ़ाने, बदलती जलवायु के अनुरूप नई किस्में विकसित करने, रोग और कीट प्रबंधन तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर चर्चा हुई।
1: भारत सरकार के द्वारा वो प्रजातियां बनेंगी और कुछ जल्दी ही समय में वो किसानों तक पहुंचेंगी। इनमें से 13 गेहूं की और 11 जौ की प्रजातियों को चिन्हित किया गया है, जिनका की प्रपोजल आगे भेजा जाएगा गवर्नमेंट को। छिलका रहित जौ की बात हुई है और उसकी कुछ प्रजातियों को भी चिन्हित किया गया है। गेहूं में भी जो उत्तरोत्तर प्रगति हुई है, इस बार हमारा जो देश है उसने 120 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया था और अब उसके गुणवत्ता पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनके उत्पाद जो बनाए जाते हैं उनके लिए विशेष प्रजातियों का को चिन्हित किया जाए आगे आने वाले दिनों में।
0: चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल जयपुर में आयोजित विभागीय बैठक में टीबी रोगियों का 100% उपचार शुरू करने, स्क्रीनिंग और जांच बढ़ाने तथा जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के कपासन में गर्भवती महिला की मृत्यु के मामले में संबंधित एएनएम और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव के बाद देखभाल पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। वित्त विभाग सहित अन्य विभागों की अधिसूचनाएं और प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूएई की कंपनियों को राजस्थान में ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा

0: का बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मुरमंगल कार्यक्रम में आज सुनिए लोक गायक श्रवण जोड़ा के गाए कुछ लोकगीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

मरुमंगल कार्यक्रम में आज आपने लोक गायक श्रवण जोड़ा के गाए कुछ लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म काला पत्थर का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में। गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत राजेश रोशन का।

फिल्म प्रेम रोग का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वरों में। गीत नरेंद्र शर्मा का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सुनिए मोहम्मद अजीज और शोभना जोशी को, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है हम।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म इलाका से ये गीत, स्वर मोहम्मद अजीज और आशा भोंसले के, गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार।

आज हम सुनेंगे संगीतकार बप्पी लहरी के संगीतबद्ध किए कुछ गीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म थानेदार से। स्वर भी बप्पी लहरी के, साथ में है अनुराधा पौड़वाल और गीत अनजान का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: फंसी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
8: आइए एक बार फिर से बप्पी लहरी को सुने। फिल्म डिस्को डांसर, गीत अनजान का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: साहिब फिल्म का गीत सुनिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: फिल्म कर्ज का गीत सुनिए, किशोर कुमार और आशा भोंसले के सुरों में।
5: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं किशोर कुमार के स्वरों में फिल्म शराबी का गीत, बोल हैं प्रकाश मेहर के।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए, अब सुनते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आपकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित रहेगा। कार्यक्रम में मैं रश्मि और साथ हैं हमारे नवीन जी। हम आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई प्रतिक्रियाओं का जवाब देंगे और साथ ही सुनवाएंगे आपको आपके मनपसंद गीत।
1: सभी श्रोताओं का नमस्कार। तो श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम आपका पत्र मिला में आप सभी का स्वागत है। इसमें आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर हम आपको जवाब देंगे। रश्मि जी, कार्यक्रम में आपको पहली प्रतिक्रिया किसकी प्राप्त हुई है?
0: सर, पहला पत्र हमें मिला है व्हाट्सएप पर। पहला संदेश हमें मिला है कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव का।
1: क्या लिखा है इन्होंने?
0: इनका कहना है कि फ़ोन इन कार्यक्रम सुना इन्होंने। मानसून त्वचा में रोगों से बचाव और उपाय के बारे में डॉक्टर लोकेश अनुपाणी सर से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। 31 जुलाई को सुबह की सभा से लेकर रात्रि सभा तक महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर एक से बढ़कर

0: पर एक गीत सुनने को मिले। 4 जुलाई को मरुमंगल कार्यक्रम सुना, 5 अगस्त को सुकून संगीत में जगजीत सिंह को सुना, पिछले दिनों आपके केंद्र से हमने नाटक सुने जैसे रिश्ता विश्वास का, लेखक थे दीनदयाल शर्मा, निर्देशक नवीन सिसोदिया सर, सजीव प्रतिभागी थे राजेश चड्ढा जी, बहन सुमन शिखावत जी, नवीन सिसोदिया जी, नीलम आर गोस्वामी, आप सभी को शुक्रिया। और नाटक अंतस का उजास, नाटक आखिरी चिट्ठी, सेल्फी सुख और राजस्थानी रेडियो नाटक सुना। कम से हुनर इतने लेखक थे सी आर चावरिया, निर्देशक नवीन सिसोदिया सर, और नाटक कोडियो भी बहुत पसंद आया। सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। 8 अगस्त को सुबह की सभा में भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में गीतकार गायक प्रदीप जी के भजनों का आनंद लिया। उसी दिन चिंतन कार्यक्रम में विषय था योग निद्रा, वाचन स्वर थे तेज नए गुरु साहब के। इसी रोज से एक कलाकार कार्यक्रम में अभिनेता गीतकार राज्य संगीतकार निर्माता निर्देशक किशोर साहब के नगमे का भरपूर आनंद भी लिया।
1: क्या बात है रश्मि जी, इन्होंने बहुत ही विस्तृत प्रतिक्रिया लिखी है। और जो सभी तरह के कार्यक्रम में, चाहे वो नाटक हो, फिल्म संगीत हो, या किसी कलाकार को जो विशेष रूप से विशेष दिन के लिए कोई कार्यक्रम समर्पित हो, उसको भी इन्होंने सुना है। साथ ही हमारे शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत जो है, इनको भी इन्होंने खूब सुना है और सराहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। इसी प्रकार आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, आपको और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम सुनाएंगे।
0: अगला संदेश मिला है हमें गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से, सुभाष गोदारा जी का। विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, ये लिखते हैं सर राम राम। प्रोग्राम आपका पत्र मिला, काफ़ी समय के बाद शुरू हुआ है, इसके लिए नवीन सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज पहला ही प्रोग्राम फेस हो रहा है। 20 तारीख को सुबह 11 बजे अनुरोध गीत सुना दुर्गा राम नायक जी की प्रस्तुति में, बहुत ही अच्छा लगा। शाम को युवाणी में जसवीर सिंह जी की प्रस्तुति में बहुत अच्छा लगा। 19 तारीख को रात को 10 बजे प्रोग्राम हेलो मन भावन में स्मृति भोरा जी की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी लगी।
1: जी बिल्कुल, इन्होंने देखो सभी कार्यक्रम सुने हैं, इन्होंने तारीख वार इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कौन सा कार्यक्रम कब सुना। इनको अच्छे लगे सभी कार्यक्रम, और इन्होंने जो कार्यक्रमों में बदलाव हुए हैं उनकी भी प्रशंसा की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष गोदारा जी और विमला गोदारा जी, इनके परिवार को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नवीन जी, अगला संदेश हमें मिला है भोपाल MP से, मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव का। ये लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, आपके केंद्र से श्री रामचरितमानस भक्ति संगीत, गौरबंद गीत गंगा, महिला सभा एक ही फिल्म से, फोन इन कार्यक्रम, नाटक, किसान भाइयों के कार्यक्रम, यह सारे प्रोग्राम हम रोज़ बड़े ही प्यार से परिवार सहित रोज़ सुनते हैं और बहुत पसंद आते हैं। और आपने आपका पत्र कार्यक्रम शुरू किया, इसके लिए नवीन सिसोदिया सर को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक धन्यवाद। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनाते रहें। सफल कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को धन्यवाद।
1: क्या बात है, देखिए इन्होंने लिखा है कि कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कोई शिकायत भी कभी कभी करनी चाहिए, क्योंकि हमसे अगर कोई गलती रह गई हो तो उन्हें ज़रूर बतानी चाहिए।
0: सही है।
1: और देखिए इन्होंने रामचरितमानस का भी जिक्र किया, जो कि हमारा स्थाई चंक है जिसको हम नियमित रूप से सुनते हैं, और सुबह की शुरुआत जो है भक्तिमय हो जाती है इसके साथ ही। और नाटक ये सुनते हैं, किसान भाइयों के कार्यक्रम सुनते हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार है। रश्मि जी, एक गाना हम हमारे श्रोताओं को शुरुआत में सुना दें।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ का
3: आंखें बंद करो संजना।

नवीन जी, कार्यक्रम में जो हमें अगला पत्र मिला है, उन्होंने हमें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने लिखा है कि वो 2000 से हमारा आकाशवाणी सूरतगढ़ का प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं और वो

0: लिख रहे हैं कि उन्हें सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और वो हमें बधाई भी देना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल, इनकी बधाई हमें स्वीकार है क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, और इन्होंने देखिए साथ में आपको और मुझे दोनों को नमस्कार भी कहा है, और इन्होंने पूरी सूची भी लिखी है कि इनको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद हैं और लिखने वाले कौन हैं।
0: नवीन जी लिखने वाले हैं सर्वजीत सिंह जोशन है, सरवजीत कौर जोशन है, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन, रोबिन सिंह जोशन और
1: बाकी परिवार के सदस्य, इन्होंने देखो साथ में मेलबर्न और वैंकूवर का नाम भी लिखा है, इन्होंने बाहर से लिखा है पत्र,
0: हाँ जी
1: मतलब हमारे जो कार्यक्रम है वो विदेशों तक ये लोग सुनते हैं।
0: बिल्कुल सर
1: कितनी अच्छी बात है, इनका पत्र हमें मिला है, हमें इस बात की बहुत ही खुशी है, और इसी प्रकार हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, सराहते रहिए।
0: अगला संदेश है सर नेकीराम बंसीवाल जी का। वो लिखते हैं, उन्होंने भी यही लिखा है कि आज का आपका पत्र मिला, दोबारा शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी
0: वो लिखते हैं, अनुरोध गीत आपकी पसंद, मन भावन चौपाल, कार्यक्रम गौरबंद, गीतारो गजरो, युववाणी प्रोग्राम, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश होते हैं और उन लेकिन उनकी एक शिकायत है
1: जी बताइए क्या शिकायत है।
0: नवीन जी। शिकायत ये है कि महिला उद्घोषक ज़्यादातर मेरे पत्र गलत पढ़ते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
1: पत्र नहीं लिखा है उन्होंने, लिखा गोत्र गलत पढ़ते हैं। देखिए सही गोत्र ये कहना चाहते हैं कि मेरा पूरा
0: गौत्र
1: नाम अगर आप पढ़ें तो नेकीराम बंसीवाल पढ़ना है, इनको हो सकता है कोई अन्य उच्चारण कर देते होंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। नेकीराम जी बिल्कुल आपकी शिकायत पर हम गौर करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आगे से आपका नाम का उच्चारण जो है वो शुद्ध रूप से किया जाए।
0: अगला संदेश हमें मिला है मुरादाबाद से। वो लिखते हैं कि सभी प्रोग्राम सुनते हैं, उनको और उनके परिवार वालों को सभी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहे हैं, जैसे महिला जगत, अनुरोध गीत, आपकी फरमाइश, गीतारो गजरो, चौपाल, लोकगीत का फरमाइश प्रोग्राम, कृषि जगत, फोन इन प्रोग्राम, हेलो फरमाइश, इन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है, सभी प्रोग्राम बहुत लाजवाब चल रहे हैं।
1: और ये लिखने वाले कौन हैं?
0: लिखने वाले हैं गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋषभ और बलवीर सिंह।
1: क्या बात है, इन्होंने वैसे सभी कार्यक्रमों के नाम लिख दिए, और इनकी ये बात बड़ी खास लगी कि इन्हें हमसे कोई
0: कोई
1: शिकायत ही
0: शिकायत
1: नहीं
0: नहीं है। हाँ
1: है।
0: जी
1: आगे आगे एक और पत्र पढ़िए।
0: हाँ जी आगे पत्र हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से।
1: जी
0: इनका कहना है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के सभी कार्यक्रम सुनते हैं और बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन विषय पर कार्यक्रम पेश किए जाते हैं।
1: जी
0: हम भी प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं और आनंद उठाते हैं और हर कार्यक्रम से बेहतरीन जानकारी हमें मिलती है और हम लाभान्वित भी होते हैं।
1: और ये लिखने वाले कौन हैं?
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशांत छिम्पा और पूजा परिवार।
1: देखिए रश्मि जी, इन्होंने कहा है कि आनंद उठाते हैं,
0: हाँ जी
1: तो
0: हाँ जी सर
1: आकाशवाणी सूरतगढ़ का यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं उनको आनंद की प्राप्ति जरूर हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर
1: जी एक और गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना दें।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत सुना अभी हमने
1: जी बिल्कुल।
0: अगला संदेश हमें आया है रूपनगर हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद जी का, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान का।
1: जी क्या लिखा है इन्होंने?
0: नवीन जी ये लिखते हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के सारे प्रोग्राम सुनते हैं और उन्हें बहुत पसंद आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ये लिखते हैं कि 20 अगस्त को रेडियो श्रोता डे के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद दी है इन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि 1 अगस्त से जो प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं वो बहुत पसंद आए हैं इन्हें।
1: जी
0: फरमाइशी प्रोग्राम और भी ज़्यादा सुन सकते हैं, प्रोग्राम अनुरोध गीत आपकी पसंद में ईमेल से नहीं होने से परेशानी आती है।
1: जी बिल्कुल, इनकी शिकायत भी जायज़ है। इन्होंने लिखा है कि युवानी के अंदर जो कार्यक्रम है वो ईमेल पर नहीं होने से इनको परेशानी आती है। देखिए आकाशवाणी सूरतगढ़ का यही ध्येय रहता है कि सभी श्रोताओं को आसानी से आकाशवाणी से जुड़ने का मौका मिले, वो अपना संदेश जो है आसानी से हमें भेज पाएँ। तो ईमेल जो लोग नहीं भेज पाते थे उनके लिए हमने ये व्हाट्सएप की सुविधा अब शुरू किया, ताकि आसानी से मैसेज किया जा सके। धीरे धीरे आप भी इसके साथ ढलते जाइए और हम भी आपकी शिकायतों पर अमल करेंगे और इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे।
0: बिल्कुल नवीन जी।
1: जी

0: आगे बताइए किसका संदेश आया है।
1: अगला संदेश है गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल का। बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया।
0: जी
1: देखिए नवीन जी, सभी का एक ही मैसेज आ रहा है, सभी का एक ही मैसेज, एक जैसा सा मैसेज आ रहा है कि सभी को सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: देखिए, ये तो आकाशवाणी सूरतगढ़ की खूबसूरती है
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: सबको हमारे सभी कार्यक्रम पसंद हैं।
1: बिल्कुल, इन्होंने भी यही लिखा है कि आकाशवाणी को हमारी तरफ से प्यार भरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं की आवाज़ सुनकर केंद्र निदेशक महोदय जी ने आपका पत्र पुनः शुरू किया है। आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम एक से एक से बढ़कर हैं, जैसे अनुरोध गीत हो गया, घरांगन, महिला जगत, राजस्थानी गीत, गौरबंद, आपकी पसंद, मिट्टी की खुशबू, सभी प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आते हैं।
0: जी बिल्कुल, देखिए हमारे कार्यक्रमों का जो मिश्रण है वो किसी इस प्रकार होता है कि जानकारी भी मिलती रहे लोगों को,
1: बिल्कुल
0: चाहे वो
1: सर,
0: खेती बाड़ी की हो, महिलाएं की
1: बिल्कुल
0: हो,
1: बिल्कुल,
0: या फिर युवाओं से संबंधित जानकारी हो,
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: साथ में उनका मनोरंजन भी होता रहे।
1: हाँ जी नवीन जी।
0: जी अगला संदेश आप पढ़िए।
1: अगला संदेश है चक 58 NP रायसीनगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरवंश लाल, बनवारी लाल और गोपी राम जी का।
0: जी
1: इनका ये कहना है नवीन जी कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं, जैसा कि सभी बोल रहे हैं, जैसे वंदना, सुप्रभात, मरुमंगल, फिल्म संगीत, खेतिहरा वास्ते, महिला जगत और घर आंगन। इनका एक सुझाव है नवीन जी, ये कहते हैं कि घर आंगन में माह में एक बार राजस्थानी भाषा में नाटक व झलकी अवश्य सुनाया करें।
0: जी बिल्कुल, इनका जो इनकी मांग है उस पर भी हम गौर करेंगे, और राजस्थानी भाषा में भी नाटक या झलकी जो है उनका हम समावेशन हमारे कार्यक्रमों में करेंगे।
1: इनका ये भी कहना है कि युवाणी, सराइकी, चौपाल, मन भावन कार्यक्रम, गीत गंगा, मिट्टी दी खुशबू, सभी प्रोग्राम अच्छे और काबिले तारीफ है।
0: देखिए रश्मि जी, इन्होंने सराइकी को भी सराहा है।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: अगला मैसेज किसका है?
1: अगला मैसेज है जिला नांदेड़ एलाना महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, दुर्गेश्वरी और तृप्ति जायसवाल का। इनका बहुत ही छोटा सा मैसेज है नवीन जी और बहुत ही अच्छा मैसेज है कि यहाँ पर सारे प्रसारित होने वाले सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और श्रोताओं का भरपूर ख्याल रखते हैं।
0: देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है इन्होंने
1: हाँ
0: कि
1: जी
0: श्रोताओं का ख्याल रखते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: हम हैं भी श्रोताओं के लिए और श्रोता हैं हमसे।
1: बिल्कुल।
0: देखिए आगे एक संदेश और पढ़ते हैं, फिर एक गाना सुनाएंगे।
1: हाँ जी, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता, संजय और बेबी किट्टू लिखते हैं कि हमारे प्रिय आकाशवाणी सूरतगढ़ बहुत ही शानदार, सुंदर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, प्रेरणापद, ज्ञानवर्धक जानकारी व फरमाइशी फोन कॉल, फरमाइशी कार्यक्रम पेश करता है, जिसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं।
0: क्या बात है, देखिए इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा प्रिय आकाशवाणी सूरतगढ़।
1: बिल्कुल
0: देखिए
1: बिल्कुल
0: कितना प्रिय है इनको आकाशवाणी
1: बिल्कुल
0: सूरतगढ़, और उतने ही हमें हमारे श्रोता भी प्रिय हैं। तो इसी बात पर इनको एक प्यारा सा गाना हम सुना देते हैं।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं सर।

0: गीत रश्मि जी बहुत ही प्यारा आपने सुनाया है। देखिए अब साथ में हमारे श्रोताओं के संदेश जो हैं फेसबुक पर भी प्राप्त हुए हैं हमें,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल सर।
0: उनको भी हम पढ़ेंगे। क्यों ना फेसबुक के संदेश मैं पढ़ देता हूँ साथ में। देखिए इन्होंने कहा है कि उत्तम कुमार भगत हैं ये, इन्होंने लिखा है पाकुड़ झारखंड से। इन्होंने कहा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक इनको लगते हैं और सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका। और साथ ही हितेंद्र दास ने आसाम से लिखा है कि इनको कोई गाना सुनाया जाए। देखिए गाने का कार्यक्रम नहीं है, मैं फिर से यही अनुरोध करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपका पत्र मिला है ताकि आप सबकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुँच सकें। देखिए साथ ही हमारे पास संदेश आया है विनोद कुमार बारासा का। इन्होंने कहा कि आपका पत्र कार्यक्रम फिर से शुरू करने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मैसेज किया है। और उन्होंने कहा कि 17 अगस्त को फेसबुक फरमाइश, 18 अगस्त को हनुमान भवन, इनको बहुत अच्छा लगा। लिखने वाले जो हैं विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से। सजन जांगरा का भी साथ में मैसेज आया है। देखिए राम राम लिखा है इन्होंने, जिला नलोई हिसार से। इन्होंने कहा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के अंदर मेरी पसंद, मेरा अपना रेडियो केंद्र। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी
1: बिल्कुल
0: कि
1: नवीन जी,
0: इनका
1: बिल्कुल।
0: अपना रेडियो केंद्र ये है।
1: हाँ जी
0: इन्होंने कहा है कि सुबह की शुरुआत जब वंदे मातरम से होती है और रात के जय हिंद तक ये सभी के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, जो कि ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरपूर होते हैं। बिल्कुल इन्होंने काफ़ी विस्तार में सभी कार्यक्रमों के बारे में लिखा है, इतना पढ़ना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन इनकी जो प्रतिक्रिया है वो हमें बहुत ही अच्छी लगी। इन्होंने हालांकि कोई

0: सुझाव नहीं दिया है, और उन्होंने कहा कि मनोरंजन और लोक संस्कृति की जो संस्कृति है उसको हम जो समृद्ध कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है। सज्जन झांगड़ा जी का ये संदेश था। आगे एक आध मैसेज और आप व्हाट्सएप से भी पढ़ दीजिए।
1: हाँ जी बिल्कुल नवीन जी, व्हाट्सएप पे नेक्स्ट अगला संदेश हमें मिला है संगरिया से श्याम बिड्ढा जी का। जैसे कि आज सभी हमें एक ही सूचना मिली जा रही है कि सभी को प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है,
0: जी जी
1: हर प्रोग्राम सुन के सभी बहुत खुश हैं। तो इन्होंने इनका भी यही मैसेज है कि आपका पत्र मिला प्रोग्राम को पाकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

0: आधारित बाल वाटिका कार्यक्रम भी शुरू करने का श्रम करें।
1: बहुत ही इनकी अच्छी गुजारिश है। मुझे लगता है कि ये गुजारिश
0: बिल्कुल
1: इनकी बहुत जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: 23
0: बिल्कुल
1: तारीख को यानी परसों
0: बिल्कुल,
1: रविवार को सुबह 9:30 बजे हमारा पहला जो अंक है बाल वाटिका का
0: क्या
1: वो
0: बात
1: प्रसारित होगा।
0: क्या बात।
1: तो इसी तरह आप हमें संदेश लिखते रहिए और सुनते हैं इस कार्यक्रम में अगला गीत।

0: बहुत ही सुंदर गीत के साथ अगला मैसेज हम पढ़ते हैं।
1: जी
0: अगला मैसेज आया है गांव बणवाला हनवंता फाजिलका पंजाब से, विनोद मायल जी का। सीमा, लक्षिता, यसिका, माँ विद्या देवी और समस्त मायल परिवार का। ये कहते हैं नवीन जी कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, बहनों के लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। वंदना प्रोग्राम से दिन की शुरुआत होती है। मरुमंगल में रामनिवास राव जी का भजन ज़रूर सुनवाएं।
1: बिल्कुल, इनकी जो फरमाइश है कि रामनिवास राव जी के भी भजन सुनाए जाए,
0: बिल्कुल,
1: तो वैसे तो हम सुनाते हैं इनके भजन भी काफ़ी।
0: हाँ जी
1: साथ ही देखियो रश्मि जी, मैं एक संदेश इधर से भी पढ़ देता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: नरेश प्रजापति, मांगेलाल चंदेल और गजराज लोधी का गांव रामनगर से संदेश आया है। इन्होंने कहा कि हेलो गोरबंद कार्यक्रम शुरू किया जाए आकाशवाणी सूरतगढ़ से, जो केवल फ़ोन कॉल पर आधारित हो। हेलो मन भवन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जगह लाइव किया जाए। तो हेलो गोरबन तो अपने फ़ोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम एक बार आता है महीने में, और मन भवन को जहाँ तक लाइव करने का इनका जो सुझाव है उस पर भी हम गौर करेंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: जी अगला संदेश आप पढ़िए।
0: अगला संदेश नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त और कैरव जी का है। वो कह रहे हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के सारे प्रोग्राम बहुत बढ़िया हैं, जैसे मिट्टी दी खुशबू उन्हें बहुत पसंद है।
1: जी इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इनको सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। देखिए राजेश कुमार मंडावरा लूणकंड सर बीकानेर से, इन्होंने लिखा है कि मैं आपके सभी कार्यक्रम रोज़ सुनता हूँ, खेत में सुनता हूँ और वहाँ पर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। देखिए ये अपना कार्यक्रम इतना सुनते हैं कि इनका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ये खेती करते वक्त भी अपना कार्यक्रम सुनते
0: क्या
1: हैं,
0: बात है,
1: कितनी अच्छी बात है।
0: बहुत अच्छी
1: देखो
0: बात है।
1: अगला संदेश आप पढ़िए।
0: अगला संदेश हमें सूरतगढ़ राजस्थान से मिला है, भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका का। ये लिखते हैं कि अनुरोध गीत कार्यक्रम जो दिन में 11 से 12 बजे तक होता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उद्घोषक अपने अंदाज से इसे पेश करते हैं, गीतों का चयन भी अच्छा रहता है।
1: जी
0: ये लिखते हैं कि

0: व्हाट्सएप ग्रुप में 5 मिनट खुलने की जो समय सीमा आपने तय की है वो भी काफ़ी रहती है। गौरबंद
1: जी बिल्कुल अच्छा कहा इन्होंने कि काफ़ी ये समय सीमा जो है 5 मिनट भी काफ़ी है, क्योंकि अगर इसको और ज़्यादा कर देंगे तो इतने संदेश आएंगे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। साथ ही
0: बिल्कुल
1: देखिए श्री राम जानी ने लिखा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित कार्यक्रम सभी इनको अच्छे लगते हैं और दिनों दिन कार्यक्रम में 4 चांद लग रहे हैं। क्या बात है,
0: क्या
1: कितनी
0: बात
1: अच्छी
0: है,
1: बात लिखी इन्होंने।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: इन्होंने एक सुझाव दिया कि प्रसारण की रेंज को बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए आकाशवाणी सूरतगढ़ का ट्रांसमीटर तो वैसे भी 300 किलोवाट का, जिसकी रेंज पहले से ही काफ़ी है,
0: हाँ जी
1: फिर भी हम हमारी तकनीकी टीम से बात करेंगे कि अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसको ठीक किया जाएगा। इन्होंने लिखा है ओसियां जिला जोधपुर से जी, जोधपुर तक इनको कई बार हो सकता है सुनने में कोई दिक्कत आती होगी
0: हाँ
1: ना
0: जी हाँ जी।
1: जी। अगला संदेश पढ़िए।
0: अगला संदेश है ग्राम गोपी खिरिया तहसील भंडेर से राहुल पाल, श्रीमती ज्योति, अंजना पाल, हरिमोहन पाल और बेबी लक्ष्य, ये भी लिखते हैं कि सभी कार्यक्रम इनको नियमित रूप से ये सुनते हैं और इनको बहुत पसंद आते हैं, जैसे आपकी पसंद, अनुरोध गीत, गौरबंद, सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा वार्ता और भेंट वार्ताएं भी उनके ज्ञान में इजाफा करती हैं
1: जी
0: और वो उनको उनसे लाभ भी मिलता है।
1: बिल्कुल, वार्ताएं और भेंट वार्ताएं जो है वो करने का हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ है उसको हम यहाँ बुलाएं और उनकी बात हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएं। देखिए साथ ही संजय भोजने, अमन भोजने ने रत्नागिरी महाराष्ट्र से लिखा है कि यह कार्यक्रम हफ्ते में कितने दिन होगा, तो इनको मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम महीने में एक बार होगा, तीसरे शुक्रवार को। साथ ही देखिए राजेश चड्डा जी का भी मैसेज आया हमारे पास, इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं, मंगल हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: नवीन जी आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सारे मैसेज पढ़ के, हर मैसेज में यही लिखा है कि आपके सभी प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते
1: कितनी
0: हैं,
1: बड़ी
0: सभी
1: बात है
0: कार्यक्रम,
1: देखो।
0: हाँ सभी
1: हाँ
0: कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है बिहारी कॉलोनी दिल्ली शाहदरा से, तुलसी मस्कीन जी का, वीना, आशीष राजा,
1: जी
0: चैतन्य, मेघा, राहुल, रचिता, कैशु, इन सब का मैसेज भी यही है कि हमारे यहाँ के सभी प्रोग्राम उनको बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि मिट्टी की खुशबू, अनुरोध गीत, गीत गंगा, बाकी सभी।
1: देखिए सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू और प्रीतिशा संधू और मैक्स ने भी इसी प्रकार संदेश लिखा है। इन्होंने देखिए एक मशरूम, खूब सारे गुलाब के फूल, साथ में गेंदे का फूल, बहुत सारे हरे रंग की पत्तियाँ और बहुत सारे लाल रंग की पत्तियाँ हमें भेजी है। कितनी अच्छी बात है, देखो इनके फूलों से जो है हमारा स्टूडियो है वो भी महक उठा है
0: बिल्कुल
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें भेजी। इन्होंने साथ में लिखा है कि इनको सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। अगला संदेश आप पढ़िए।
0: अगला संदेश में हम पढ़ते हैं। अगले गीत से पहले एक छोटा सा संदेश और है,
1: जी
0: दीपेश
1: जी
0: वर्मा जी का है। उन्होंने भी सिर्फ 2 लाइनों में आज की तारीफ करी है कि आज
1: जी
0: कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं दे रहे हैं, लाइव आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और सुविधाओं के द्वारा दी गई कार्यक्रमों की प्रस्तुति को ध्यान से सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक गीत इनको हम सुना देते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल।

0: क्या बात है रश्मि जी, बहुत ही बेहतरीन गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनाया है। आगे के संदेश हम पढ़ना शुरू करते हैं।
1: नवीन जी, अगला संदेश हमें आया है बीकानेर से, रानी झाम, बिट्टू झाम और रानी बाजार से। ये मैसेज हमें आया है, ये लिखते हैं कि जो भी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं सब लाजवाब होते हैं।
0: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे सभी कार्यक्रम लाजवाब होते हैं। देखिए रश्मि जी, एक संदेश मुझे फेसबुक पर मिला है DS जसल हनुमानगढ़ राजस्थान से।
1: हाँ जी।
0: इन्होंने कहा कि हम एक नया इनोवेटिव आइडिया जो है वो देना चाहते हैं कि आपका जो हाई पावर स्टेशन है उसमें बहुत सारे प्राइवेट रेनबो टाइप के जो चैनल है वो लगाए जाएँ। तो बिल्कुल इनकी बात सही है, लेकिन देखिए आकाशवाणी जो है उसका जो एक नियम है, उसका जो एक स्वाद है हम कह सकते हैं, वो अलग है। और हम बिल्कुल यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स को हम साथ में नहीं मिक्स कर सकते, लेकिन इन्होंने कहा है कि दूसरे पड़ोसी देशों से अगर कोई दुष्प्रचार आता है तो उसको रोका जा सके। बिल्कुल, आप क्यों सुनते हैं दूसरे देशों के दुष्प्रचार को? मैं तो कहूँगा आप आकाशवाणी सूरतगढ़ को सुनिए, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे संगीत आपको सुनने के मिलेंगे। देखिए साथ ही इन्होंने लिखा है प्रदीप कुमार सिद्ध और रणवीर सिद्ध ने भूरापुर से, इन्होंने कहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप से शुरू किए वो इनको बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको अच्छे लगते हैं। और देखिए रायसी नगर से सोहनलाल जांगिर, सुनील जांगिर, शोपत राम और चेतन राम, सरस्वा भवरलाल, मोथा पवन, पवन कुमार शर्मा, धनराज भांबू, इन्होंने कहा है कि काफ़ी समय के बाद जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम शुरू हुआ है वो इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लग रहा है। सभी ने देखिए यही कहा है कि इनको ये बात बहुत अच्छी लगी है कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया, क्योंकि ये एक तरह से श्रोताओं को हमसे जोड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी।
0: जी रश्मि जी,
1: अगला संदेश गांव ढाणी लाल खां से, नोहर से आया है कि वो लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड थोड़ा सा सवाल है इनका।
0: जी जी।
1: ये लिखते हैं कि आप सभी से निवेदन है कि आजकल आप हेलो मिट्टी दी खुशबू बंद कर दो।
0: अच्छा।
1: उनका लिखना है कि क्योंकि आप फोन तो शामिल करते नहीं, बाकी प्रोग्राम हमें सभी बहुत अच्छे लगते हैं।
0: देखिए रश्मि जी, बहुत ही सुंदर कहूँगा मैं तो इनका संदेश, क्योंकि जो शिकायत है वो भी अपनों की होती है।
1: बिल्कुल।
0: और ये कोशिश करते होंगे इनका फ़ोन नहीं मिल पाता हो, क्योंकि बहुत सारे श्रोता एक समय पर कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इनसे भी यही कहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, आपका फ़ोन कॉल भी ज़रूर मिलेगा और आपको भी हेलो मिट्टी दी खुशबू में शामिल होने का मौका मिलेगा। देखिए अहमदगढ़ मंडी पंजाब से इन्होंने लिखा है कि बहुत ही अच्छा लगता है आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल, चौपाल, मिट्टी दी खुशबू, गीत गंगा, गोरबंद, सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते हैं। लिखने वाले हैं अनवर अंसारी। साथ ही देखिए बसंत लाल साव ने लिखा है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से।
1: क्या
0: कितनी दूर से लिखा है इन्होंने। हाँ। कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती।

0: बहुत बढ़िया,
1: देखिए कितनी अच्छी
0: बहुत ही
1: बात लिखी है
0: बढ़िया।
1: इन्होंने। आगे बताइए रश्मि जी क्या लिखा है।
0: अगला संदेश हमारे पास आया है नवीन जी कि वही मैसेज, सभी प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं पर आपसे एक निवेदन करते हैं कि कृपया आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने का समय 15 मिनट का कर दीजिए ताकि कोई श्रोता ना रहे और सभी की फरमाइश पूरी हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: ये
1: इनका
0: निवेदन किया
1: जो
0: है जिला खरगोल सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा ने, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा ने।
1: जी देखिए इनकी जो फरमाइश है कि व्हाट्सएप वाला संदेश का जो समय है वो बढ़ा दिया जाए, वो अच्छी है, लेकिन अगर इतना बढ़ा दिया तो फिर सभी के संदेश वैसे भी नहीं पढ़े जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: देखिए अगला संदेश हमें जो मिला है वो है सतीश अनेजा का, और इन्होंने लिखा है कि अभिनंदन है आपका रोज़ गार्डन चंडीगढ़ से। इन्होंने गुलाब के फूलों के साथ हमें संदेश भेजा है। हृदय तल से आभार व्यक्त किया है कि आपका पत्र मिला, कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है हमने फिर से, और लगभग सभी कार्यक्रम अपनी जगह सटीक है। श्रोताओं को आकाशवाणी सूरतगढ़ के प्रति जो मोहब्बत है वो और ज़्यादा मजबूत हुई है। इन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि ऑन एयर कॉल महीने में हम एक बार कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। इसको एक प्रोग्राम में एक महीने में तक कॉल न करने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी ये नियम हमारे सभी फ़ोन कार्यक्रमों में लागू किया जा चुका है कि एक महीने में किसी एक श्रोता का फ़ोन जो है 2 बार न लिया
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: बिल्कुल सही
1: और
0: सही।
1: इन्होंने साथ में ये कहा है कि दुआएं इन्होंने दी है और नेक तमन्ना इन्होंने दी है। सतीश अनेजा विमला मेजा चंडीगढ़ से, धन्यवाद सतीश
0: बिल्कुल।
1: जी।
0: व्हाट्सएप पे अगला संदेश हमें मिला है नाई वाला से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा जी का। इनका भी यही लिखना लिखना है कि नवीन जी आपका पत्र मिला, फिर से शुरू किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है
1: जी धन्यवाद।
0: कि केंद्र के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अनुरोध गीत, आपके पसंद, गौरबंद, हेलो मन भावन और बहुत सारे प्रोग्राम जैसे मिट्टी दी खुशबू भी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं और आपने बहुत बहुत सराहा है हमारे कार्यक्रमों को। देखिए रश्मि जी, धर्मपाल भारती लिखते हैं कि धन्यवाद, मुझे व्यक्तिगत रूप से नाम लेते हुए उन्होंने लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के ये काम ही नहीं है, ये तो पूरी टीम का काम है। आकाशवाणी सूरतगढ़ जो है वो संयुक्त रूप से सभी जन हम मिलकर चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं तक अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हम पहुँचा सकें। इन्होंने कहा कि प्रोग्राम सभी श्रोताओं के अनुरूप चल रहा है, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही साधु शहर से मूलचंद मीणा ने लिखा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ के कार्यक्रम अनवरत सुनते आ रहे हैं या सराए जाते हैं इनके परिवार के द्वारा। 1982 से रेडियो का इनको शौक है और एक सुझाव ये है कि नए युवाओं को भी आमंत्रित कर कर उन्हें बोलने का अवसर प्रदान करें। बहुत ही अच्छा सुझाव देखो रश्मि
0: बहुत
1: जी
0: ही
1: इन्होंने
0: बढ़िया,
1: दिया है,
0: बहुत ही बढ़िया है।
1: इनके सुझाव को मानेंगे ज़रूर।
0: बिल्कुल। गांव गोविंदगढ़ मांझी वाला श्रीकरणपुर से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू, मनु शिव सेठ करणपुरी, स्माइल टुटेजा, पवन गुजर, ये एक गुजारिश हमें लिख रहे हैं नवीन
1: जी
0: जी। ये लिख रहे हैं कि अनुरोध गीत प्रोग्राम एक दिन सिर्फ खतों पर ही होना चाहिए, जिससे जो श्रोता सिर्फ खत भेजने, जिनको व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलाना आता है क्योंकि वह बुजुर्ग श्रोता सिर्फ खतों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सहूलत रहे।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं कह रहा हूँ कि इनको हम अगले हफ्ते से ही लागू कर देंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव है, इन्होंने सही कहा है कि यह है जो मांग है काफ़ी दिनों से आ भी रही थी कि जो पत्र हैं भेजने
0: बिल्कुल,
1: वाले हैं
0: हाँ जी हाँ जी
1: उनको अलग से समय दिया जाए, तो
0: हाँ
1: एक
0: जी
1: दिन जो है हम सिर्फ पत्रों पर आधारित इसको कर देंगे। साथ ही
0: बिल्कुल
1: देखिए ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेराज जहाँ ने हरिद्वार उत्तराखंड से लिखा है कि हमें किसी भी कार्यक्रम से कोई भी शिकायत नहीं है।
0: क्या बात है,
1: कितनी अच्छी बात लिखी
0: बहुत
1: है
0: ही बढ़िया
1: देखिए।
0: बात।
1: और देखिए साथ ही इन्होंने लिखा है सुरेश राठौड़ ने कि आकाशवाणी सूरतगढ़ हमारा प्रिय केंद्र है और हम फरमाइशी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, और सभी उद्घोषक भाइयों को और बहनों को इन्होंने आभार प्रकट किया। गीत गंगा, गीतारो गजरो इनके पसंदीदा कार्यक्रम हैं, और इन्होंने कहा कि सभी जो उद्घोषिकाएं हैं उनकी प्रस्तुति जो है वो भी अच्छी होती है, बड़ी लाजवाब होती है, और मैसेज और ईमेल द्वारा ये हर बार शामिल होते हैं। गांधीनगर गुजरात से इन्होंने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: बहुत बहुत
1: इतना
0: धन्यवाद।
1: प्यार हमें बरसाने के लिए हमारे ऊपर। एक गीत रश्मि जी हम वो सुना दें।
0: बिल्कुल नवीन जी, सुनवाते हैं आपको गीत।
1: जी।

0: नवीन जी, अगला संदेश लिया है आया है हमारे पास मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर, मंसूरी कमरून, निशा, मोहम्मद नसीब और पलक लुबना और यश मंसूरी का। इनका भी एक ही मैसेज है कि इनको सभी प्रोग्राम यहाँ के बहुत पसंद है।
1: जी बिल्कुल।
0: सभी उद्घोषकों को सभी बधाई देना चाहते हैं ये।
1: देखिए, मेरे पास भी एक संदेश आया है प्रवीण सोनी का। इन्होंने कहा है कि सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, लेकिन 30 जुलाई को उन्होंने लाइव फोन इन कार्यक्रम सुना था, जिसमें मानसून और त्वचा रोग के बारे में इनको उपयोगी जानकारी मिली थी। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम सुना। वो हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम था, जिसमें त्वचा रोग के बारे में डॉक्टर लोकेश अनुपानी ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी। 31 जुलाई को उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर भी कार्यक्रम सुने, वो भी इनको बहुत अच्छे लगे।
0: हाँ जी,
1: धन्यवाद जी। देखिए, साथ में विनोद नारायण कुशवाहा ने भी लिखा है कि पता नहीं, इन्होंने तो सिर्फ अपने संघ के नाम लिखे हैं, साथ ही मैं इन्होंने ये भी लिखा है कि हेलो मन भवन, इनको बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, बरकत रामदानी जमाली बलोच ने भी संदेश हमें दिया है। देखिए, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल रिया प्रसाद प्रसारक जी महोदय को नमस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी सूरतगढ़ के सभी कार्यक्रम इनको अच्छे लगते हैं। देखिए रश्मि जी, बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज वाले कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत
1: लेकिन
0: बढ़िया
1: एक
0: सर।
1: बहुत ही विशेष संदेश मेरे पास है। देखिए, तुलसीराम जोशी ने क्या लिखा है, मेरा प्यारा आकाशवाणी सूरतगढ़।
0: क्या बात
1: सिर्फ इतना
0: है,
1: सा संदेश है,
0: बहुत
1: लेकिन
0: ही बढ़िया
1: कितना
0: है,
1: बड़ा संदेश है। देखिए,
0: दो शब्दों में पूरा
1: पूरा
0: मैसेज।
1: पूरा मैसेज डाल दिया। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जो 100 शब्द लिखते हैं उनसे ज़्यादा
0: हाँ जी,
1: अच्छे दो
0: बिल्कुल
1: शब्द
0: सही
1: हैं
0: है सर,
1: जी।
0: सही
1: आपके पास
0: रहेगा।
1: भी कुछ और संदेश आए
0: हाँ
1: होंगे।
0: जी नवीन जी, गांव बांडीवाला फाजिल्का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ये लिखते हैं कि सूरतगढ़ स्टाफ का धन्यवाद करते हैं।
1: जी
0: और इन्होंने हमें दो सुझाव दिए हैं कि एक प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें आप प्रश्न पूछें और श्रोता उसका जवाब भेजें, और दूसरा एक गुलदस्ता प्रोग्राम शुरू करें जिसमें श्रोता कविता, गज़ल और चुटकुले वगैरह भी भेज सकें।
1: जी बिल्कुल, इनके जो सुझाव है उन पर हम गौर करेंगे। और इस तरह जो चुटकुलों वाला है, इसको हो सकता है हम आपका पत्र मिला में शामिल कर दें इस बार, कोई बड़ी बात नहीं है।
0: पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, इनका भी यही संदेश है कि इनको सभी प्रोग्राम बहुत ही पसंद आते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं। देखिए, जानी इंदराज ने भी भेजा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ से संबंधित सभी कार्यक्रम इनको अच्छे लगते हैं। साथ ही कुछ संदेश जो हैं वो रह गए, जैसे KPS चौहान ने लिखा है कि सभी ज्ञानवर्धक और लाजवाब, शानदार, मनोरंजन और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी इनको अच्छी लगती है। लाइव फोन इन कार्यक्रम इनको अच्छा लगा था। इन्होंने जो संदेश हमें भेजा है वो जिला खरगोन मध्य प्रदेश से इन्होंने संदेश भेजा है। और साथ ही देखिए, हीरा मणि वर्मा का हमारे पास संदेश आया है
0: बिल्कुल
1: कि
0: सर।

0: अनुरोध गीत गौरबंद और मिट्टी दी खुशबू इनको बहुत अच्छा लगता है, और डिजिटल सुविधाएं जो इनको उपलब्ध करवाई जा रही है वो इनको अच्छी लग रही है। इन्होंने भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से।
1: क्या बात। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद आशीष और विश्वजीत भी यही लिखते हैं कि इनको गीत गंगा है, आकाशवाणी के जो भी प्रोग्राम पेश होते हैं वो इनको सभी बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी।
1: चक 10 एसटीपी लाडगल जाटान से रामेश्वर निरानिया, सुमन, दिव्या, नूतन, इनका भी ये एक ही मैसेज है कि पिछले दिनों जो आपने बदलाव किए हैं वो इनको बहुत अच्छे लगते हैं, और AIR सूरतगढ़ ऐसे ही दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता रहे।
0: दिन दोगुनी रात
1: चौगुनी।
0: जी रश्मि जी, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह इनका प्यार बरसता रहे। जाते जाते एक गीत हम इनको सुना देते हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल।

0: नवीन जी, इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम आपका पत्र मिला से इजाज़त लेते हैं।
1: जी बिल्कुल, इजाज़त लेते हैं क्योंकि समय जो है वो अब इतना नहीं रहा है, कार्यक्रम समाप्त होता है और अगली बार इसी कार्यक्रम में हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद जी।

आज दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 12:30 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान 12:50 पर। दिन में 1 बजे का समय रहेगा प्रादेशिक समाचार का। बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:05 पर। दोपहर 2 बजे का समय रहेगा समाचार का। फिल्म संगीत में कुछ फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर। और 3 बजे आप सुनेंगे उर्दू सर्विस।

सुन सकते हैं शाम को 6 बजे। सराइकी का समय रहेगा 6:05 का। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30 का। जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:40 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे आप शाम को 7 बजे। फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, ये कार्यक्रम सुनेंगे आप रात 8 बजे। 8:15 पर आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर।

8:45 पर समाचार संध्या का समय रहेगा। सुगम संगीत में कुछ गजलों का आनंद आप लेंगे 9:15 पर। मिट्टी दी खुशबू आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और हिंदी में समाचार का समय रहेगा रात्रि 11 बजे का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि छाबड़ा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुमार सानू और लता बेला के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है इम्तिहान, गीत फैज़ अनवर का है और संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म नाजायज का ये नगमा। आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की है, गीतकार इंदिवर हैं और संगीतकार अनु मलिक।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 12:50 हुए हैं। अब किसान भाई सुने कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है मूंग और मोठ की फसल में कीट रोग नियंत्रण।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की, और खेती पाती में देखें तो अब दलहनी फसलें जिकी बिजाई है अपना जो किसान भाई लोग अभी कर ला रहे है और कर भी दी, क्योंकि अब देखा नहीं तो मूंगी जी की बिजाई है वह लगभग अपना जो किसान भाई लोग वहाँ कर दी, लेकिन मोटीज की बिजाई है वह भी अब किसान भाई लोग जो कहे भी अपने ई महीनागा ई पखवाड़ा का वहाँ कर सके और कई अगेती जी की बिजांत है किसान भाई लोग कर दी। लेकिन अब बात करें जी हाँ मूँग बारे का वहाँ, तो मूँग जिकी है वह दलहनी फसल है जिकी प्रोटीन से भरपूर फसल है, लेकिन आप बढ़िया और शांति फसल जद ही ले इसका जद आ पाएंगे अच्छी तरह से राख रुखाड़ी करा बढ़िया तरीके से आ पाएंगे खेचल करा। और इंगे लिए के करनो है कि जका भाई लोग अगेती बीजांत कर रखी है तो भी जका मूंग है फिलहाल देखा तो बढ़वार पर चालन ला रहे है और बंग माँ अब बरसात को जो मौसम चलन ला रहे है अब लारले दिना जिकी बिरखा हुई छांटा छिड़को जो हुयो तो बी सुखी है कि खरपतवार जिसी आपने समस्या है वह अपने खेतों का माँ मूंग माँ देखने मिलेगी। तो सहसु जरूरी बात तो आई है कापा टेम रेता थका खरपतवार रहित राखनी जरूरी है, क्योंकि जी आपने बरसात होएगी या फिर आपने खेत का अगर कोई खरपतवार लगेड़ो है बिना नमी मिलेगी तो वो ओसलटा चढ़ जाएगो। तो ओसलटा चढ़े इशू पहला की है का आपने भी निकालना जरूरी है, खरपतवार ज़्यादा बढ़ गयो तो भी इशू किया का अपनी मूंग जिसी फसल है बा खराब भी हो सके, बिंगो जो को उत्पादन है वो भी घट सके। या देश का तो आपा ने ज़्यादा खेचल कौन करनी, लेकिन थोड़ो थोड़ो अगर अपनी अलग खरपतवार जो है वो अगर पैदा होने आ रहा तो बिना खेत में जाके टेम टेम पर आपा निकालते रहे वहाँ तो ज़्यादा आपने क्या कि ज़्यादा खेचल भी कौन करनी पड़े नहीं, क्योंकि खरपतवार अगर आपने खेतगा में हो जैसी तो बीच में कई रोग व्याधियाँ कीट जका है लटा जकी है भी आपने खेतगा में अपनी फसल गा में आ जाए और बाद गाँव फिर आपने जो को फालतू को खर्चो लगाना पड़े अपने नियंत्रित करने खातर कई बार छिड़काव जका है बेंगा मंगा अपन करना पड़े। तो जरूरी तो आई है कि आप खरपतवार रहित रखा चाहे अपनी मूंग की फसल है चाहे अपनी मोटी फसल है चाहे अपनी दूसरी फसल है। और इंगा सागर सागर थाने एक बात और कैसा कब बरसात को मौसम चलन ला रही है तो ई मौसम में क्या है कि मूंग जिसी फसल है या फिर मोट जिसी फसल है अन्य ज़्यादा पानी की जरूरत कौन पड़े नहीं, एक दो पानी जो कहे भी अगर बढ़िया बरसात हो जाए तो अपने ऊपर से पानी देने की जरूरत कौन पड़े, तो अपन जब भी पानी धानी देवा तो अपन मौसम ने ध्यान में रख थका ही देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी से क्या कि मूंग है भी नष्ट हो जाए बढ़ जाए बाद फिर अपने हाथ पर लकी रहे कोने नहीं। और अब बात करें जी हाँ अपना किसान भाई लोग है भी अगर लगे कि अपने

मूंगीज की फसल है, बीमा कोई कीट पतंगा जका है, रोग जका है, बे लाग रहा है, तो बांगो नियंत्रण जो है वो भी करना जरूरी है। और खरपतवार के सागे सागे अपन की है कि जका कीट है, पतंगा है, बांगी भी अपन जांच पर कर तो रहना जरूरी है। खेत में जद भी जावा तो अपन ने पत्ता का आस पास भी देखना चाहिए, खेत का माँ घूम फिर के भी देखना चाहिए का अपनी फसल का माँ कोई रोग व्याधि या फिर कोई कीट ना लगे है। अब देखा ना तो अब कातरा जिसी आपने समस्या है ना, पा अपनी फसल का मारने की ज़्यादा संभावना रहे बिया, तो वो क्या कह जून जुलाई का माह या फिर मानसून जो को अब चलन ला रहे इन माह ज़्यादा देखने मिले। और कातरो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो एक मोटी लट हुआ है जिसकी पूरी पूरी अपने फसल ने नष्ट करना है। और बाकी है कि आपने फसल का तना शू लेगी और पत्तियां के ऊपर सिरे तक की जिसकी खाने को काम है वो करे, कातरो बड़ो खतरनाक हुआ है। तो इनको नियंत्रण जो है वो करना जरूरी है। और इनके लिए अपन की करना है कि अपा जद भी खेत का माँ जावा और अपन ये लगे का अपने खेत का माँ कातरो है, तो बिंगे लिए अपन ने कुनाल फोर्स 1.5 सैकड़ा जो कि चूरना है वो 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से अपने बिंग बुरकाव जो है वो करना जरूरी है। और इनके अलावा छोटो मोटा कीट पतंग है जका भी अपनी जो कि मूंग की फसल है बिन नुकसान पोगा है, तो एक तो बढ़िया तरीको वो भी है कि आप खेत का माँ प्रकाश पास है वो आप लगा सका। प्रकाश पास क्यों की है कि आस पास अगर जब कीट पतंग है बे बिंग सारा आगे भीड़ा हो जाए, बीचू भी नष्ट हो जाए, या फिर अपन जो फेरोमेन ट्रेप है वो भी आप लगा सका। तो बीचू अपनी जो फसल है बिंग माँ कोई ज़्यादा अपन छिड़काव कौन करना पड़े नहीं, अपन रसायन जो को है वो खरीद के कौन लेना पड़े नहीं, और अपना जो खर्चो है वो भी ज़्यादा कौन लगे। तो प्रकाश पास होया या फिर आप फेरोमेन ट्रेप होया ये थोड़ा सा कम खर्चा का माँ ही आप अपनी जो फसल है बिना बचा सका। और इनके अलावा भाई लोगों आपने जो मोइला है, सफ़ेद मक्खी है, हरियो तेलो है, वो भी आपने मूंगी जी की फसल है बिंग माँ ज़्यादा लगे, और रस चूसने वालों कीड़ो है, और इनकी रोकथाम के लिए अपने भी क्या का थोड़ा सा जागरूक रहना जरूरी है। और टेम सरिंग और नियंत्रण जो है वो करना जरूरी है। और इनके नियंत्रण के लिए अपने डाई मिथियोट 30 cc एक दवाई आवे जिसकी अपा 250 मिलीलीटर प्रति बीघे की दर से आप बिंग छिड़काव करना चाहिए, या फिर मेला थ्यान 5 सैकड़ा जो चूर्ण है वो 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप बिंग बुरकाव कर सका। पीड़ा मोजक विषाणु जो है अगर आपने मूंग की फसल है बिंग प्रकोप दिखाई देवे, तो इनको जो को नियंत्रण है वो कि है कि आप बुआई का 15-20 दिन बाद का माँ बिया तो देखा तो वो जो को प्रकोप है वो देखना अपन मिले, और बीमारी का ज़्यादा प्रभाव चूंकि है कि फसल जिकी है वह ज़्यादा आपने दबण ला जाए, कई बार नष्ट होने ला जाए, तो इनको भी अपन ने नियंत्रण करना जरूरी है। और पहलो जो को छिड़काव है वो अपने बुआई का 15-20 दिन बाद का माँ शुरू कर देना चाहिए ताकि अपने वो मोजक जो को पीड़ा मोजक रोग है वो अपनी फसल का माँ ना लगे। और इनके अलावा जहाँ रस चूसने वाला कीट है, फली छेदक जगह कीट है, बंगो भी नियंत्रण करना जरूरी है। इनके लिए आपने अपना जगह विशेषज्ञ बात बताओ है कि अगर कोई अपना जैविक तरीका है बांसू भी आप अंग कीट पतंगों का नियंत्रण जो है वो कर सका। और जगह आपने विशेषज्ञ बताया जी हाँ गौमूत्र है या फिर कोई नीमनासी जो को तेल है बिंगो भी छिड़काव करके आप अपनी जो फसल है बिना बढ़िया तरीके से बचा सका, क्योंकि आजकल जो को रासायनिक तरीको है वो ज़्यादा महंगो हो गयो और उत्पादन जो है वो थोड़ा सा गड़को सो घटन भी लाग रही है, तो अपन ज़्यादा खर्चो लगा से उत्पादन अपना कम होगा तो बीच क्या का अपन ज़्यादा फायदों को नहीं होनी। और अपना विशेषज्ञ की शुरुआत के दौर पर ही आई राय रही है कि आप उत्पादन ज़्यादा लेना है और खर्चो जो है खेत के ऊपर कम करना है, तो बिंग लिए अपना जगह प्राकृतिक तरीका है भी अपनाना जरूरी है, रासायनिक तरीका है अगर लागे का अपन अब प्राकृतिक तरीका से पार कौन पड़े नहीं तो फिर आप आखिर का हमारा रासायनिक तरीका है जगह भी अपनाना चाहिए। और अब जो को फेरोमेन ट्रेप वाले थान थोड़ी देर पहले बात बताई थी, फेरोमेन ट्रेप एक इशू है जो को छोटा मोटा सगड़ा जगह कीट है जगह पर रसायन शू खत्म करना चाहवा भी फेरोमेन ट्रेप शू नष्ट हो सके, प्रकाश पास है बीशू भी नष्ट हो सके, तो कोशिश तो आई करनी है कि हर बिघे के अंदर 2-4 जगह फेरोमेन ट्रेप है या फिर प्रकाश पास जगह है भी अपन लगा देवा तो बीशू की है कि आपने जो की फसल है बा कीट पतंगा शू बची रहेगी। अब बात करें जी हाँ कई फली छेदक जगह कीट है बने भी और तरीका शू आप कर सका। अब पुराने टाइम का माँ तो की है कि आपने जगह बड़ा बुजुर्ग हा किसान जो कहा बेकी है छोटी मोटी अगर लट्टा खेत का मां देखने ला जाते तो भाई 2-4 बंदा घर का जागे और बाने चुगड़ों को भी काम कर देता, या फिर अपन टेम टेम पर जागे थोड़ा सा पर कर ले वहाँ और फिर भी अपन ये लग है कि अपनी फसल का मां ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर अपन रासायनिक जो छिड़का है वो करना जरूरी है ऐसा। अब बात करें जी मोठ है, मोठ भी एक दलहनी फसल है और आपने जो किसान भाई लोग बैठा बीजांत करे और इंग की बिजाई है बा देखा नहीं तो अब वर्षा काल जो है वो मानसून जो है वो शुरू होना शुरू लेगी और 15 अगस्त तक भी लगभग अपने किसान भाई लोग अभी बीजांत कर सके, तो आपने इन क्षेत्र का मान जगह किसान भाई लोग भी बीजांत करना चाहो तो लेट लतीफी अभी हो भी की लेकिन फिर भी अपने मोटी चीज की बीजांत अब कर सके। इशू पहला क्या है कि आपने बीज उपचार जो है वो करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार करे बगैर आप कोई भी फसल की बीजांत करानी तो बाद में फिर कई तरह का जगह बीज जनित जगह रोग है, आपने भूमि जनित जगह रोग है वे अपनी खड़ी फसलों में लाग जाए, कई बार आपने जो उत्पादन हम बहुत घट जाए, कई बार आपने क्या पौधा जगह है वे उगाव बहुत कम ले हुए।

0: तो बीज उपचारित करना जरूरी है। और इंगली अपन थायरम या फिर केप्टोन 3 ग्राम जो कि प्रति किलो बीज के हिसाब से अपना बीज का उपचारित करना चाहिए। और मोट जो की है बिना अपा राइजोबियम जो को कल्चर है बीज भी आप उपचारित करके और बढ़िया तरीके से आप भी बीजांत करनी जरूरी है। और रही बात पानी धाणी की, तो पानी धाणी किया का वर्षा काल कुछ समाचार आ रहा है तो इनमें आप अपना सिंचाई व्यवस्था एक दो है तो आप मोटी चीज बीजांत आप जरूर करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी फसलों की भांति आपने ज़्यादा पानी की जरूरत कौन पड़े नहीं। मोट जो है वो भी थोड़ा सा पानी से आप बढ़िया और बेहतर तरीका से अपनी जगह फसल आप ले सका। अब रही बात निराई गुड़ाई की, तो आपने मोट की जगह बैलों का अगेती बीजांत कर रखी है तो बी टेम की एक अपने खेत का माँ थोड़ी सी रूणी निकालनी पड़े, पानी धानी हल्को फुल्को देना पड़े। और जब आप बीजांत कर दे और ऊपर से हल्की फुल्की बरसात हो जाए तो खरपतवार पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। तो आप खेत का माँ कसियोली जागे या फिर कोई हेरू फेर गए आप अपनी फसल का माँ थोड़ी सी माटी जी की आप पोली कर देवा बीचों की है कि माँ पनपेड़ा जगह उगेड़ा जगह खरपतवार है बे नष्ट हो जाए और बीचों अपनी फसल जी की है दब्बे को नहीं। कई बार आप थोड़ी सी लेट लेते फिर भी गा रह जावा क्या चलो एक दो दिन बाद गवा कर ले जा तो बीचों की है कि अपने भूमि में नमी तो हो गई है और खरपतवार जो को है वो अपने फसल ना ज़्यादा बढ़वार ले तो फिर बाद गवा फिर ताबे को नहीं आनी। तो इन वास्ते थोड़ा थोड़ा पनपे तो बीच पहला भी आप की है कि अपना जो खरपतवार है वो निकाल देवा और अपनी जो फसल है बिना खरपतवार रहित रखा। अब मानसून को जो टाइम चलना आ रहा वर्षा को जो टाइम चलना आ रहा तो इंगमा की है कि अपने इंगमा मोटी जो फसल है इंगमा भी कई तरह जगह रोग व्याधियाँ कीट पतंग भी लागने की संभावना रहे तो बिंगे लिए भी आप जो फेरोमोन ट्रैप है या फिर आप जो प्रकाश पास है बिंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप अपनी जो फसल है बिन बचा सका। तो आ बातों को पूरा ध्यान रखना ऐसा पर अब खेत करिए काम धंधा और भी करना है हूँ चालू। राम राम सा राम राम।
1: किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में आयोजित की जा रही है। भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और बेमिसाल मेहमान नवाजी की मिसाल है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये मेहमान अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। गौरतलब है कि दो दिन की इस बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने, टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन में AI के इस्तेमाल, कौशल विकास तथा पर्यटकों के लिए निर्बाध यात्रा सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन और बिना अनुमति राजनीतिक सभा और जुलूस पर रोक लगाई गई है। साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आचार संहिता का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करने और प्रचार सामग्री तथा सोशल मीडिया के संबंध में निर्वाचन आयोगों के निर्देशों की पालना करने को कहा है। भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में अधिकारियों को आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने और स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। झुंझुनू में स्वीप कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट का आयोजन कर लोगों को निर्भीक होकर मतदान के लिए जागरूक किया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश के PM श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ वेबिनार के माध्यम से संवाद किया। जयपुर में हुई इस वेबिनार में स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छ तथा हरित विद्यालयों के निर्माण, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के प्रभावी संचालन और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशल विकास पर भी विचार विमर्श किया।

0: बांटा गया। इसके अलावा स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों को साझा किया गया। इस वेबिनार का यह वेबिनार पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह वेबिनार हर महीने आयोजित की जाएगी, साथ ही अन्य राज्यों के स्कूलों में किए जा रहे नवाचारों का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश के विद्यालयों में लागू करने पर विचार किया जाएगा। नीट पीजी परीक्षा 2026 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जिलों में 48 केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल परीक्षा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभागों से आपसी तालमेल के साथ परीक्षा की सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात सहित सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जल्द ही राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र और शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्र के माध्यम से राजस्थानी भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति और शोध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शोधार्थियों को राजस्थानी भाषा के अध्ययन का अवसर मिलेगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई, वहीं पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार धौलपुर में 3 सेंटीमीटर, बारां के शाहबाद और अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 2-2 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। बारां, माउंट आबू, अलवर और टोंक सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश हुई। बारिश का दौर कमजोर पड़ने पर राज्य में गर्मी और उमस का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

राम राम सा खम्मा गणी जय श्री कृष्णा। मारे लाडली बहना, लाडो भाइया, पूजनीय सासू जी और आपनी सुगर्द समझदार और आदर जोग हुनरबाज सहेलिया ने थारी अपनी थारे सुख दुख री साझीदार रेडियो सखी सिलू जी जी रो कालजे री कोरा सू प्यार भरो राम राम सा। लो सा घड़ी री सुइया 1:05 ऊपर कर दिया है। खेत खलियान रो मोटो काम ढाणी रा चक्कर और रसोई रो रोटी पानी रो काम निपटार मारो पूरो घर आंगणो साफ सुथरो हो गयो है सा। थारी आजी जी पाछी हाजिर होगी है थारे आपरे चहेते रेडियो स्टेशन माथे लेनर थारी सगलिया रो कालजे रो टुकड़ो थारो खुद रो हंसतो खेलतो कार्यक्रम घर आंगन। बहनों मन पतो है सुबह सूरज उगण सु पहला मारी सगली बहना मशीन रजिया काम करन लाग जावे। 1 ताई सगलो काम निपटा लेवे और अब ठंडी ठंडी हवा रे मायने रेडियो सामी बैठगी होनी अपनो कार्यक्रम सुनना। सची कहूँ दिन रो ओ 1 मारो और थारो अनमोल है सा। जठे बस मैं हूँ और मारी फूटरी फूटरी बहनारी टोली। बहनों आज रो ओ कार्यक्रम बहुत ही चटकदार है सा। बात्यारो इसो तानो बानो कि थाने घड़ी रो पतो ये कौन चाल सी की कद 1 बीत गयो। लो सा आज आपा बातारी शुरुआत करेला पर पहला कार्यक्रम री

तो दुनिया रे माए चाहे कितो भी घूम लो, पर जिको सुकून और स्वाद आपने राजस्थानी थाली रे माए ना है नी, वो कठिन ही मिला है। आपने थाली री सबसे अनोखी खूबी आ है कि अठहरो खानों खाली स्वाद वास्ते को नहीं, आपने शरीर वास्ते भी गुणकारी हुआ है। बनो जी आप सर्दिया रे मायने बाजरी री रोटी खावा और गर्मिया ने मायने राबड़ी बना है सा। राबड़ी गर्मी रे माय पीवा तो शरीर ठंडो रहे है, क्योंकि बहनों बाजरी रे मायने फाइबर हुआ है जिका शरीर रे वास्ते अच्छा रहे। दूजी आपने कैर सांगरी और पंचकुटारी सब्जी, ओ तो आपने राजस्थान रो यूनिक और शाही गहनो है सा। केर और सांगरी इसी रूख माथे उग गए जिके ने बेसी पानी री जरूरत कोनी हुआ है। इन सब्जी री मोटी खूबी आ है कि आ खराब भी जल्दी सी कोनी हुआ है। थे कठी दूर थाने सफर रे मायने जावनो हुआ है या कठी घूमन ने जावनो हुआ है या गांव मायने कई मोटो काम हुआ है, तो आ सब्जी बना लियो, सागे तो खाने में भी चोखी और सागे कई दिना तक ताजी भी रहे है और सेहत ने भी फायदो करे है और स्वाद मायने भी चोखी। तीजी खूबी है आपने अठेरो विशेष भोजन दाल बाटी चूरमो। थाली रे मायने जिया ही एक खानी दाल बाटी घी चूरमे री मिठास होवे और दूजी तरफ काचरी और लहसुन री तीखी चटकदार चटनी होवे। लहसुन री चटनी इन गर्मी रे मायने थारे हाजमे ने दुरुस्त रखा है। सच्ची कहूँ बहनों आपनो खान पान चोखो है सा जिको आपने काया ने निरोगी भी रखा है। बाजरे रो सोंगरो और सांगरी री सब्जी सा, बाजरे रो सोंगरो और सांगरी री सब्जी सा, जीमर तो देखो मारी आ राजस्थानी थाली सा। वाह सा वाह, थाली री बात सुनर तो मारी तो कई बहना रे मुंडे रे मायने पानी आ गयो होवेला। और वह सोचती होलो कि भी चलो शाम ने अपा भी दाल बाटी चूरमो बना सा। अपनो राजस्थान तो है ही चटकीलो सा, कितनी मीठी अठेरी बोली, कितो चोखो अठेरो खान पान। बना रहो सुनता रहो ओ आपनो अपनो कार्यक्रम घर आंगन सिलू जी जी रे साथ है। ओ प्रेम सुभरोड़ो रिश्तो ही तो है अपनी शान सा।

लो साकी तो पूछ रो गीत आपा भी सुनो हो। अब आवा अपनी बात रे मत है। आपने अठरे भोजन और बिंगी खूबी रे मत है और आपने भोजन रे गुण और सेहत के राज मत है। बनो साची का

0: कि आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: सियाग हॉस्पिटल सूरतगढ़, एक ही छत के नीचे संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें है कंप्यूटराइज्ड नेत्र परीक्षण एवं रिफ्रैक्शन सुविधा, येग लेजर कैप्सुलोटॉमी, बिना टांके की फेको मोतियाबिंद सर्जरी, मल्टीफोकल और EDOF लेंस, साथ ही एडवांस रेटिना जांच भी की जाती है। नवजात शिशुओं के लिए नीकू पीकू वेंटिलेटर सुविधा और साथ ही एडवांस लैब, डिजिटल एक्सरे और C-arm रेडियोलॉजी सुविधा। यहाँ पर सभी प्रकार की लेजर सेवाएं, हेयर ट्रांसप्लांट और त्वचा रोगों का आधुनिक उपचार किया जाता है, हड्डी जोड़ों एवं गठिया का आधुनिक उपचार, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और फिजियोथेरेपी भी की जाती है। पता है 155 ट्रांसपोर्ट नगर, न्यू बस स्टैंड के सामने, सूरतगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9983249502। सियाग हॉस्पिटल सूरतगढ़।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
5: ਮੈਡਮ ਕਿਤੋਂ ਪੂਠ ਰੋਗ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਬਰਸਾਤ ਰੋ ਮੌਸਮ ਚੋਖੋ ਤੋਂ ਗਣੋ ਹੀ ਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਝੂਮਣੇ ਨਾਚਣੇ ਰੋ ਵੀ ਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਰੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਰੇ ਮੌਸਮ ਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਹੋਵੇ ਨੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੱਟਣ ਸੋ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਚੋੜਾ ਰੇ ਮੈਂ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਬਦਲਤੇ ਮੌਸਮ ਰੇ ਮਾਇਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋ ਜੇ ਕੋ ਸੰਤੁਲਨ ਨਵਨੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਬਿੰਗ ਸੁਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਹੈ।

जब तापमान अधिक होवे और आसपास पानी जमा हो जावे तो मच्छर रोग प्रजनन तेजी से हो जावे है। इंग वास्ते ई बरसात रे मौसम माने तो साफ सफाई रे प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहनो चाहिए। भी साफ सफाई तो अपन ने हमेशा ही रखनो चाहिए, पर ई मौसम माने तो बहुत ज़्यादा अपन ने सफाई रो ध्यान रखनो चाहिए। मैंने डेंगू रा जिका लक्षण होवे नी, शुरुआती दिना रे मायने तो अपन ने हल्को फुल्को बुखार हो सी, सिर दर्द हो सी, आंख्या रे पिछाड़े दर्द होवन लाग जैसी, मांसपेशिया रे मायने दर्द, थकावट और या कमजोरी सी लाग सी, और कदी कदी अपन ने उल्टी भी आवन लाग जावे, और कई बार बहनों वो ज़्यादा बढ़ जावे तो अपनी प्लेटा भी कम पड़ जावे, तो अपन ने तुरंत ही डॉक्टर रेखा ने जार संपर्क करना चाहिए। और टाबर हो, बड़ा हो, बडेरा हो, घरों कोई भी हो, किंग में भी या थोड़ा बहुत लक्षण दिखे नहीं तो अपन ने तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। घर और आंगन रे मायने साफ सफाई रखनी चाहिए। गमला, टायर और बाल्टी रे मायने थोड़ा बहुत भी कोई पानी जमा होवे तो तुरंत खाली कर जो। घर री छत और आंगन रे मायने पानी जमा ना होवन दो, ई बात रो खास ध्यान रखनो चाहिए। खिड़कियाँ और दरवाज़ा पर जाली या नेट लगवा लो, जिंसु के है कि मच्छर आपने घर रे मायने कोनी आ पासी। मच्छरदानी रो उपयोग जरूर करो, और टाबरिया वास्ते, बडेरा वास्ते तो जरूर ही करनो चाहिए। और हाँ, सागे सागे अपने अपने शारीरिक सावधानी भी रखनी चाहिए, शरीर भी साफ सफाई रखनी चाहिए, पूरी बाजूरा कपड़ा पहन लो, रात ने भी मच्छर ना खावे। मैडम अपने सगला ने भी जागरूक होना चाहिए और अपने आस पड़ोस रे मायने भी जागरूकता लियानी चाहिए। नालिया मायने पानी जमा होने वाली जगह री सफाई नियमित करनी चाहिए, और स्वास्थ्य विभाग रो छिड़काव भी कई बार होवे है जिके सुके अपने मदद मिल जावे और मच्छर कम होवे है। बदलते मौसम रे मायने बहनों ए जिका बुखार, सिर दर्द, उल्टी ए थोड़ो ज़्यादा फैल जावे तो ई टाइम अपने थोड़ो सो ध्यान रखनो चाहिए है। स्वास्थ्य और सफाई रे उपाय जिका होवे नी वह अपने रोजमर्रा री आदत रे मायने शामिल करना चाहिए। टाबरिया ने भी सिखावनो चाहिए कि बारह सू जद भी आओ तो मटके रे मायने सीधो हाथ ना खालो, पहले साबुन सू चोखी तरह हाथ धो, पछे ही पीने रो पानी लियो। और पीने रो पानी पीण वास्ते उसके तो बहनों वो डंडी वाले लोटे रो इस्तेमाल करनो चाहिए। बदलते मौसम रे मायने कई बार शरीर बीमार रहन सो अपनो कमजोर भी हो जावे तो अपन ने संतुलित भोजन करनो चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। जद आपा आपरो ध्यान राखसा और अपने परिवार रो ध्यान राखसा जद ही अपनो परिवार स्वस्थ और खुश रह पासी। बहनों एंग साफ सफाई री बह व्यक्तिगत को नहीं होवे नी, अपने समाज रे लोगों ने भी समझावनो चाहिए के भी कचरो इन्ने बिन्ने ना फेंको, आपकी जगह पर ही गेरो, या फिर भी इन्ने बिन्ने साफ सफाई रखो, सड़कारी सफाई रखो और अपनो पर्यावरण भी सुरक्षित रखो। जब सारो कुछ स्वच्छ रहसी, बढ़िया रहसी नी तो अपने बदलते मौसम रे मायने बीमारियाँ अपने खने फटकी को नहीं पासी। तो मैडम बातचीत रो दौर तो इं ही चलते रहसी, पर बातचीत रे सागे सागे जे अगर चोखा चोखा गीत भी होवे नी तो के कहवनो। तो चलो सावन रो महीनो और चोखा चोखा गीत सुनावा थाने एक बढ़िया सो और प्यारो सो गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
7: बहनों, कितो अच्छो आपा भी गीत सुनो हो। और बहनों, बिरखारो मौसम है और बरसात घनी हुआ है और पानी रे बिना तो आपा जीवन री कल्पना भी कोनी कर सका। अरे मेरी प्यारी बहनों, थोड़ो ध्यान दो और मेरी बात सुनो। पानी अपने जीवन रो सबसे मोटो धन हुआ है। बिना पानी रे धरती पर जीवन री आपा कल्पना भी कोनी कर सका। हाँ, इंसान, जानवर, पेड़ पौधा और सगला जीव जंतु सगला ही पानी रे ऊपर निर्भर हुआ है। रोजाना अपने काम रे वास्ते पानी री जरूरत पड़ा है, चाहे नानो दोनों होवे, साफ सफाई होवे, चाहे खेतारे मायने

काम करना हो है। पानी सब सू पहली आपने चाहिए है। और हाँ, पानी सू ही अपने जीवन रे मायने हरियाली और खुशहाली आवे है। बिना पानी के तो इंसान री सेहत भी बिगड़ जावे है, क्योंकि आप कई बार पानी ना पिया नी या कम पी लवा पानी तो बिंग सू की आपने थकान, कमजोरी या लागन लाग जावे है। क्योंकि वो जिको पानी होवे नी वो ही अपने शरीर ने नियंत्रण मायने रखे है। नदी, तालाब और झीला ये सारा ही अपने जीवन रा मुख्य स्रोत होवे है। इंगसु ना खाली पानी मिला है बल्कि अपने जीव जंतुआ और पक्षियों ने भी नयो जीवन मिला है। पानी री कदर करनो हर इंसान री जिम्मेदारी होवे है। जल ही जीवन है हर एक कहावत नहीं बल्कि आ सच्चाई है, और अपने इन्हें समझनो भी चाहिए और पानी ने बचावन वास्ते आपरे टाबरिया ने भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। पानी की कमी सू कई जगह पर खेती और जीवन भी प्रभावित हो जाए, क्योंकि पानी कम हो सी तो अपने फसल उगाने में दिक्कत होवे, तो अपने पानी की हर जगह पर जरूरत पड़ी है। मैडम, पानी खाली पीने

सच्चाई है और आपां ने इन्हें समझनो भी चाहिए और पानी ने बचावन वास्ते आपरे टाबरिया ने भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। पानी की कमी से कई जगह पर खेती और जीवन भी प्रभावित हो जाए, क्योंकि पानी कम हो सी तो अपने फसल उगाने में दिक्कत होवे, तो अपन ने पानी की हर जगह पर जरूरत पड़ी है। मैडम पानी खाली पीने और घर रे काम तक ही सीमित को नहीं, अपन ने खेती रे मायने भी जिया धान उगावा, गेहूँ, बाजरा या कोई भी फसल पानी ने बिना कोनी उग सके। और अच्छी बिरखा होवे, अच्छी बरसात होवे और अच्छो पानी होवे तो अपना खेत भी हरा भरा रहवे है। यही अपने पशुओं ने नुआन धुआन वास्ते बने पानी पाने वास्ते भी अपन पानी की जरूरत होवे है। पानी सू ही जीवन रे मायने हरियाली, खुशहाली और समृद्धि आवे है। और कई बार बना पानी की कमी सू धरती भी सूख जावे है। इन वास्ते पानी रो अपन सही तरीके से इस्तेमाल करनो चाहिए। बिरखा रो जिको पानी हावे बिना अपन एकत्रित करनो चाहिए और टाबरिया ने भी सिखानो चाहिए कि पानी फालतू मायने बर्बाद ना करे। जिकी जितनी या जरूरत होवे नहीं बीतो ही पानी यूज मान रहे। कई बार आप देखा कि टाबरिया मंजन करे तो वे टूंटी खुली छोड़ देवे और ब्रश करता रहे, शीशे में देखता रहे। तो अपने टाबरिया ने सिखानो चीज़ है कि चाहे तो बाल्टी और लोटो लेर बिया मंजन कर लो, नहीं तो टूंटी ने एक बंद कर दो। जब अपने पानी की जरूरत होवे जदि अपने टूंटी खोलनी चाहिए और पानी का उपयोग करना चाहिए। कई बार टाबर पीने वास्ते गिलास भर लेवे काठी और एक दो गुटका पी लेवे कि वो यहीं ढोल देवे, तो टाबरिया ने यह छोटी छोटी बातें अपने सिखानी चाहिए। और बिरखारे पानी ने आप किया ही भेड़ो करांगा इन बारे में बातचीत करा ला, पर पहले सुनावा एक था ने चोखो सो गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
7: मैडम, बिरखा ने देख तो आपा गांव वाला या शहर वाला किसा भी है, सारा रो मन हरक जावे है, सगला ही राजी हो जावे है। और आपा तो कहवा भी हाँ कि बिरखा बरसी मोकली जागी हिवड़े आस, बिरखा बरसी मोकली जागी हिवड़े।

पास, गाड़ा भरसी धान रा डांगर चरसी घास, गाड़ा भरसी धान रा डांगर चरसी घास, बिरखा खाली पानी कोनी सा, आ किसान रे सपना और खुशहाली री निशानी भी है। तो बादलिया ने देख तो आपनो मन बिया ही हरक सु भर जावे है। और पानी री एक एक बूंद कीमती भी होवे है, एक एक बूंद रो मोल होवे है। अपना दादा परदादा तो बरसात रे पानी री हर बूंद ने सहेजता हा, भेड़ो करता हा। तालाब, जोहड़, बावड़ी, कुंड, ऐ सगला प्रकृति री ही देन है। बिरखा रू पानी सबसू शुद्ध होवे है, चोखो होवे है। इन्हें आपा पीवन मायने भी काम मायने लेवा हाँ। बिरखा रो पानी जद जमीन मायने जावे तो कुआं, ट्यूबवेल और बोर री गहराई भी घट है। बरसात रो पानी खेतारे मायने जावे तो फसल चोखी होवे। वर्षा जल संचयन अलग अलग उद्देश्य वास्ते भी जल ने संग्रहित कर बिना काम मायने लियो जावे है। मैडम, इंगो असली उद्देश्य तो वही हुआ है कि बिरखा रे पानी ने बर्बाद होवन सु बचावनो, इन्हें बैवन सु रोकनो है। सरल प्रणाली रो उपयोग कर आपा पानी ने बचा सका हाँ। बिरखा रे पानी ने एकत्र करनो सरल और किफायती भी है, क्योंकि बरसा रे जल ने संचयन की एक सरल विधि होवे है, सतही अपवाह संचयन और छत पर वर्षा जल रो संचयन। बहनों, सतही अपवाह संचयन मायने सड़क और बगीचा जिसी सतह पर बहन आले पानी ने बर्बाद होवन सु बचायो जावे, इन्हें इकट्ठो करो जावे। ई पानी रो भंडारण आपा टैंक और तालाब रे मायने घालर अलग अलग उपयोग वास्ते कर सका हाँ। छत पर भी आपा वर्षा रे जल ने इकट्ठो कर सका हाँ। घर या इमारत री छत पर वर्षा जल इकट्ठो करो जावे। पाइप लगार बिरखा रो पानी गड्ढे या टैंक रे मायने ले जायो जावे, वो पाइप पानी ने छत सु बैवन सु रोके है। बहनों, पानी अपने जीवन वास्ते बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इंगे बिना आपनों अस्तित्व ही संभव कोनी। आपा ने ही वो सुनिश्चित करनो चाहिए जाए कि आपा प्रतिवर्ष आपा बिरखा रे मौसम रे मायने पानी रो संचयन करा। सफल और निरंतर प्रयास करना चाहिए जाए। जिंसु के है कदी बिरखा ना होवे या पानी की कमी होवे तो आप भी पानी ने काम रे मायने ले सका हाँ।

0: कितो पूठरो ओ लोकगीत आप सुने हो समंदरिया। पर समंदरियो आखिर समंदर री बात क्यों करे है, जबकि राजस्थान रे मायने तो समंदर है ही कोनी। ई गीत रे मायने समंदरियो खाली समंदर कोनी, ओ सावन री उमड़ती भावना रो रूपक है। जिया समंदर रे मायने लहरा उठे, बिया ही बरसात रे मौसम रे मायने मन भी हिलोरा खावे है, और फेर आवे है पिछोला झूला खावे सा। अठे बात होवे है उदयपुरी प्रसिद्ध पिछोला झील री। समंदर लहरा लेवे और पिछोला झील झूलन लाग रही है, यानी पूरी प्रकृति ही सावन रो उत्सव बनान लाग रही है। नथ चुड़लो रखड़ी नेमद पायल झुमका, ए सारी चीजा नायिका अपरे प्रियतम सु मांगे है कि ए चीजा लावण रे बहाने सु ही थे माने मिलने तो आओ। आ खाली गहनारी सूची कोनी सा, आ नव विवाहिता रे प्रेम स्नेह और मिलन री अभिलाषा है। समंदरियो एक लोकगीत कोनी, सावन रे आवन री दस्तक भी है।
1: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: अरे भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले

0: रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: बहनों, परिवार रे मायने प्रेम हुआ तो मानो धरती पर ही स्वर्ग है। परिवार तो आदमी रे वास्ते जीवन रो कल्प वृक्ष हुआ है। जीवन री पहली पाठशाला ही घर और परिवार हुआ है। व्यक्ति आप रे जीवन री पहली सांस भी परिवार रे मायने लेवे और अंतिम भी। जेकर परिवार रे सदस्य रे मायने मिठास भरेली हो तो के कहनो। संयुक्त परिवार रे मायने दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, टाबर, माँ बाप, सगला मिलजुल रहवे है। घर मायने हंसी खुशी रो माहौल होवे। कदी कोई झगड़ो भी हो जावे तो अपना घरा घरा बड़ा बडेरा समझा बुझार पाछा आपा बिसाई हो जावा, हाँ पाछा अपनो प्रेम जोल बढ़ जावे है। घर मायने बड़ा बडेरा री सेवा भगवान री सेवा के समान ही होवे है। भेनो, प्रेम और सहयोग रो नाम ही परिवार है। अपन ने एक दूसरे की चिंता फिक्र रखनी, दूसरा रे हिता रो ध्यान रखनो चाहिए। घर रे मायने कोई काम होवे तो हमेशा मिलजुलर करनो चाहिए, और घर रे मायने सास ने भी अपनी बहू रे सागे बिसो ही व्यवहार रखनो चाहिए जिस वह अपनी बेटी रे सागे रखे है। हर ने आज़ादी मिलनी चाहिए और अपने सपना ने पूरा करने री आज़ादी मिलनी चाहिए। जेकर आप चाहवा कि आपरे परिवार मायने हंसी खुशी रो माहौल रवे तो परिवार मायने अपने बड़ा बडेरा रो सम्मान करना चाहिए, आपस रे मायने प्रेम री भावना रखनी चाहिए। इंग सुके है रिश्ता रे मायने मिठास भरेली रहवे है, और घर रे मायने हंसी खुशी रो माहौल होवे तो घर भी स्वर्ग री तरह सुनो लागे है। भेनो, चौमासे रो चालन लाग रो है महीनो, और आप चौमासे रो गीत ना सुना वो तो हो ही कौन सके। तो चलो थान सुनावा एक चोखा चोखो सो प्यारो सो गीत।

मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी और प्यारा प्यारा गीता रसागा ओ कार्यक्रम थार सामने प्रस्तुत करियो थारे आपरी बहन सिलू जी जी। और जो फेर मिलसा अबू चालू, राम राम।

0: Fighting spirit coming from a game down to overcome fourth seeds Chia Yifan and Zhang Shu Xian of China, 16-21, 21-15, 21-13. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands, today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
3: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन, दूरसंचार, डिजिटल

0: बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: Over the past decade, BRICS has emerged.
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
4: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जीएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
5: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश

0: के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार

0: 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

साधना सरगम के साथ कुमार सानू को भी आपने सुना। फिल्म का नाम था बरसात, गीत समीर का था और संगीत नदीम श्रवण का। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म बादल का ये नगमा। आवाज़ें सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की है, शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अलका याग्निक के साथ उदित नारायण को आइए सुनते हैं फिल्म लावारिस में। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत राजेश रोशन का।

अलका याग्निक और उदित नारायण को लीजिए सुनते हैं फिल्म कोयला में। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत राजेश रोशन का।

अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब सुनते हैं उर्दू सर्विस। हम आपको बता दें कि मीडियम वेव पर रखरखाव के चलते प्रसारण बंद रहेगा, केवल न्यूज़ ऑन एयर ऐप और FM पर प्रसारण चालू रहेगा।

सामिन आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 बजे हम पेश करेंगे मारूफ अफसाना निगार इस्मत चुगताई की यौम पैदाइश के हवाले से जनाब हसन ज़िया का तहरीर करदा फीचर उर्दू अफसाने की खातून अव्वल। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नए शुरू होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पुणे में ब्रिक्स आईसीटी मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तिरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इक्तिसादी शराकतदारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमेरिका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमेरिका की दाखिली इक्तिसादी मुश्किलात से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIA चालमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। टेली मुवासलात के महकमे ने बताया है कि भारत और ब्राजील ने टेली मुवासलात और इत्तलाती मुवासलाती टेक्नोलॉजी से मुतालिक तआवुन को मजीद बढ़ाने की खातिर आज ब्रिक्स ममालिक की इत्तलाती मुवासलाती टेक्नोलॉजी ट्रैक मीटिंग से अलहदा एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टेली मुवासलात के महकमे ने कहा कि इस माहदे से डिजिटल इख्तिरा को फरोग मिलेगा, डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को फरोग मिलेगा। पुणे में मुनाकिदा ब्रिक्स ममालिक के मुवासलात के वजरा की 12वीं मीटिंग से अलहदा मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के मुवासलात के वजीर फ्रेडरिको डे सिकेरा फिल्हो ने इस मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट में कहा कि इस मुफाहमत नामे से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, सलाहियत साजी और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले से मुतालिक दो तरफा तआवुन में मजीद इजाफा होगा। इस शराकतदारी का मकसद दोनों मुल्कों में शमूलियाती, महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम को फरोग देना है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अपने फैसले को आज तब्दील किया है। इसके तहत इब्तदाई सतह के कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने के लिए कानून के तलबा को 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस करना जरूरी था, जिसको अब 1 साल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AG मसीह और के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने 1-2 से यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवार जो 25 मई 2025 और 31 मार्च 2027 के दरमियान नोटिफाई किए गए हैं, इम्तिहान देने के मजाज होंगे। ताहम इन इम्तिहानात के जरिए मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को पहले ट्रेनी जुडिशियल अफसर के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा और उन्हें जुडिशियल एकेडमी में 1 साल की तरबियत हासिल करनी होगी, जिसके बाद मजीद 1 साल के लिए उन्हें क्लर्क के तौर पर काम करना होगा। हुकूमत ने छोटे और हाशिए पर रह रहे किसानों समेत सभी किसानों तक कम अज कम इमदादी कीमत MSP के फायदे पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा बड़ा कदम है। ये स्कीम लोगों के दरमियान कीमतें मुस्तहकम करते हुए किसानों को दी जाने वाली कीमतों को यकीनी बनाने के लिए सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। किसानों की बहबूद और ज़राअत के मरकजी वजीर ने बताया कि इस स्कीम के तहत पिछले कुछ बरसों में बजट में मुख्तस की जाने वाली रकम में इजाफा किया गया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पूरे एशिया और सिंगापुर के साथ इक्तिसादी साझेदारी को सनत से सनत के दरमियान मजबूत तालमेल पैदा करते हुए भारत के अज़्म को उजागर किया है। भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम में सिंगापुर के एंटरप्रेन्योर्स और भारतीय ताजिरों और तिजारती स्कूल INSEAD के फारिगीन से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने भारत के तरक्की के सफर, सरमायाकारी मौके और तिजारत के लिए पैदा की गई आसानियों को बढ़ाने की खातिर

वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के तहत हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। जनाब गोयल ने सिंगापुर के खारजी उमूर और तिजारत और सनत के वजीर ममलकत जियान सियो हुआंग और दीगर मौजूद शख्सियात से मुलाकात भी की। नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजारत के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने पीएम कुसुम के अगले मरहले के रोड मैप के बारे में बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने बताया कि कल इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मस्कूरा स्कीम के अगले मरहले में जरई शमसी तवानाई को मजीद फरोग देने के बारे में तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पीएम कुसुम के जरिए अब तक 27 लाख से ज्यादा पंपों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान उधमपुर होते हुए एक तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है। इस नई रेल खिदमत से मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर के दो शहरों के दरमियान रेलगाड़ी की खिदमत में इजाफा होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव का एक खत शेयर किया है। इस खत में जनाब वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर होते हुए जम्मू तवी और श्रीनगर के दरमियान एक तीसरी वंदे भारत के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी धमकियों को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इस तरह की नाकाम पॉलिसियों से ईरान के लोगों में मजीद नफरत पैदा होगी और ये पॉलिसियां मजीद नाकाम होंगी। इराकची का बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त इक्तिसादी इकदाम की धमकी के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास राखची ने कहा कि इन धमकियों का मकसद अमेरिका के अवाम की मुल्क के अंदरूनी माली मसाइल से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इक्तिसादी दहशतगर्दी से आलमी मईशत और दुनिया भर के ममालिक की अपनी खुदमुख्तारी को खतरा लाहक है। इससे कबल अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कल कहा कि ईरान दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इक्तिसादी तौर पर अलग थलग किए जाने का सामना करेगा। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने उन ममालिक और कंपनियों को इजाफी बंदिशों की धमकी दी थी जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के इत्तेहाद अमेरिका के इत्तेहादी अपने मौकिफ के ताल्लुक से फैसला करें। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी जांच के बाद आज सुबह फिर से रावलपिंडी के अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान को आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। अदालत में उनकी सेहत से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि वो एंग्जाइटी के मरज में मुबतला हैं। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट से मुतालिक एक बैन रियासती साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और पंजाब और राजस्थान से 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय फौज के एक रिटायर्ड कर्नल के साथ हुई मुबैना 15 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के केस के सिलसिले में की गई हैं। पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया है उन्होंने मुबैना तौर पर टेलीग्राम के जरिए अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करके उन्हें कंबोडिया और मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद ऑपरेटर्स को फराहम करने का एतराफ किया है। हॉकी में आज एम्स्टरडैम में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। नए तरीकेकार के तहत पूल ई से चोटी की दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। बैडमिंटन में नई दिल्ली में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पुणे में ब्रिक्स ICT मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तिरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इक्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर

0: के साथ मुलाकात की। अमेरिका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि यह कदम अमेरिका की दाखिली इकतसादी मुश्किल से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIH आलमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश आशिकी फिल्म का नगमा कुमार सानू की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाया है नदीम श्रवण ने।

रुकमार राठौड़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे सालिम सुलेमान की मौसीकी सजाए नगमा, फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी। आज की मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामईन के लिए आशिकी 2 फिल्म का नगमा पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में, नगमा निगार इरशाद कामिल, मौसीकार जीत गांगुली।

0: सामिन सरमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन आयर और डी डी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है इसमें चुगताई की फ़न और ख़िदमत के हवाले से उनके यौम पैदाइश के मौके पर जनाब हसन ज़िया का तहरीर करदा फीचर उर्दू अफसाने की खातून अव्वल।
1: पहली दफ़ा ड्रामा लिखा जिसे मैंने अपने स्कूल में, मैं उस जमाने में हेड मिस्ट्रेस थी एक स्कूल की, वहाँ स्टेज भी किया था अपनी बच्चियों के साथ। उसको ही मैंने लिख के और भेज दिया, वो बड़ा पसंद किया गया। उसके बाद मैंने एक मजमून लिखा, साखी से हुई और मैं साखी में लिखती थी। उसके बाद अतब लतीफ़ा करा में भी लिखा, लेकिन ज़्यादातर मैं साखी में लिखती थी और मुझे कहानी लिखने का तरीका नहीं आता था, शौक था। और एक मैंने एक दफ़ा एक मजमून लिखा हुआ था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था बचपन, वो मैंने सबसे पहले लिख के, मैं मेरे घर में सिर्फ दो रिसाले आया करते थे, तहजीब निस्वा और फूल बच्चों के लिए। तो मैंने तहजीब निस्वा को लिखा, भेजा वो बचपन मेरा मजमून, तो उन्होंने मुझे बेहद डांटा, उनका तुमने बहुत बुरा लिखा है और बहुत बदतमीजी की बातें लिखी हैं। तो वो मजमून रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद वो मजमून जब सफा तो सबको बहुत पसंद आया। तो बचपन के नाम किससे जाते हैं हमारे मंजन से, अरे जाब इस्माइल तो चमेली की कलियां सूंघती हैं, नारंगी की कलियां सूंघती हैं, और हमें चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं बनते हैं दमू के बताए। तो ये लिखा
2: प्रेमचंद के बाद जदीद उर्दू फिक्शन के बुनियाद गुजारों में मंटो, बेदी, कृष्ण चंद्र और इस्मत चुगताई अहम तरीन नामों में से हैं। ख्याली किस्से कहानियों से तरक्की पसंदी, समाजी हकीकत निगारी और जदीद उर्दू अफसाने तक का सफर तय करने में उर्दू फिक्शन ने मौजू, फन और तकनीक के एतबार से कितने ही मराहिल को तय किया और कई संगे मील पार किए। गुज़श्ता सदी की तीसरी दहाई में इस्मत ने कहानी लिखने के लिए कलम पकड़ा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिलाखिर उर्दू फिक्शन की तारीख में उन्होंने अपने लिए एक अलग बाब बना लिया।
3: शुरू से इंसान ने जो कुछ कहना चाहा उसको कहानी की सूरत में कहा, ड्रामे की सूरत में कहा, वो इंसानी दिमाग को के ऊपर ज्यादा असर डालता है और जम के रह जाता है। जो बात कहानी की सूरत में कहनी है, अगर आप ये कहें कि भाई गरीब का खून अमीर चूसता है, ये कह दीजिए आप डायलॉग में, कह दीजिए आप एक लेक्चर में, कह दीजिए नहीं याद रखिएगा, आप एक कहानी की सूरत में कह दीजिए, वो कहानी लोगों की याद रह जाएगी और वो आप ज्यादा मुतासर लोग मुतासर होंगे। कहानी होना जरूरी है मेरे ख्याल में, पहली ताकि याद रहे।
4: इसमें चुगताई की पैदाइश 15 अगस्त 1915 को बदायूं में हुई। उनके वालिद डिप्टी कलेक्टर थे और जोधपुर में मुकीम थे। रिटायर होकर वो आगरा आ गए और फिर अलीगढ़ में आकर बस गए। इन्हीं जगहों पर इस्मत का बचपन गुजरा, बरेली में भी कायम रहा।
2: 20वीं सदी के इब्तदाई दौर के हिंदुस्तान में बिलखसूस मुतवस्सित तबके के मुस्लिम घरानों में अदामत पसंदी और तवहम परस्ती का जो माहौल था उसके सांचे में ढलने के बजाय इस्मत के अंदर का जिद्दी और बागी इंसान जाग उठा और उर्दू फिक्शन को समाजी नाइंसाफी, जिनसी अदम मसावात, फिरके वाराना नफरतों और तफरीक पर मबनी निज़ाम के खिलाफ अबांगे दोहल आवाज बुलंद करने वाला रोशन ख्याली का एक जंगजू अलमबरदार मिल गया।
4: इस्मत का खानदान 6 भाइयों और 4 बहनों पर मुश्तमिल भरा पूरा खानदान था, लेकिन औरतों और लड़कियों की जिंदगी घर की 4 दीवारियों में महदूद थी। जमींदाराना माहौल के सबब ताकतवर खुलेआम कमजोर पर जुल्म कर रहा था।
2: बचपन से लेकर नौजवान

0: अपनी तक की दहलीज पर कदम रखते रखते इस्मत ने शौरी और लाशौरी तौर पर अपने मुआशरे से जो असरात कबूल किए, उन्होंने इस्मत की जहन साजी की और उर्दू फिक्शन के मंजरनामे को बदलने में अहम किरदार अदा किया।
1: आप बीती और जगदीत कुछ फर्क नहीं, पता नहीं चलता क्या आप बीती हो क्या जगदीत। मैंने जगदीती को हमेशा आप बीती की तरह महसूस किया। दूसरा तीसरा मजमून जो दो तीन मैंने मजमून लिखे थे कि एकदम से खून मच गया कि मैं ये क्या कूड़ा लिख रही हूँ और इसको अदब नहीं समझना चाहिए, ये तो बेहुदा जबान है और

0: दो तीन मैंने मजमून लिखे थे कि एकदम से खून मच गया कि मैं ये क्या कूड़ा लिख रही हूँ और इसको अदब नहीं समझना चाहिए, ये तो बेहुदा जबान है और चिमटा पुकड़ी की जबान है और इसमें ये तो अदब की जबान नहीं है।
1: अपने बचपन का जिक्र करते हुए इसमत चुगताई ने लिखा था,
2: मैं जारो कतार रो रही थी, कोई किसी को बड़ी बेदर्दी से कोड़े मार रहा था, मारने वाला बहुत देवजात था और पिटने वाला मुनहनी सा काला कलूटा बच्चा था, कौन मार रहा था, किसे और क्यों मार रहा था ये कतई याद नहीं क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर मोटा बेद जब पिटने वाले की हड्डियों पर बजता था तो बड़ी खौफनाक चटखारेदार आवाज निकलती थी जो अब तक मेरे कानों में महफूज है और अक्सर सुनाई देती है। शायद जब मुझे मालूम हो गया कि बड़ा छोटे को मारता है और ताकतवर कमजोर को मारता है, ताकतवर एक कद-ए-आदम सितून की तरह मेरे लाशऊर में खड़ा हो गया जिसके पैरों तले कमजोर कूड़े की तरह फैला हुआ था, तब मेरा सर ताकतवर के हुजूर में झुक गया, कमजोर से घिन आने लगी, फिर भी दिल में एक चोर था जो मुझमें छुपकर बैठ गया, जब कभी किसी आलीशान महल को देखती जिस पर काई जम जाती और घास बेरहमी से छा जाती तो दिल का चोर चुपके चुपके मुस्कुरा उठता और घास फूस की बेबिसात ताकत का रोब मेरे दिल में बैठ जाता।
1: इसमें चुगताई ने इब्तदाई तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्ल्स स्कूल से हासिल की। उनके जमाने में गर्ल्स कॉलेज सिर्फ एफए तक था, इसलिए बीए के लिए लड़कियों को अलीगढ़ से बाहर जाना पड़ता था। उनके जाने के दूसरे साल अलीगढ़ में बीए की क्लास खुल गई, लेकिन इस्मत को ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ जाना पड़ा। इसी दौरान सन 1936 में लखनऊ में एक तारीख साज वाकया रूनुमा हुआ जिसने आने वाले वक्त में हमारी अदबी फिक्र का रुख मोड़ने की भरपूर कोशिश की।
2: सन 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद अदीबों का इजलास हुआ जिसमें प्रेमचंद ने कहा था हमें हुस्न का मियार बदलना होगा। तरक्की पसंद तहरीक ने दौरे असकार ख्याली मौजूआत के बजाय समाजी शऊर और हकीकत निगारी पर जोर दिया और समाज में फैली नाइंसाफियों, कमजोर तबकात पर मजालिम, अदम मसावात, तोहम परस्ती और इंसान दोस्ती के दरमियान दीवारें खड़ी करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तरक्की पसंद तहरीक के अगराज मकासद इस्मत के बागी मिजाज से मेल खा रहे थे।
1: इस्मत ने जिस दौर में आँख खोली थी वहाँ लड़कियों की तालीम की हर तरह से हौसला शिकनी की जाती थी, लेकिन इस्मत के वालिद रोशन ख्याल थे। बले भाई और मशहूर अदीब अजीम बेग चुगताई ने भी इस्मत को पढ़ाई की जानिब तवज्जो देने को कहा। इस्मत चुगताई ने अपने एक मजमून में खुद भी तस्लीम किया है कि तालीम में उन्हें जिंसी अदम मसावात का मुकाबला करने के लिए एक हथियार मिल गया। तालीम के रास्ते से ही वो अदब की दुनिया में दाखिल हुई और उन्हें समाजी तजादात को आईना दिखाने के लिए एक मौसर जरिया नसीब हुआ।
0: एक कैरेक्टर मैंने लिया, वो भरपूर नहीं उसकी कहानी बन रही है, उसकी मैंने हालात जिंदगी में कोई चुपती हुई चीज मैंने देखी लेकिन वो मुकम्मल नहीं होती, तो मैं ढूंढ तलाश में रहती हूँ कि इस रंग का, इस वजह का, इस मकवाम का कोई और मिले तो मैं उसको छिपा दे। उस कहानी को बनाते वक्त मैं कभी कभी तीन तीन चार चार कैरेक्टर के ऊपर बीती हुई और उसको लगा देती हूँ या दिल से भी लगा देती हूँ, कभी कभी कभी ऐसा भी होता है।
1: इसमें चुगताई ने सन 1938 और 39 में लिखना शुरू किया। उनका पहला अफसाना फसादी शहीद अहमद देलवी के रिसाले साकी में शाये हुआ। इस्मत ने अफसाने, नॉवेल, ड्रामे, फिल्मी कहानियां और मकाल में भी लिखे। मुतवस्सित तबके के मुसलमान घरानों और जमींदारी और जागीरदारी के परवरदा माहौल पर पड़े पर्दे के पीछे के हकाइक को बेनकाब करने में इस्मत ने किसी झिझक या रियायत से काम नहीं लिया। एक इंटरव्यू के दौरान इस्मत ने कहा भी था कि वो पेंटर नहीं है बल्कि वो फोटोग्राफर है। उन्हें जो हकीकत जैसी नजर आई उसे बगैर किसी लाग लपेट के उन्होंने अफसानों में उतार दिया।
0: मैंने शुरू में जो हब्स देखा उस हब्स को पोर्ट्रेट किया, मेरे ख्याल में मैं पेंटर नहीं हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं जो देखती हूँ वो फोटोग्राफ कर लेती हूँ, उसको समझ लेती हूँ, रख लेती हूँ, ये महसूस करती हूँ कि मेरे ऊपर बीत रही है। बहुत लोगों को ये ख्याल होता है कि मेरे ऊपर बीती है, बहुत सी मेरे ऊपर नहीं बीती है जो ये मालूम होता है लोगों को मेरे ऊपर बीती है। मैं इस तरह से जज्ब करती हूँ हमेशा, मैंने किसी को देखा है, किसी के दुख को देखा है, किसी को खुशी को देखा है, उसको अपनी

फिल्म एक ताकतवर मीडियम है, लेकिन अक्सर अदीब फिल्मी दुनिया में नाकाम रहे हैं।

24 अक्टूबर सन 1991 को 76 साल की उम्र में इस्मत चुगताई का बंबई में इंतकाल हो गया। इस्मत ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी। इस्मत चुगताई ने समाज को जिस तरह देखा उसे बेलाग लपेट अपने फन में पेश किया। इस्मत ने जो कुछ लिखा वो हकायक थे जिनसे आंखें चार करने में हम डर या झिझक महसूस करते थे, लेकिन इस्मत की बेखौफी और बेबाकी फनकाराना महारत ने हमें सच से आंखें चार करने का हौसला दिया।

उर्दू अफसाने की खातून अव्वल। अभी आप मोहतरमा इसमत चुगताई के फ़न और ख़िदमत के हवाले से जनाब हसन ज़िया का तहरीर करदा ये फ़ीचर सुन रहे थी उनके योम पैदाइश के मौके पर। सदाकार थी अली मोहतशिम रज़ा, सैदा सादिया निज़ामी और नसीम अहमद थिरकवा। पेशकश एम रज़ा की थी, माविन थी शबाना अहमद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमी।

0: तले।
1: और अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को फिल्म है ब्रह्मचारी, नगमा निगार हसन जयपुरी, मौसीकार शंकर जयकिशन।

धर्मवीर फिल्म पे नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमनिगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और शामिल लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश। दर फिल्म का नगमा उदित नारायण की आवाज में।

बॉर्डर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। नगमा निगार थी जावेद अख्तर, मौसीकार अनु मलिक। और अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में धर्म कांटा फिल्म का ये नगमा।

सविनय नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पुणे में ब्रिक्स आईसीटी मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इक्तसादी शराकत दारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर

तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमेरिका की दाखिली इकतसादी मुश्किल से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और BWF आलमी चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी खवातीन डबल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और ब्राज़ील ने टेली मुवासलात और इत्तलाती मुवासलाती टेक्नोलॉजी से मुतालिक तआवुन को मज़ीद बढ़ाने की खातिर आज ब्रिक्स ममालिक की इत्तलाती मुवासलाती टेक्नोलॉजी ट्रैक मीटिंग से अलहदा एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टेली मुवासलात के महकमे ने कहा कि इस मुआहदे से डिजिटल इख्तिरा को फ़रोग मिलेगा, डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को फ़रोग मिलेगा। पुणे में मुनाक़िदा ब्रिक्स ममालिक के मुवासलात के वज़रा की 12वीं मीटिंग से अलहदा मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राज़ील के मुवासलात के वजीर फ्रेडरिको डे सिकेरा फेल्हो ने इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट में कहा कि इस मुफाहमतनामे से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, सलाहियत साजी और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले से मुतालिक दो तरफा तआवुन में मजीद इजाफा होगा। इस मुफाहमतनामे से टेली मुवासलात, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में मुनज्जम तआवुन के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम होगा। इस शराकतदारी का मकसद दोनों मुल्कों में शमूलियाती महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम को फरोग देना है। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए सियाहत की मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से जयपुर में मुनाकिद की जा रही है। ब्रिक्स ममालिक के सियाहत के वज़रा और सीनियर अहदेदारान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। सकाफत और सियाहत के महकमे के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स ममालिक के सियाहत के वज़रा का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शेखावत ने कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, मालामाल सकाफत और आला मेयार की मेहमान नवाजी की बेहतरीन मिसाल है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पूरे एशिया और सिंगापुर के साथ इक्तिसादी साझेदारी को सनत से सनत के दरमियान मजबूत तालमेल पैदा करते हुए भारत के अजम को उजागर किया है। भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम में सिंगापुर के एंटरप्रेन्योर्स और भारतीय ताजिरों और तिजारती स्कूल इंसेट के फारिगीन से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने भारत के तरक्की के सफर, सरमायाकारी मौके और तिजारत के लिए पैदा की गई आसानियों को बढ़ाने की खातिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के तहत हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। जनाब गोयल ने सिंगापुर के खारजी उमूर और तिजारत और सनत के वजीर ममलकत कानसियान हुआंग और दीगर मौजूद शख्सियात से मुलाकात भी की। जदीद और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजारत के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने PM कुसुम के अगले मरहले के रोडमैप के बारे में बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने बताया कि कल इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मजकूरा स्कीम के अगले मरहले में जरई शमसी तवानाई को मजीद फरोग देने के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में PM कुसुम के जरिए अब तक 27 लाख से ज्यादा पंपों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 15.8 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा भी हुआ है, जिससे हर साल तकरीबन 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत करने में मदद मिल रही है। दवासाजी के महकमे के सेक्रेटरी मनोज जोशी ने आज तिब्बी आलात बनाने वाली इंडस्ट्री पर जोर दिया कि वो भारत के इंजिबाती लाए अमल को शक्ल देने में अपने तासुरात पेश करें। नई दिल्ली में CII आलमी मेडटेक चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि इंजिबाती तबादले ख्याल में इंडस्ट्री की शिरकत हालिया मौकों पर महदूद रही है। उन्होंने इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान गहरे मुजाकरों की जरूरत पर जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास राघची ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी धमकियों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इस तरह की नाकाम पॉलिसियों से ईरान के लोगों में मजीद नफरत पैदा होगी और ये पॉलिसियां मजीद नाकाम होंगी। राघची का बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त इक्तिसादी इकदाम की धमकी के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट

0: अब्बास अराग्ची ने कहा कि इन धमकियों का मकसद अमेरिका के अवाम की मुल्क के अंदरूनी माली वसाइल से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इक्तिसादी दहशतगर्दी से आलमी मईशत और दुनिया भर के ममालिक की अपनी खुद मुख्तारी को खतरा लाहक है। इससे कबल अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कल कहा कि ईरान दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इक्तिसादी तौर पर अलग थलग किए जाने का सामना करेगा। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने उन ममालिक और कंपनियों को इजाफी बंदिशों की धमकी दी थी जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका के इत्तेहादी अपने मौकिफ के ताल्लुक से फैसला करें। सोमालिया के पुंटलैंड साहिल के नजदीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बरदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 अहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। बहरी जहाज लुतुफ को पीर के रोज अगवा करके नुगाल साहिल की जानिब ले जाया गया था। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें मुवासलाती और सेटेलाइट साजो सामान के साथ मोगादिशो में फौजी तरबियत के एक मरकज ले जाया जा रहा था। हमले के अहलकारों में 6 भारतीय शहरी, तुर्की का एक शहरी, जॉर्जिया का एक और सर्बिया के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी जांच के बाद आज सुबह फिर से रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान को आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताउल्ला तारण ने इस बात की तस्दीक की है कि साबिक वजीर आजम को अस्पताल में तिब्बी जांच के बाद अडियाला जेल वापस ले जाया गया है। बैडमिंटन में नई दिल्ली में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की चौथी दर्जाबंदी की हामिल जोड़ी जिया यीफान और जांग शूचियांग की जोड़ी को 16-21, 21-15 और 21-13 से शिकस्त दी। हॉकी में आज एम्स्टरडैम में FIH ओलंपिक कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। नए तरीकेकार के तहत पूल ई से चोटी की 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पुणे में ब्रिक्स ICT मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इक्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि यह कदम अमरीका की दाखिली इक्तिसादी मुश्किल से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और BWF आलमी चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी खवातीन डबल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मोहब्बत आंखों से शुरू होती है ये बात अलग है, मगर मोहब्बत दिल से और दिल में समाई रहती है ये बात कवियों की कल्पनाएं बताती हैं। हम आए दिन कितने गीत सुनते हैं, कितनी कविताएं और शेर सुनते हैं, इनको लिखने वाला आंखों का इस्तेमाल तो शब्द लिखने के लिए करता है या फिर इस फानी दुनिया को निहारने के लिए करता है, पर शब्दों में जो भाव भरने का काम करता है वो दिल करता है। मित्रों, आपके दिल तक पहुंचने के लिए हम आज इस कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गीत लेकर आए हैं जो हम सबको मोहब्बत की दुनिया में ले जाएंगे और कुछ पल के लिए हमें सुकून देंगे ताकि हम अपने आप को दिन भर की थकान से दूर कर सकें।

0: लता की आवाज को आपने सुना, अनजान के बोल थी, बप्पी लहरी की धुन थी और फिल्म का नाम था लव लेटर।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
7: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
6: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
7: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
6: पर रेरा तो शहरों में।
7: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
6: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
8: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
9: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
8: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों, बात करते हैं जीवन में जो धैर्य की कितनी महत्ता है। धैर्य जीवन की उन शक्तियों में से एक है जो कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को टूटने के बजाय संभलने की क्षमता देती है। सफलता हो, संबंध हो, शिक्षा हो या कोई बड़ा लक्ष्य, हर जगह धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में कुछ चीजें हमारे प्रयास से जल्दी बदल सकती हैं, लेकिन कुछ के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, इसलिए उसी तरह मेहनत का परिणाम भी समय लगकर मिलता है। तो हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रयास करते रहिए, परिणाम के लिए धैर्य रखिए और परिस्थितियों से सीखते रहिए। और धैर्य का मतलब ये भी नहीं है कि कोई अन्याय या गलत परिस्थिति हो तो उसे सहते रहें या उसको होने दें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ परिवर्तन संभव हो वहाँ प्रयास करते रहना चाहिए और जहाँ समय की आवश्यकता हो वहाँ धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी अवसर को नुकसान पहुँचा सकती है, जबकि धैर्य सही अवसर को पहचानने के लिए शक्ति देता है।

0: एक दूजे के लिए। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
8: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: दोस्तों, बात चल रही थी धैर्य की। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, समय का इंतजार करता है और अपने प्रयास को जारी रखता है, अंततः वही अपनी पहचान बनाता है और दुनिया में सफलता अर्जित करता है। बीज बोने वाला किसान तुरंत फसल की मांग नहीं करता। कलाकार एक दिन में महान कृति नहीं बना लेता। विद्यार्थी एक रात में विद्वान नहीं बनता। इसी तरह जीवन की बड़ी उपलब्धियां भी समय, निरंतरता और धैर्य मांगती हैं। धैर्यवान व्यक्ति असफलता से घबराकर रास्ता नहीं बदलता। वह सोचता है आज नहीं तो कल, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। कई बार दुनिया उस व्यक्ति को तब पहचानती है जब वह वर्षों तक चुपचाप मेहनत करता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि समय परीक्षा लेता है, धैर्य उत्तर देता है और सफलता दुनिया को परिणाम दिखाती है। सच्चा धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि संयमित शक्ति है, और शायद यही इस विचार का सबसे सुंदर रूप है कि दुनिया धैर्यवानों की राह देखती है। दुनिया शोर करने वालों को कुछ समय सुनती है, लेकिन धैर्य से चलने वालों को राह लंबे तक, समय तक देखती रहती है।

0: सागर, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का संगीत था और ये मधुर आवाज थी किशोर कुमार की।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ

0: आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
0: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: बात्या, बात्या, बात्या।

0: तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठा हो।
2: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब ये कार्यक्रम सुन सु मिल सु पशुपालन सु जुड़ी हो रही सभी समस्या का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजित है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाईरा भी
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: राम राम सा राम राम सा। देखो सावण रो महीनो है और बिरखा भी ठीक होगी
5: है, भड़करी हो रही है बिरखा तो भाई।
4: बिल्कुल सा, अपन एक बात बताऊं थाने, माने मिलिया हा अमरचंद जी।
5: अमरचंद जी किस्सा?
4: अरे थे जानिया को नी अपने गांव आया करे खिलने गांव रही है।
5: अच्छा
4: बे मने आ कहो के हूं तो देखो 12 महीना मारे बरसात रो पानी ज पियूं
5: है।
4: हां
5: काई बात करो थे,
4: मने आश्चर्य हो मैं के इया किया के देखो मारे फैक्ट्री है।
5: अच्छा
4: फैक्ट्री में जितो भी छत पर पानी आए वो सगलो मैं कुंडी पर ले लूं और 12 महीने में वो ही पानी पीऊं और मैं बिल्कुल निरोग हूँ।
5: आज रे युग रे मायने भी इन तरीके से लोग सजग होर परा।
4: हाँ
5: और बरसात रे पानी ने इकट्ठो करे उनरो इस्तेमाल करे उन्हें उपयोग करे।
4: बिल्कुल सा, और लगो लगा बात और कही के दो मैं और बना रही हूँ फैक्ट्रिया बीरे मायने भी मैं इयांगली कुंडी बना रही हूँ के बरसात रो पानी है वो मैं सुरक्षित रख सकूं और 12 महीने पी सकूं।
5: तो जने तो फिर इनरो मतलब वो हो के भी फैक्ट्रिया रे साथे साथे उनारे जगह घर है नी उनारे मायने भी बे कुंडी बना रखोड़ी है बरसात रे पानी सर।
4: बिल्कुल सा, और आज की चेतना है नी आप हर बार जब भी चौपाल में बैठा तो पर्यावरण संरक्षण री भी बात करा, जल बचत री भी बात करा है, और नशे सुदूर रेवण भी इयांगली बातें आप क्या करा।
5: भाई मैं बात शामिल करा के भी जिका आम जन रे हितरी हुए।
4: हाँ जिके सु जागरूकता फैले और बीरो असर भी हो। मैंने आ बात कही कि मैं थानो जी को कार्यक्रम मैं धीरे धीरे बातें बहुत सुनिया करूँ, मैंने अच्छो लगे रे आंगली जो थे बातें करो नी जड़ मारे मन में भी आया कि नहीं वो संकल्प लेनो चाहिए कि पानी की बचत बहुत जरूरी है।
5: भाई देखो सा एड़ा जगह श्रोता है हाँ। जगह सजग है और अपनी जी की बातें है जी की काम वाली है उन्होंने जीवन रे मायने डाले और उन्होंने लाभ मिले तो फिर आ तो भाई देखो सा सुने में सुहाग्य वाली बात।
4: बिल्कुल सर, एक सामे प्रश्न और करियो कि अरखो भाई जी हूँ थाने लाख रुपया दू थे मन एक लीटर पानी बनार बता दो।
5: वो सवाल तो भाई टिड्डो
4: है ने, जब आप बना को नहीं सका तो बचा तो सका। हाँ
5: बिल्कुल आ बात भाई जिका ज्ञानी जन नहीं बेके अगर के पानी एड़ी चीज है कि जिके ने बना नहीं सका।
4: हाँ
5: पर बचावड़ो अपनो कर्तव्य है,
4: अपने हाथ में भी है,
5: अपने हाथ में भी है।
4: हाँ साथ साथ इन बार में अभी देखो छापेर माने भी पढ़ने मिली टाबरिया भी बता रहा कि इन बार देखो खेजड़ी भी लोग खूब लगाई है। देखो खेजड़ी या कोई भी पेड़ लगाओ तो बहुत सोरो है
5: दोरो पर... है उनकी देखभाल करनी है। सही बात कही नहीं मैं।
4: बिल्कुल सही कही। तो देखो जिका भी पेड़ लगाया है बंधु मारा भाई बंधु थोड़ो सी ध्यान रखो कि बीरो भी आपने सुरक्षित करना है संरक्षण देवने ताकि बे बड़ा हो जावे
5: और काल बे जब बड़ा हो सी
4: हाँ।
5: तो उन्होंने लाभ भी आपने और आपने जी की आने वाली पीढ़ी है उन्होंने नहीं उसी।
4: बिल्कुल सा, देखो आप माइत जिका वृक्ष लगाए गया बीरो फायदा आपने मिल रही है, बीहारी जी की ठंडी ठंडी छाव है आपने मिल रही है,
5: जीवन दायनी ऑक्सीजन भी मिल रही है आपने।
4: हाँ और देखो आपने चौं बड़ो चौपाल मिले ज्ञान री बात। तो आज ज्ञान री बात सर विषय कहीं राखे और कौन पधारी आप तो बताओ।
5: देखो सर खूब भाई आप बात रे मायने कही है कि थोड़ा उलो जमा पर बात रे मायने लास्ट रे मायने कही है आप आए जवा उन विषय माथे जेड़ो आपनो जो को कार्यक्रम है। तो भाई देखो सर कई लोग कागज और लिखे कि भाई परजीवी संक्रमण कई हुए इन बाबत जानकारी दो और कई लोग लिखे कि बरसात रो जो मौसम हुए
4: हाँ।
5: उनरे मायने रोग बाग होया करे उनसे संबंधित जानकारी दो और कई जना लिखे कि भाई जे कोई बरसात रे मायने बीमार हो जावे पशु
4: हाँ।
5: तो कई करनो चाहिए कई नहीं करनो तो एड़ा जका विषय है ए बात ना लिखी आई है
4: मतलब समसामयिक विषय हो गयो।
5: अबे थे या करो कि इन सगला ने एक साथ जोड़ पर कोई विषय कोई बनेगी।
4: बिल्कुल बन जासी
5: तो बनाओ।
4: हाँ देखो विषय बने है वर्षा ऋतु माए पशुआ माए परजीवी संक्रमण आई बात ही और दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन।
5: जदि तो देखो साहब बात थाने कही मैं
4: जद प्रश्न बना है नी तो हाँ।

0: रामचंद्र जी का जवाब देवनाला है। बियर नाम भी बता दूं?
1: हाँ बिल्कुल बताओ।
0: तो देखो, आज पधारया है सहायक आचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारया है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है। और आपने मैं करा राम राम राम राम करो।
1: हाँ राम राम सा डॉक्टर साहब, राम राम
2: जी। हरखू भाई, बंसी भाई और सभी पशुपालक भाइयों को मेरा राम राम।
0: राम राम सा, राम राम सा।
1: तो पहले सवाल ठीक हो तो हूँ कर लूँ?
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मारा पशुपालक ने और माने आ बताओ कि वो परजीवी संक्रमण कहीं होया करे और पशुओं में इनरे बढ़ने रो कई कारण है?
2: देखिए, पशुओं में शरीर के अंदर और बाहर मिलने वाले सूक्ष्म जीव या कीड़ों को परजीवी संक्रमण कहते हैं।
1: अच्छा।
2: बरसात पशुओं के लिए अच्छी भी है क्योंकि हरा चारा उपलब्ध होता है, लेकिन यही मौसम कई परजीवियों के लिए भी अनुकूल होता है।
1: अच्छा।
2: नमी और तापमान से परजीवियों के अंडे और छोटे छोटे लार्वा चारागाह और गीली जगहों पर ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए पशु जब ऐसी जगहों पर चरते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बरसात में पशु को केवल

0: बरसात पशुओं के लिए अच्छी भी है क्योंकि हरा चारा उपलब्ध होता है, लेकिन यही मौसम कई परजीवियों के लिए भी अनुकूल होता है।
1: अच्छा
0: नमी और तापमान से परजीवियों के अंडे और छोटे छोटे लार्वा चारागाह और गीली जगहों पर ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए पशु जब ऐसी जगहों पर चरते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बरसात में पशु को केवल बारिश और ठंड से नहीं, परजीवियों से बचाना भी ज़रूरी है।
2: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर कि परजीवी संक्रमण कहीं हुआ करे। पर डॉक्टर साहब बात आवे है कि पशुपालक किन बात पहचान कर सके कि उनरा जगह पशु है उनरा माए परजीवी रो संक्रमण हो गया है, बा पहचान किया करे।
0: देखिए, किसान अपने पशु को रोज़ देखता है, इसलिए सबसे पहले बदलाव वही पहचान पाता है। अगर पशु धीरे धीरे दुबला हो रहा है, कमज़ोरी आ रही है, बाल रूखे हो रहे हैं, भूख कम लग रही है, दस्त या पतला गोबर आ रहा है, दूध कम हो रहा है, या बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा, तो परजीवी संक्रमण की संभावना हो सकती है। कुछ मामलों में खून की कमी के कारण आँखों और मुँह के अंदर की सतह का रंग सामान्य गुलाबी के बजाय फीका दिखाई देता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हर दुबले पशु को कीड़ा नहीं होता, इसलिए बार बार अपने मन से दवा देने के बजाय ज़रूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक से जांच करवा कर ही उपचार के लिए बढ़ना चाहिए।
2: बिल्कुल सर, देखो अपन ये लगे कि पशु थोड़ा अनमन है तो अपन ना आ दवाई दे दिया ना, इसको अपन काम नहीं करना। थोड़ा बहुत थाने बेम हुए कोई कि हमारा पशु निरोगो नहीं है, है कोई ना कोई इन्हें कोई समस्या है, तो अपन ने तुरंत डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। अबे जिकी दवा बतावे जितनी मात्रा में बतावे वह अपन ने दवा देनी है,
1: बिल्कुल आप
2: खुद
1: बात
2: री
1: साची
2: होशियारी
1: कही
2: को नहीं लगानी है।
1: साची बात क्या होते हैं हरकू भाई एकदम।
2: हाँ
1: और इन बातों पर चले नहीं तो फिर वो जीवन है नहीं, वो आसानी से चलते रहे
2: बिल्कुल
1: नहीं।
2: सर, पापा पशु भी निरोगा रहे।
1: हाँ और देखो सर डॉक्टर साहब जी आप क्या करें नहीं कि भाई घर मायने एक छोटो सो लड्डू टाबर ने देवा नहीं, टाबर रो मन कहीं करे कि और मिल जावे माने लड्डू, तो बिहार बिहार डॉक्टर साहब ज्ञान री बात बता रही है नहीं।
2: एक लाडू
1: देखो
2: और
1: सर
2: ले लो।
1: मारो को नहीं भाई, हूं को नहीं लेना चाहूँ। हाँ आप बात अलग है कि उनसे लाभ तो झगड़ा नहीं मिलसी मने तो
2: हाँ
1: मिलसी। तो देखो सर ए जगह राजू भाई है नहीं, ए
2: हाँ
1: कागजियों में लिख कर भेजियो कि भाई डॉक्टर साहब वो सवाल पूछो।
2: हाँ बोलो बोलो
1: तो
2: भाई।
1: डॉक्टर साहब राजू भाई लिखे कि पशुआ परजीवी जिका है बे पशुआ रे दूध और उनरे भजन माथे भी कोई असर डालिया करेगी, जे डाले तो किन भात।
0: परजीवी पशु के शरीर में जाकर उसके भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का फायदा उठाते हैं, और कुछ परजीवी खून की कमी भी करते हैं। इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है। पशु का वजन कम बढ़ना, दूध का कम होना, बच्चे की बढ़वार धीमी होना और पशु का कमज़ोर रहना। इसलिए परजीवी नियंत्रण को केवल बीमारी की रोकथाम नहीं समझनी चाहिए, ये पशु के उत्पादन क्षमता और किसान की आय बचाने का भी एक अच्छा तरीका है। जैसे पशु अगर दिन में घर पे अच्छे से खाना खा रहा है, अपने सारे काम वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। अगर उसके अंदर परजीवी का संक्रमण हो रखा है तो कई बार अपने सामान्य जीवन स्तर पर भी पशु जो है वो उस परजीवी से लड़ने के लिए काम कर रहा है, जिससे उसका उत्पादन जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होके उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में लग जाता है। इसलिए जो पशु बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, वो पशु भी परजीवी से संक्रमित हो सकता है, उस पर भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है जितना कि किसी लक्षण दिखाते हुए पशु से।
2: पशु से बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर।
1: बिल्कुल
2: और अब एक अगलो प्रश्न और मैं पूछ लूं
1: हाँ पूछो सर।
2: डॉक्टर साहब, जब बरसात शुरू हुए तो उन बेला पशु ने कृमिनाशक दवा देवनी चाहिए या नहीं देवनी चाहिए, हमारा कई भाई आज जानना चाहे।
0: पशु को ये जो कृमिनाशक दवा है ये देने के लिए हमें पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे दवा की ज़रूरत है या नहीं। यानी सिर्फ बरसात आ गई है और हर पशु को बार बार हम कृमिनाशक दे दें ऐसा ज़रूरी नहीं।
2: अच्छा
0: ये पशु की उम्र, प्रजाति, चराई की स्थिति और उस क्षेत्र में परजीवी संक्रमण की समस्या पर निर्भर करता है। जहाँ तक संभव हो गोबर की जांच कराकर पशु चिकित्सक की सलाह से ही कृमिनाशक देना चाहिए। और दवा देते समय ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सही दवा, सही मात्रा और सही समय पर ही दवाई अच्छा असर दिखा पाएगी।
2: जी
0: बार बार बिना जरूरत दवा देने से आगे चलकर दवा का असर कम होता है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता में कमी कहते हैं।
2: तो केवल मतलब वो है डॉक्टर साहब के कृमिनाशक दवा भी डॉक्टर साहब से पूछ प्रोर देवनी चाहिए, इधर कोई विशेष समय।
0: बरसातों से पहले इस दवा को देते हैं क्योंकि बरसातों में कृमि जो पैरासाइट्स हैं, सूक्ष्म जीव

0: हैं, इनके संक्रमण के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए बरसात से पहले ये दवाई दे दी जाती है। पर जहाँ तक शोध बताता है, यहाँ पर जब तक हम इसकी जांच ना करवा लें और सही संक्रमण का पता ना लगा लें, तो ये दवाई नुकसान ज़्यादा करती है ठीक करने के बजाय।
1: डॉक्टर साहब, रोग हुए थे ना, रोग रो उपचार हुए दवाओं से, पर
0: हाँ
1: सवाल अठे आवे डॉक्टर साहब के, दवाओं रे अलावा पशुपालक परजीवी संक्रमण ने कम करने खातिर दूजा कई उपाय कर सके?
0: ये एक अच्छी सोच है कि परजीवी नियंत्रण सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आसान प्रबंधन के तरीके हैं, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जिसको हम फार्म पे कहते हैं, जैसे कि पशुशाला को साफ और सूखा रखना, गोबर को नियमित वहाँ से हटाना, पानी जमा ना होने देना, पीने का पानी साफ रखना, बहुत गीली और दलदली जगहों पर लगातार चराने से बचना, क्योंकि ये सब जगहें जो हैं ये परजीवियों के प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह है और इससे उनकी तादाद बढ़ती रहती है। तो साफ सफाई रखना उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, परजीवियों का जो नंबर है वो कम होता है, इसलिए हमें साफ सफाई रखना जरूरी है। जहाँ तक संभव हो चारागाह में एक ही जगह लगातार पशुओं को नहीं चराना चाहिए,
1: जी
0: क्योंकि वहाँ का संक्रमण बार बार पशुओं को मिलता है और पशु भी अपनी संक्रमण की जो स्टेजेस हैं जो आगे दूसरे जानवरों के लिए वहीं रिलीज कर रहे हैं, इसलिए एक जगह पर जहां पर आपने चराया वहां पर आप थोड़ी देर के लिए गैप देंगे या समय डालेंगे, तो वो जो स्टेजेस वहां पर जानवर से निकली डिस्चार्ज हुई वो तब तक के लिए खत्म हो जाती हैं, और गैप डाल के जब हम दूसरी बार वहां पर चराने के लिए ले जाते हैं जानवर को, तो वो जो पास्चर लैंड है वो उस इन्फेक्शन से फ्री रहता है, इसलिए गैप डालना जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि परजीवियों को पशु के शरीर में पहुंचने का मौका कम से कम मिले।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि समय रज का अंतराल है बीर, आपने विशेष ध्यान रखना है, और अगर वो आप ध्यान रख सकें तो आप पशु बे निरोगा रहसी, है नहीं?
0: और कह भी करें कि परिवर्तन है नहीं, जो को सृष्टि रो नियम है, तो बिहार बिहार जे आपना जगह चरावण ने मायने में अगर थोड़ा परिवर्तन कर ले वहां, तो भाई जीवन दान आपने पशुआ ने मिले।
1: बिल्कुल मिले सा, और मिले है ज्ञान री बात रे, साथ साथ है मनोरंजन भी।
0: हूँ समझ रही हूँ थारी बात ने,
1: समझ रही हो नहीं?
0: एकदम ज्ञान रे साथे मनोरंजन भी जरूरी हो या करे।
1: या करे तो सुनो भाया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भाई आभार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीणेरी बातिया। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। और आज आप बातचीत कर रहे हैं वर्षा ऋतु में पशुओं में परजीवी संक्रमण दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन विषय पर आज आप बातचीत कर रहे हैं।
2: और देखो सा हरखू भाई अपना जो गीत तोड़े सुन रहे था ने, तो देखो सा दो तीन तरह का सवाल लिख प्रार दिया है तो उन्होंने आप एक साथ ही कर दा। तो डॉक्टर साहब आस पास मिलन वाला पेड़ पौधा पशुओं खातिर किन बात उपयोगी हो सके, और साथ साथ आप माने आप भी बताओ कि गुड़ हल्दी नीम और लहसुन जड़ा देसी उपाय ए किन भात पशुओं खातिर अच्छा हो रहा करे, इन बाबत भी आप जानकारी दे।
3: देखिए हमारे देश में कई पारंपरिक उपाय पीढ़ियों से इस्तेमाल होते आए हैं। राजस्थान में भी नीम, खींप और काली जीरी जैसे पौधों का परजीवी नियंत्रण में पारंपरिक उपयोग दर्ज किया गया है। नीम और लहसुन के संयोजक पर गायों में वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है जिसमें परजीवी अंडों में कमी देखी गई। लेकिन किसान भाई यहाँ पर एक सावधानी जरूर रखें कि देसी है इसलिए चाहे जितना चाहे दे दें, ऐसा नहीं। डोज इसका बहुत, इसका इन उपायों की मात्रा, पशु की प्रजाति और उनकी स्वास्थ्य स्थिति महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन्हें पशु चिकित्सक की सलाह से सहायक उपाय के रूप में अपनाना बेहतर है। गंभीर संक्रमण में प्रमाणित कमीनाशक उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर मिलने वाले कई पेड़ पौधे अच्छे चारे के रूप में भी उपयोग होते हैं, जैसे

0: खेजड़ी की पत्तियां और कुछ क्षेत्रों में पाकर और अमरूद की पत्तियां तथा नीम की पत्तियां भी पशुओं को दी जाती हैं। इनमें कुछ प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिन पर परजीवी नियंत्रण और पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। लेकिन फिर मेरी सलाह यही होगी कि किसी भी पत्ती को दवा समझकर अधिक मात्रा पर ना खिलाएं। इन्हें सामान्य संतुलित आहार के साथ हिस्से के रूप में उपयोग करें। इससे हरे चारे के प्रबंधन और पशु आहार की प्रतिरक्षा नियामक या इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट को भी बढ़ाया जा सकता है।
1: जी, क्या उन्होंने मतलब वही अर्खू भाई, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी बात बताई कि भाई देसी है, इन्होंने मतलब वो कौन की बेसी देदा है, हर चीज रो एक अनुपात है जो को बहुत जरूरी हुआ करे इन जीवन रे माय भी और दवा रे रूप रे माय ने आप जे अगर देसी पेड़ पौधा री चीजा देवा तो उनरो भी।
2: और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहवा कि देखो बरसात रो मौसम है तो इन मौसम रे माय ने पशुओं ने कई खिलावण पिलावण चाहिए ताकि उन री जकी ताकत है बा रोगा सु लड़ने री जकी क्षमता है बा बणियोड़ी रहे।
0: इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित आहार। बरसात में हरा चारा खूब मिलता है, लेकिन केवल हरा चारा पर्याप्त नहीं, उसके साथ उचित मात्रा में सूखा चारा, दाना, प्रोटीन का स्रोत और मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। पशु को साफ पानी लगातार उपलब्ध होना चाहिए। एक सरल बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मजबूत पशु का आधार केवल दवा नहीं अच्छा पोषण भी होता है। अगर पशु पहले से ही कमजोर और कुपोषित है तो वह परजीवी संक्रमण का सामना भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और उसकी वृद्धि, उत्पादन और प्रजनन क्षमता में भी कमी आएगी। जहाँ तक गुड़ और हल्दी इन सब चीज़ों की बात है, गुड़ का उचित मात्रा में ऊर्जा के स्रोत के रूप में आहार में शामिल किया जा सकता है और हल्दी को पारंपरिक रूप से हम उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों से मैं या पशुपालक भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि गुड़ या हल्दी किसी परजीवी संक्रमण की दवा नहीं है। इनका उपयोग सहायक आहार के रूप में किया जा सकता है, लेकिन पशु की अच्छी प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे जरूरी है संतुलित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर, साफ पानी और अच्छी देखभाल।
2: बहुत बढ़िया जानकारी दी
1: भाई। देखो सारखू भाई, बड़ा री बात कराने जाए साथ साथ छोटा री जरूरी हुआ करे। तो डॉक्टर साहब, नवजात बछड़ा, बकरी रा बच्चा और मेमना जेड़ा जेका पशु है वे परजीवी संक्रमण से ज्यादा ग्रसित हुआ करे, क्या भी करे और आपा देखा भी हाँ, तो कहण रो मतलब उन्होंने जल्दी संक्रमण हुआ करे, तो आप बात कितनी सच्ची है और अगर जी आप बात साची है तो इनके बारे में जानकारी दो सर।
0: जी हाँ, छोटे बच्चे और बढ़ते हुए पशु, उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होती और अगर उन्हें पर्याप्त पोषण ना मिले तो परजीवी संक्रमण का असर ज्यादा हो सकता है। इसलिए बरसात में बच्चों की साफ सफाई, सूखा बिछावन, स्वच्छ पानी और अच्छा पोषण बहुत जरूरी है। अगर बच्चा लगातार दस्त कर रहा है, कमजोर हो रहा है या उसकी बढ़वार रुक रही है तो इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज ना करें। जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क कर उसकी जांच करवाएं और उपचार के लिए पढ़ें।
2: जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि बरसात में परजीवी नियंत्रण रो सबसे सरल तरीको पशुपाल का खातिर कहीं हो सके है।
0: देखिए, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं, किसान भाइयों को 5 बातों का नियम मैं बताना चाहूँगा जिससे वो परजीवी संक्रमण में कंट्रोल कर सके। पहली बात, पशुशाला साफ और सूखी रखें।
2: जी।
0: दूसरी, साफ पानी दें और पानी जमा ना होने दें। तीसरी, हरा और सूखा चारा संतुलित रूप में दें। प्रोटीन इनटेक, मिनरल मिक्सचर का भी ध्यान रखें।
2: जी।
0: चौथी, कृमिनाशक दवा जरूरत के अनुसार सही मात्रा और सही समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से दें। और पांचवी, पशु में कमजोरी, लगातार दस्त, वजन या दूध में कमी दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि अपने पशु को रोज ध्यान से देखें। किसान की नजर से बेहतर कोई शुरुआती जांच नहीं होती। अगर वो इनमें से कोई भी लक्षण जानवर में देखता है तो उनको जल्द से जल्द अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। तो किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए जो विशेष संदेश मैं देना चाहूँगा वो ये कि बरसात में परजीवी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर पशु के शरीर और उत्पादन पर दिखाई देने लगता है। इसलिए बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमारे पारंपरिक उपायों का उपयोग भी जानकारी और पशु चिकित्सक की सलाह के साथ ही करना चाहिए।
2: जी,
0: स्वस्थ पशु ही स्वस्थ परिवार और बेहतर आय की नींव होती है।
2: बिल्कुल सर, देखो चालती चालती बेला जो संदेश दिए है नी, वो पूरी बात रो आपर जो प्रश्न हो भी रो सार आए गए रमायने।
1: अरकू भाई, जिया बीमारी हुए नी उरा लक्षण दिखे उन रा।
2: हाँ।
1: दिखे नी बियार बियार जियार जियार ज्ञान मिले नी आदमी ने, तो ज्ञान और जो खजानो बढ़े नी तो उनरा भी लक्षण दिखे थे। पूछ सो किया,
2: किया?
1: तो भाई देखो सर, जिया

0: साहब बता रहा था कि भाई पांच सिद्धांत बताऊं, पांच नियम बताऊं, तो भाई देखो सर सगला जना इतनी लिख रहा है कॉपी पेन लेर पर, और
1: बिल्कुल
0: कहीं बना कहीं जना तो देखो सर मोबाइल ने मैंने रिकॉर्डिंग कर ली,
1: बिल्कुल
0: ताकि कोई जे
1: बिल्कुल
0: बात जे है नी कोई
1: हाँ
0: छूट जाए तो उन्होंने बाद में मैंने सुन सके।
1: बिल्कुल साहब, देखो बातें करने तो बहुत मन है, और डॉक्टर साहब से लगे और प्रश्न भी पूछता ही नहीं, अपन समय रिजगी देखो
0: हाँ घड़ी है जो कोई इशारा कर देवे आपने।
1: वीर तो पालन करना ही पड़सी था
0: हाँ
1: भैया। अब देखो आगे ले उन्होंने समय आ गयो है, तो आपने मैं बता दूं सा कि आज चौपाल में जानकर देवन स्वरूप पधारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और आज आप बातचीत करी वर्षा ऋतु माए पशुआ माए परजीवी संक्रमण दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी आप चौपाल में पधारिया और हमारे पशुपालक ने बहुत ही बढ़िया आचीर ज्ञानवर्धक जानकारी दी, इन सर मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
0: राम
1: राम राम
0: राम सा,
1: सा।
0: राम राम सा।
1: तो आज ही आकाशवाणी बीकानेर रे ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ढीणेरी बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती पुनीत बिश्नोईरी, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशीरी। तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
3: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुन्ना उतार किया बैठे हो।
4: काई करू धापू बेटा, भैंस पियो दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोर भी कौन।
3: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी सु कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनी सुनी सी पशुपालन से जुड़ी हो रही समस्या का समाधान।
5: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धीनेरी बातें, मीडियम वेव 326.79 MHz यानी 918 KHz पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत अगर से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं। सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से, 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से, संध्या 7 बजे आप सुनेंगे चौपाल। आज की प्रस्तुति रहेगी रमेश चावरिया की और कार्यक्रम रहेगा गीतारो गजरो, तो सुनना न भूलें संध्या 7 बजे। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से और 8:15 पर आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा हमारे जयपुर केंद्र से, 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज।

8 9, ये सभी समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, और रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और आज की सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि रात्रि 9:30 पर सुनना न भूले पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू, और संध्या 7 बजे आप सुनेंगे रमेश चावरिया के साथ कार्यक्रम चौपाल, इसमें आप सुनेंगे गीता रोग रूम।

जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी का सूरतगढ़ चैनल। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में इस वक्त संध्या के 6:05 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सराय की

0: ये ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। प्रोग्राम सुनन वाले सारे भेण भरावां दा हार्दिक स्वागत है। अज दे खास प्रोग्राम कलम दे धनी विच सादत हसन मंटो जी ते वार्ताकार हैं डॉक्टर मलिक राजकुमार ते साडे नाल हैं काव्य पाठ वास्ते नीरज वर्मा जी। आओ असां सुनदे हैं सब ते पहले कलम दे धनी विच सादत हसन मंटो, वार्ताकार हैं डॉक्टर मलिक राजकुमार।
1: साई सादत हसन मंटो दा जन्म 11 मई 1912 पंजाब दे समराला ग्रां विच थिया है। मंटो साई दी पछाण उर्दू दे अदीब ते इंसानियत दे झंडा बरदार दे तौर ते जानी वेंदी है। अगर असां उना दियां कुछ कहानियां दे ना चाहूं तां ओ खास खास हैं। बू खोल दो, ठंडा गोश्त ते तकसीम दे दर्द को बयां करेंदी कहानी टोबा टेक सिंह, जो अपने आप विच एक मील दा पत्थर साबित थींदी है। अपने लेखन विच उन्हां समाज को 22 कहानियां दी किताबां, एक नावल, रेडियो ड्रामे दियां 5 किताबां, अपने

0: ही सिराए के गीत दे नाल ही असाडा अज दा खास प्रोग्राम खत्म थींदा है। असा आप सब दा हार्दिक स्वागत करें दे वे, सलाम नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे सराय की, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे अगले प्रोग्राम हमारे जयपुर केंद्र से हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पीएम श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता

0: यूसीसी बिल पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह बिल सदन में प्रस्तुत किया। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोकने का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल के बीच मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी की, वहीं भाजपा विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मांगों को लेकर सदन में हंगामा किया। इससे कार्यवाही बाधित हुई और दो बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रभावी बनाने की जरूरत है। आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि ये समय उत्तरदायित्व से भरे हुए पर्यटन पर विचार करने का भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में कौशल विकास की भी जरूरत है।
1: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म, दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है। सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इस पर हमने विचार किया। तीसरा, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है, भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया। और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन। ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रैवल कर सकते हैं, हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं, इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जयपुर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी बनी। श्री शेखावत ने बताया कि आने वाले समय में इस घोषणा पत्र में साझा किए गए विषयों से पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। इससे जयपुर को अतिरिक्त फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक से पहले जयपुर में कल और परसों ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी। इसमें AI, कौशल विकास और पर्यटकों के लिए सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा, कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उन युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर खुशी हुई जिन्होंने एक नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थानांतरण और पदस्थापन आदेशों की पालना के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की घोषणा से पहले तबादले और पोस्टिंग के लिए जारी किए गए आदेशों का क्रियान्वयन हर हाल में 24 अगस्त तक सुनिश्चित किया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भर्तियों को लेकर कहा है कि यदि चुनाव घोषणा से पहले नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं तो खाली पदों पर पदस्थापन किया जा सकता है। आयोग ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मंजू ने मतदान कार्मिकों का पहला रेंडमाइजेशन किया। इस दौरान नगर निकाय आम चुनाव के लिए नियुक्त मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय

मतदान अधिकारियों का रेंडमाइजेशन किया गया। ये प्रक्रिया निर्धारित नियमों और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और

0: अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले साल के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए ये फैसला दिया। पीठ ने कहा है कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि पीएम श्री विद्यालय राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों के साथ राज्य स्तरीय वेबिनार 2 की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, परीक्षा परिणामों में गुणात्मक सुधार आया है और डिजिटल डैशबोर्ड तथा स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से तकनीक का प्रभावी समावेश हुआ है।
1: सारे पीएम श्री स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी बताया है। काफी लोगों ने हरियालो राजस्थान में भाग लिया है, विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है, रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशंस हैं, इसके बारे में चर्चा हुई है।
0: वेबिनार में प्रदेश भर के चयनित पीएम श्री विद्यालयों के संस्था प्रधानों और जिला तथा ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों ने प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग की राष्ट्रीय सूची में प्रदेश के 11 विद्यालयों ने स्थान हासिल किया है। इनमें 3 पीएम श्री विद्यालय शामिल हैं। राज्य में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 प्रतिष्ठानों पर सर्वे में लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की कर अनियमितताएं उजागर की है। कार्रवाई के दौरान संबंधित करदाताओं ने कुल 2,03,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि स्वेच्छा से जमा कराई। इन कार्रवाईओं में जयपुर, भिवाड़ी, संगरिया और श्रीगंगानगर स्थित प्रतिष्ठान शामिल है। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकरणों में जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे केवल वास्तविक और वैध लेन देन के आधार पर ITC का दावा करें और GST कानून के सभी प्रावधानों का पूरा पालन सुनिश्चित करें। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत झुंझुनू मेडिकल कॉलेज समसपुर परिसर में जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के प्रति जागरूक करना रहा। मेडिकल कॉलेज, वन विभाग, विभिन्न विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान कॉलेज परिसर में करीब 1,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान अधिकारियों, विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आमजन ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण में भाग लिया। कोटपुतली बहरोड जिले की श्रीमती पाना देवी मोरिज वाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के अंतर्गत पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य छात्राओं में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में अंगदान के महत्व का संदेश प्रसारित करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न, पर्यटन क्षेत्र में साझा रणनीति और सहयोग बढ़ाने पर सहमति। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 साल किया। और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा पीएम श्री विद्यालयों ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के आदर्श केंद्रों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई। इसके साथ ही

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्याम लाल ने तैयार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में नगर परिषद नागौर तथा नगर पालिका बासनी, जायल, कुचेरा और मोडवा में, जबकि दूसरे चरण में मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड, डेगाना और रियामबड़ी में चुनाव होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। सदस्य पदों के लिए 27 अगस्त को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को की जाएगी और नाम वापसी 3 सितंबर को होगी। चुनाव चिन्ह 4 सितंबर को आवंटित किए जाएंगे। जिले में शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस धारियों को अपने हथियार 21 अगस्त तक संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित श्रेणियों में शामिल बैंक सुरक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस और होमगार्ड को इससे छूट दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिले के 9 निकायों के 285 वार्डों के आरक्षण की तस्वीर भी साफ हो गई है। कुल 285 वार्डों में 28 अनुसूचित जाति, 14 अनुसूचित जाति महिला, 36 अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और 60 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं। 126 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। वहीं पंचायती राज चुनाव के लिए नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों की जिला प्रमुख की सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर नागौर खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह गरिमा पूर्वक मनाया गया। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। विद्यार्थियों ने व्यायाम, योगासन, लेजियम और देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिला पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 56 प्रतिभाओं और कार्मिकों को प्रशंसा पत्र और पारितोषिक दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली भी निकाली गई। कलेक्ट्रेट से गांधी चौक तक निकाली गई रैली में अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों के जवान, एनसीसी कैडेट, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। बीते महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना के तिलानेश गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने किसानों से खेती, उपज और सिंचाई की जानकारी ली। महिलाओं के साथ खेत में निराई गुड़ाई में भी हाथ आजमाया। बुजुर्गों से उनकी समस्याओं और युवाओं से शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शिव सागर तालाब की पाल पर पौधरोपण किया। उन्होंने गांव में पुस्तकालय सह अटल ज्ञान केंद्र, सड़क निर्माण और तालाब के सौंदर्यकरण से जुड़े कामों की घोषणाएं भी की। खरीफ फसलों में सूत्रकृमि की समस्या को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क किया है। मूंग, ग्वार, बाजरा और ज्वार की फसलों में पौधों की बढ़वार रुकने, पत्तियां पीली पड़ने और जड़ों में गांठें बनने जैसे लक्षण दिखाई देने पर जांच की सलाह दी गई है। किसानों से बिना विशेषज्ञ की सलाह के कीटनाशक या निमेटिसाइड का उपयोग नहीं करने को कहा गया है। विद्यालयों में विधिक साक्षरता कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम और शिकायत के विभिन्न माध्यमों की जानकारी दी जा रही है। विद्यार्थियों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भी जानकारी दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नागौर जिले में 290,136 वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ मिला है। इसी तरह नागौर जिले में चुनावी तैयारियों के साथ जनकल्याण, कृषि जागरूकता और सामाजिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसी के साथ नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार।

0: विधानसभा में विपक्ष रा हंगामा बीच समान नागरिक संहिता बिल पेश सदन री कार्रवाई अनिश्चित काल सारू टली जयपुर में ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियां री मीटिंग भी सैर सपाटा रा हलका में भेड़ी रणनीति और मदद बधावण माथे एक राय बनी सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा में सारू 3 साल री वकालत री जरूरत न घटार 1 साल की नी और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पीएम श्री विद्यालय राज्य में चौखी और नुआ जमाना री भणाई लिखाई रा आदर्श केंद्रा रा रूप में खास पहचान बनाई समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पेश किनो बिल पेश हुआ पाछे कांग्रेस रा विधायक सदन री कार्रवाई में शामिल नहीं भया इनु पहली सदन री कार्रवाई शुरू हुए ताई विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली कांग्रेस रा विधायक ने विधानसभा रा खास दरूजा माथे रोकण रो मुद्दो उठार ई माथे चर्चा करावण री मांग कीनी स्पीकर वासुदेव देवनानी प्रश्नकाल बीच ओ मुद्दो उठावण री मंजूरी नहीं दीनी ई पाछे कांग्रेस रा विधायक वेल माय नारा लगावण सागे हंगामो करण लाग्या दूजिकानी भाजपा रा विधायक कांग्रेस रे खिलाफ नारा लगाया इनु कामकाज में अड़चन आई और सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी कार्रवाई ओजू स्वरूप वनपनाई कांग्रेस रा विधायक रो हंगामो चालतो रहो जिन्हें देखता था का स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन रा 6ठा सत्र री कार्रवाई बेमियादी भगत सारू टाल दीनी केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा बढ़ता उपयोग न ध्यान रखता थका सैर सपाटा रा हलका में आई इन्हें असरदार तरीकों काम लेवन री जरूरत है वह जयपुर में ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियों री मीटिंग पूरी हुआ पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है शेखावत कहो कि मौजूदा दौर जिम्मेदारियों भरिया सैर सपाटा माथे विचार करण रो है वह कहो कि लाडला 10 साल में भारत में सैलानिया री तादाद 3 गुना बधी है पर्यटन मंत्री कहो कि सैर सपाटा न ध्यान रखता थका ई हलका में आई कौशल विकास री जरूरत है
1: पहली प्राथमिकता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टूरिज्म दूसरा था सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऐसे में सस्टेनेबिलिटी आज पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक चिंतन का विषय है सो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इस पर हमने विचार किया तीसरा क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र तेजी के साथ में विकसित हो रहा है भारत में भी देशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटक यात्राओं में पिछले 10 साल में 3 गुने से ज्यादा उछाल आया और चौथा था टूरिज्म एक्सचेंजेस एंड सीमलेस ट्रेवल फैसिलिटेशन ब्रिक्स देशों के बीच में किस तरह से ट्रैवलर सीमलेसली ट्रेवल कर सकते हैं हम उनको और अधिक फैसिलिटेट किस तरह से कर सकते हैं इन चारों विषयों पर हमने बातचीत की
0: केंद्रीय मंत्री बतायो कि ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियां री मीटिंग में जयपुर घोषणा पत्र तैयार करी चियो मीटिंग में ब्रिक्स देशां बीच सैर सपाटा रा हलका में भेड़ी रणनीति और एक दूजा री मदद बधावण रे बारा में आई एक राय बनी श्री शेखावत बतायो कि आवता भगत में आई घोषणा पत्र में साझा करी चिया मुद्दाओं सैर सपाटा रा हलका में नुआ आयाम बनेला जहां जयपुर ने बत्तो फायदो मिलेला ध्यानयोग है कि ब्रिक्स देशां रा पर्यटन मंत्रियों की मीटिंग पहली काल हर 19 अगस्त ने जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की मीटिंग रखी जी ही जिनमें AI कौशल विकास और सैलानिया सारू सुबिता में बढ़ोतरी समेत कई खास मुद्दा माथे चर्चा करी जी दूजी कानी पुणे में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सदारत में ब्रिक्स देशां रा संचार मंत्रियों की मीटिंग रखी जी इनमें ब्रिक्स रा सदस्य देशां रा संचार मंत्री सूचना और संचार प्रौद्योगिकी डिजिटल बदलाव और नुआ कामा रा बारा में सहयोग मजबूत करण माथे विचार कीनो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष हलकाओं जुड़िया 20 स्टार्टअप रा मुख्य कार्यकारी अधिकारियां और स्टार्टअप शुरू करण वाला सागे बातचीत कीनी ई मौके वे कहो कि देश रो अंतरिक्ष हलको वैश्विक प्रतिभा कंपनियां और निवेश खींचण रो केंद्र बन सके है ई पाछे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी कहो कि वहां ने नौजवान कारोबारियां और नुआ काम करण वालों मिलर खुशी भी जो एक नुआ और चुनौती वाला हलका माए ध्यान जोग हिम

0: रुद्रसाव की नो राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनाव रा ऐलान पहले करी जिया तबादला और पोस्टिंग सारू जारी हुकम री पालना 24 अगस्त ताई तय करावण सारू कहो है। राज्य निर्वाचन आयोग कहो के चुनाव रा ऐलान पहली नियुक्ति रा हुकम जारी वेवण री सूरत माए रीता ओहदा माथे पद स्थापन करियो जा सके है। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव 2026 री तैयारियां चल रही है। आज चित्तौड़गढ़ माए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू चुनाव ड्यूटी वाला कर्मचारियों रो पहलो रेंडमाइजेशन कीनो। इन दौरान नगर निकाय आम चुनाव सारू बनाई जी पोलिंग पार्टियां रा पीठासीन अधिकारी प्रथम द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों रो रेंडमाइजेशन करी जियो। जालौर माए मास्टर ट्रेनर री सिखावण रो कार्यक्रम राखी जियो। पाली माए वोटर लिस्टा माए नाम मंडावण समेत न्यारा न्यारा जरूरी बदलाव करण सारू मतदान केंद्रा माथे खास शिविर लगाया जा रहा है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सुप्रीम कोर्ट प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा देवण सारू LLB डिग्री हासिल करण वाला बाबत जरूरी 3 साल री वकालत रा अनुभव री जरूरत न घटार 1 साल कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति AG मसीह और के विनोद चंद्रन रिपीट ओ फैसलो दिनो। पीठ कहो कि 25 मई 2025 31 मार्च 2027 पीछे भर्तियां सारू निकाली जी न्यायिक सेवा परीक्षावां देवन सारू उम्मीदवार पहली रा अनुभव बगैर ही पात्र वैला। हालांकि आ परीक्षावां माए चुनी चिया उम्मीदवारा ने नियुक्ति सरू माए प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियां रा तौरू फैला। वान न्यायिक अकादमी माए 1 साल री सिखावण लिया पाछे 1 साल रो व्यवहारिक प्रशिक्षण लेवण वैला। ध्यानयोग है कि सुप्रीम कोर्ट लाडला साल 20 मई ने LLB करोड़ा नुआ लोगों ने प्रवेश स्तर री न्यायिक सेवा परीक्षा देवण रोक दीना हा और ई सारू कम 3 साल री वकालत रा जरूरी अनुभव री व्यवस्था दीनी ही। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो है कि PMC स्कूल राज्य में बेहतर क्वालिटी और नुआ जमाना री भणाई लिखाई रा आदर्श केंद्रा रा तौर पहचान बना रहा है। वे आज जयपुर PMC स्कूलों रा संस्था प्रधाना सागे राज्य स्तरीय वेबिनार माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि आ स्कूलों माए नाम मंडावण वाला विद्यार्थियों री तादाद बधी है। इम्तिहान रा नतीजा माए गुणात्मक सुधार आयो है। वह हर महीना 10 संस्था प्रधाना सागे बातचीत करण और सबों चोखा अभ्यासान पूरा प्रदेश माए लागू करण रा हुकम ही दीना।
1: सारे PMC स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है और जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का ये बढ़ा है और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सब जगह देखा गया है। कई प्रिंसिपल्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी बताया है। काफी लोगों ने हरियालो राजस्थान में भाग लिया है। विस्तृत रूप से प्लांटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का इस पर शिक्षा को स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत बृहद प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में हम सारे बैठ के जो डिसाइलोइजेशन है रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनोवेशन हैं इसके बारे में चर्चा हुई है।
0: वेबिनार में प्रदेश भर चुनी जी PMC स्कूलों रा संस्था प्रधान और जिला और ब्लॉक स्तर रा शिक्षा अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीकों शामिल फिया। ध्यान जोग है कि शिक्षा मंत्रालय कानून जारी करी जी स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग री राष्ट्रीय सूची माए प्रदेश री 11 स्कूल शामिल है। चमाए 3 PMC स्कूल ही भेड़ा है। जयपुर भिवाड़ी संगरिया और श्री गंगानगर माए कारोबारी प्रतिष्ठान माथे करी जी GST सर्वे री कार्रवाई माए 5 करोड़ रुपयों बत्ती टैक्स गड़बड़ियां उजागर हुई है। कार्रवाई रे दौरान संबंधित करदाता 2 करोड़ 3 लाख रुपयों बत्ती रकम जमा कराई। GST विभाग टैक्स देवण वालों केवल असल और कानूनी लेन देन रा आधार इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC रो दावो करण और GST कानून री पालना तय करण री अरज कीनी है। हरियाणा राजस्थान अभियान रा तहत झुंझुनूरा मेडिकल कॉलेज परिसर माए वन महोत्सव कार्यक्रम राखी जियो। मेडिकल कॉलेज वन विभाग न्यारी न्यारी स्कूल और सामाजिक संस्थावां री ओर मिलर राखी जियाई कार्यक्रम रे दौरान कॉलेज परिसर माए करीब 1000 पौधा रोपी जिया। कोटपुतली बहरोडरा पाना देवी मोरीजवाला राजकीय कन्या महाविद्यालय माए आज अंगदान जीवन संजीवनी अभियान रा तहत पोस्टर निबंध और नारा लिखण री

राम राम सा। कार्यक्रम सुनिए सगळ्या परिवाराने, भाई रामेश्वर गा घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। भाई लोगो, आज गीतारो गजरो लेर हाजिर हूँ और आज थे थारा जगह फरमाइशी गीत लोक है, अपना गीत वजन जगह है भी सुनूंगा। और बीच उपेला के एक बात है, क्योंकि अब सावण को जो महीनों चालन ला रहे है और इस सावण के महीने का माँ अपना जो को वो कार्यक्रम है वो फिलहाल आप ले रहे हैं। कि रिम जिम बरसे मेड़ो, करिम जिम बरसे मेरड़ो, एर आंगन भिजो जाए, एर माटी री सोंदी खुशबू मन ने खूब रिझाए, क डाली ऊपर मोर नाचे, एर पंख पसार घणो, एर पपीहो पीऊ पीऊ बोले, लागे मीठो मन ने घणो। बिल्कुल सा अपा फरमाइश का नाम जो कहे बे बांचांगा बादगमा, बीशु पिला अपा सुनाओ थारी फरमाइश को गीत।

लियो जी था ने गीत सुनायो और आपने दी फरमाइश पुग्गी है रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षिता और अंगसग है खुशी गोस्वामी दतरंगी भटापारा छत्तीसगढ़ चूँ हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा

0: पुग्गी है गांव बांडेवाला फाजिलका पंजाब से हूँ। ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया रजत बेबी ग्रीमा बगड़िया परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से हूँ। अशोक ग्रोवर प्रवीण ग्रोवर नीति ग्रोवर पवनीत ग्रोवर विक्रमजीत ग्रोवर फरमाइश आपने थी पुगती है गांव खोकरावाड़ी से हूँ। विनोद बारासा विशाल बारासा विकास बारासा रोशनी बारासा और सगुन बारासा और आप फरमाइश आपने थी लिखत भेजी है जिला कासगंज यूपी से हूँ। योगेंद्र नायक गीता नायक निहारिका नायक सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया अफरमाइश आपने लिखर भेजी है गांव नाईवाड़ा जिला हनुमानगढ़ से हूँ। वेद मिड्डा और अलका मिड्डा और पपीरिया से हूँ। आपने ती फरमाइश आई है कमलकांत गुप्ता दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से हूँ। गजानंद येले नवदीप येले विश्वदीप येले अशोक येले और आफरमाइश नई बस्ती गंज डुंडवारा से हूँ। आपने ती पुगती हुई है मोहम्मद यासीन हाशमी नजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तोशिफ हाशमी मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। गुजरात गांधीग्राम शूँ प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश चोरी भी आपने दी फरमाइश लिखकर भेजी है और आप फरमाइश पुगी है छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी शूँ और लिखी है प्रकाश बोरगांवकर सुषमा बोरगांवकर प्रांजलि सोहम बोरगांवकर सदानंद विराज और स्वीट अंशुमन बेबी ओवी अंगसा गए है। आप फरमाइश कंवर कॉलोनी बड़वा है जिला खरगोन मध्य प्रदेश हूँ प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली लिखकर भेजी है और आप फरमाइश पुगती हुई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मेंडी शर्मा सौरव शर्मा साइना शर्मा और निवान शर्मा। गांव 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ से हूँ। पवन सुथार अमरजीत सुथार मोहन सुथार सुनील सुथार विष्णु सुथार शिव सुथार और सोनू मिस्त्री और शिव कुमार। अब थाने एक भजन सुना सियाँ और ई भजन की फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है ग्राम गोपी खीरिया भंडेर जिला दतिया से हूँ। राहुल पाल ज्योति अंजना पाल हरी मोहन पाल और बेबी लक्ष्य आप फरमाइश आपने ती अमरपुरा जालू खाट से हूँ लिखकर भेजी है जगदीश चंद्र प्रजापति बिमला प्रजापति मोनू प्रजापति राजेंद्र प्रजापति और हरीश चंद्र पुनिया। सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्य खुराना आरव खुराना मेघा आशीष अनुज छोटू एस के पप्पी आ फरमाइश लिखकर भेजी है MLB रोड ग्वालियर से और आ फरमाइश आपने ती पुगती हुई ऐसा अगली चक 58 NP राइसनगर से सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी मलखट हरबंस लाल मलखट बनवारी लाल मलखट गोपीराम मलखट ललित कुमार मलखट नरेंद्र कुमार मलखट मीनाक्षी मलखट मोनिका देवी और गीतांजलि। श्रीगंगानगर से आपने ती फरमाइश लिखकर भेजी है नेकीराम बंसीवाल जोनी बंसीवाल धनराज बंसीवाल और आ फरमाइश रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा और गोगवा जिला खरगोन मध्य प्रदेश हूँ उस्मान खत्री रिजवान खत्री अब्दुल गफार खत्री और फरमाइश आपने ती लिखर भेजी है सागली नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। सुरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन परमजोत मिशन और बेबी जानविका भी आपने ती फरमाइश लिखकर भेज दी और गांव हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदु पार्वती हिमांशु गुदारा श्रवण रेणुआ हंसराज भाटिया मनीराम रणजीत राम करोड़ीवाल सुरेंद्र भादु आम भी आपने ती फरमाइश लिखकर भेजी ऐसा। मां देवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारनी ठाकुर सूरज ठाकुर ज्योति ठाकुर बबू रियांश ठाकुर थाने सगला ने एक भजन सुना दिया लियो सुनो सा।
1: मेरे सतगुरु दी बगसीस पल पल गुरु को बंदना मैं चरण निमावो सीस

लियो जी थने तुलसीराम और बांग साथियों आवाज गम भजन सुना दियो। आपने ती ई भजन की ही फरमाइश के तौर पर कुछ कागज जक है बेबी पुगेड़े है, तो वो पहलो जो को कागज आपने ती लिखर भेजड़ो है और शामिल करूँ टीडिया सर नोर शू बेगराज पारिक बिमला शिशपाल सुमित्रा कविता मनीषा विवेक लोकेश और पूरो परिवार मलोड कैंप पंजाब से 37 मिगलानी सीमा।

लियो जी थाने गी सुनायो चौमास और आपने ती फरमाइश पुगी गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर सिंह सोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित और हेमत और अंग सग है अंजू बेनीवाल आ फरमाइश गांव हरिपुरा अभोर सू महेंद्र बिश्नोई वेद प्रकाश बिश्नोई अमित बिश्नोई अजय बिश्नोई और ज्ञान बिश्नोई भी लिखकर भेजी है। फरमाइश पुगी है आपने तई सुरतगढ़ सिंह बाबूलाल खत्री सुगना देवी सुरेश आरती पूजा रजनी ऋतिक और अंगो पोतो है नानो सो नव्यास खत्री बसंत बिहार सुरतगढ़ सिंह ही अपना ती फरमाइश लिखकर भेजी है। जगदीश सैनी आशा सैनी गोविंद सैनी नीतू सैनी तनिषा सैनी और गांव भलौनगर सिंह घनश्याम शर्मा पार्श शर्मा संदीप शर्मा जयश्री सारस्वत आ फरमाइश अपने ती पुगती हुई है अरायण वार्ड नंबर 12 सिंह और आ लिखकर भेजी है आपने परमजीत कौर सोलंकी विष्णुदेव सोलंकी राजवीर सोलंकी रमन राठौड़ जस पंवार जगवीर सोलंकी और अंग सागे है रणजीत सोलंकी। आ फरमाइश आई है अपने ती अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा बेबी गव्या मल्होत्रा और भाई सुचा सिंह पाठक। अगली फरमाइश अपने ती लिखर भेजी है कनेरा मुल्हा पटियाला सू और लिखे मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका और अंग सागे है वंश बत्ता। फरमाइश के तौर पर अपने ती व्हाट्सएप पर लिखकर भेजी है सागली आ फरमाइश पुगती हुई है नई दिल्ली से और लिखी है मानसी गौरव कविता अरोड़ा और अंगो परिवार। अगली फरमाइश कोमल मेहरा कृष्ण मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुणाल मेहरा और भेजी है दादरी गेट भिवानी से आ फरमाइश पुगती हुई है अपने ती ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब शाही राही मेहराज जहाँ आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार सू गांव जोगीवाड़ा श्री गंगानगर सू प्रेम सहारण मोनिका और मनीष सहारण भी फरमाइश लिखकर भेजी है और फरमाइश पुगती हुई है आसाम सू और लिखी है हितेंद्र दास। भोपालगढ़ राजस्थान सू धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा और पूजा परिहार भी अपने ती फरमाइश पुगती कर दी सा और गांव घमंडिया सू जगदीश ढूकिया प्रमीला ढूकिया ज्योति आम अमन्ना सायना स्वयं ढूकिया और अंगी दोहती है इवा धरणिया और आ फरमाइश लिखर भेजी है तहसील भादरा नूपसर सू गजानंद सारस्वत ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार शाहिल और अंग सागह है राघव मुरारी लाल शर्मा मदन लाल शर्मा फुसाराम मील महावीर लोरा ममता मितू और किनू। आ फरमाइश सादेवाला सिरसा हरियाणा सू रामेश्वर माहर परमेश्वरी माहर जिगर और जानवी रणमिल के लिखी है। संदेश पुग्यो है पपीरिया सू कमलकांत गुप्ता दीपा गुप्ता रिमजीव गुप्ता अपने दोबारा लिख दी सना मंडी बठिंडा रोड मंडी डबवाली से अपने तिलिखर भेजे राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग और तानिया नारंग और गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल इंद्रा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया और आफरमाइश रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान शहनाज हनुमानगढ़ टाउन से लिखर भेजी है और फरमाइश पुगती हुई है जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश

जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गांव ढाणी लाल खां, नूर सू जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो विनोद खां, भी फरमाइश लिखर भेज दी। अलीका तहसील डबवाली सू रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी, और आ फरमाइश आपने ती डोंडी लोहारा बालो, छत्तीसगढ़ सू देवशंकर तामोरिया, जयदेव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डोली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया, और मास्टर अल कबीर लिखर भेजी है। फरमाइश पुगती हुई है गांव दौलतवाला दोले वाला जिला मोगा पंजाब सू सवण सिंह, और आ लिखर भेजी है फरमाइश अपने ती उदयपुर राजस्थान सू रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी, मिथिला नाचानी, और बाबू भाई चांदीवाला। मोताला महाराष्ट्र सू विजय सुरलकर, रत्नामाला सुरलकर, आरती कुमारी और ओम कुमार, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश सू अपने ती फरमाइश लिखर भेजी है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिक और बलवीर सिंह। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ सू बलकण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, सूरज कुशल वर्मा। आ फरमाइश आपने ती लिखर भेजी है केसरी सिंहपुर सू राजकुमार ठट्टई, कमल ठट्टई, मगनलाल सुमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा, और थानेदार भालू राम जी। वणीखेड़ा पंजाब शुभ मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी फरमाइश लिखर भेज दी, और फरमाइश गंज डुंडवाड़ा शू शमशूल कमर राही, शाहिमा शाहीन फातिमा, अदनान खान, फिजान खान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी भी अपने ती फरमाइश लिखर भेजी है। सा गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब सू हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, और जगत मंडावरा, राजू मंडावरा भी अपने ती फरमाइश लिखर भेजी है। और आप फरमाइश अपने ती लिखर भेजी है गांव रायण सू डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता दिशा, मोक्ष सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया। अगली फरमाइश अपने ती अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमार, नियति कुमारियाँ रणमिल के लिखी, और बेनी पट्टी मधुबनी बिहार से अपने ती लिखर भेजी है। ऐसा थाने सगला ने एक गीत सुना दिया, राखी गीत, क्योंकि अभी थोड़ा से दिन बाद में अपना रक्षाबंधन भी है, तो थे सुनो रक्षाबंधन को राखी गीत।

लियो जी थाने की सुनाई, और आपने दी फरमाइश पुगती हुई है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी छू, और लिखने वाला है मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से, और आ फरमाइश अपने ती पुगती हुई है सदर बाजार कुरावली छू, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा, फाजिलका पंजाब छू, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, सालनी खेड़ा और तमाशी खेड़ा, अंगसागे है वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा, और सागा नाम लिखे है जीवन भूख भी अंगसागे है। फरमाइश पुगती हुई है अपना तई चक 15 पीएसयू, सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन मेलबर्न, रॉबिन सिंह जोशन वेकुवर, और आप लिखकर भेजी है फरमाइश सांगली जिला केजत सरसू, अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह सबाहत, किर्त हुजरे और रेहान शेख, पाकुड़ झारखंड से फरमाइश आपने ती पुगी है उम्मत कुमार भगत, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भक्त, किशु ताशु, अर्णव आनंद, सत्य आनंद, और आ फरमाइश बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टुवेल और पी बी कुलथे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंत भोजनी भी आपने दी फरमाइश लिखकर भेजी है, और आप फरमाइश लिखकर भेजी है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान भी आपने दी फरमाइश लिखकर भेज दी, और फरमाइश पुगी है अगली आपने ती संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगवाड़ा चौक गुरैया जलंधर से, भागसर सिंह, ताराचंद वर्मा, दीक्षा, रितिका, सरोज, आ रल मिल के फरमाइश लिखकर भेजी है, और अगली फरमाइश आपने ती पुगी है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, और मजनू का टीला से कमल बालूजा।

मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकाशा मलिक और माही मलिक, अनारकली बाजार जगरामशु, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, आपने ती दोबारा व्हाट्सएप पर भी फरमाइश लिखकर भेज दिशा। और आप फरमाइश पुगे हनुमानगढ़ टाउन शू, सुल्तान सिंह तड़, कपिल देव, हिमानी जाखड़, मसूरी रेडियो लिसनर क्लब, बाजार रोड, मुंगी शाहपुर शू, आपने दी फरमाइश लिखकर भेजी है। मोहम्मद जाकिर मसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुभाना और यश मसूरी, श्री कर्णपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया भी फरमाइश लिखकर भेजी है। और आप फरमाइश पुगी है कोल सिटी बरका काना शू, अफजाल ताज, साहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और निपी साहनी, और अंग सागे है मोहम्मद अफजल मलिक चौटाला।

0: टीम को पूरे 60 मिनट अच्छी हॉकी खेलनी होगी।
1: जो हमने मिस्टेक्स की हैं और उस पर हमने काफ़ी बात की है मीटिंग्स में, एंड स्पेशली विदाउट बॉल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पोजीशन वाइज, उसको हमने कैसे मेंटेन करना है और कैसे अच्छे कम्युनिकेशन के साथ उन गलतियों को कवर कर सकते हैं हम, तो वो हमने एनालाइज किया है वीडियोज में। एक वही एरिया है कि जहाँ पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले मैचेस में वो सिली मिस्टेक्स आपको पनिश कर सकती हैं। हमारा वही है फोकस के डिफेंस में अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे पता है कि हमारी टीम चांसेस क्रिएट कर सकती हैं ओपोनेंट्स के सर्कल में जाके, और एटलीस्ट पीसी और गोल ऑन शॉट और गोल कर सकते।
0: इस बीच हम आपको बता दें, पूल डी के पहले दौर में वेल्स और पाकिस्तान को पराजित करने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से हार गई थी, जिससे दूसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत के पास एक भी अंक शेष नहीं बचा है। इंग्लैंड इस जीत के साथ 3 अंक लेकर पूल डी के दूसरे दौर में पहुंच गई है, जबकि पूल ए में नीदरलैंड के पास भी 3 अंक है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नीदरलैंड और अर्जेंटीना को हराना होगा। और अब बात कुश्ती की। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गई हैं। काजल लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। स्लोवाकिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में काजल ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ब्यौरे के साथ मुकेश।
2: काजल की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला कुश्ती में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने 76 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में हिस्सा लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चीन की झिंगरू सुन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम कर लिया।
3: काजल इज गोना डू इट ट्वाइस, सो गुड, शी हैज वन द टाइटल अगेन। काजल ऑफ इंडिया इन दिस अनस्टॉपेबल 2026 सीजन विद अनदर टाइटल, हर फिफ्थ ऑफ द ईयर, एंड दिस विल बी द मोस्ट स्वीट ऑफ ऑल।
2: फाइनल में काजल के लगातार दबाव बनाने के कारण सुन शुरू से ही बैकफुट पर रही। काजल ने इससे पहले 2024 में 69 किलोग्राम के वर्ग में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप और 2025 में 72 किलोग्राम में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। काजल ने 2025 में 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस वर्ष अपना वेट क्लास बदला और 76 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला किया। ये भारतीय रेसलर लगातार दूसरी बार अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं। वो अपने देश की दूसरी ऐसी रेसलर हैं जिन्होंने इस लेवल पर 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। पूरे टूर्नामेंट में काजल ने बिना कोई पॉइंट गंवाए खिताब अपने नाम किया। 2026 में ये उनका लगातार 5वां स्वर्ण पदक है। आज का दिन सिर्फ काजल के नाम ही नहीं था, बल्कि भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी रजत पदक अपने नाम किए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अगली खबर है अब जेवलिन थ्रो से। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के स्टेट ओलंपिक डे ला पोंटिस में लॉजिन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से शुरू होगा। और ब्यौरे के साथ निखिल।
4: लॉजिन डायमंड लीग बेहद रोमांचक होगी। इस इवेंट में कई ओलंपिक, वर्ल्ड और यूरोपियन चैंपियन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों की जेवलिन स्पर्धा में दक्षिण एशिया के 2 सबसे बड़े स्टार, भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रोमेश थरंगा पाथिरगे एक बार फिर आमने सामने होंगे। नीरज चोपड़ा लॉजिन डायमंड लीग 2026 में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लॉजिन में वे 4थी बार उतरेंगे। ये लीग चोपड़ा का 2026 एथलेटिक सीजन का 3रा प्रतियोगी इवेंट है। श्रीलंका के पाथिरगे ने जून में रोम में 92.62 मीटर के साथ ब्रसल्स में होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं पूर्व ओलंपिक और डायमंड लीग चैंपियन नीरज चोपड़ा स्टैंडिंग में पीछे हैं। उन्हें लॉजन में आज एक बड़े करिश्माई थ्रो की जरूरत है। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जैसे ही एक मजबूत फील्ड में यूरोपियन स्टार्स के साथ मुकाबला करेंगे। पिछले 4 ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले 5 जेवलिन सुपरस्टार्स 21 अगस्त को एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा और पथिरगे के अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो के वालकॉट और ग्रेनाडा के पीटर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस बीच भारत 22 और 23 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें हिस्सा लेंगी। इस बैठक में सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख एक साथ आएंगे। ताकि युवा मामलों और खेलों में सहयोग को मजबूत किया जा सके। ये बैठक युवाओं के विकास और सशक्तिकरण में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी और इसमें शिक्षा, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्याण और सतत विकास पर चर्चा होगी। ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और ब्रिक्स युवा सम्मेलन

के सामने आई खास सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के सहयोग से भविष्य के क्षेत्रों में पहचान की जाएगी। और खेल मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और उनके बयान शामिल होंगे और इसके बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही हैं, इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और एक पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बन गई हैं। विश्व कप हॉकी में आज रात भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के लॉजिन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मेरी सहयोगी निशा साहू और ज्योत्सना के साथ मुझे आज का स्पोर्ट्स स्कैन समाप्त करने की दें इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3

0: नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
5: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में

0: एक वैल्यू चेन का रिलेशन है, उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांगशु की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।

0: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha. अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार थे गजल गायक चंदन दास। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, गीत तुसी सुने ते साढ़े को मैसेज ते मेल जड़े पहुँचे ने। मैसेज साढ़े को पहुँचे जी इंद्रगढ़ तहसील संगरिया तो मास्टर बलवीर सिंह, भागसर तो चानन सिंह बराड़, बलराज सिंह बराड़, अनुराग सिंह बराड़ ते खुशदिल बराड़। डाकखाना निमनाबाद जीन तो जसवीर सिंह, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर का जिहड़ा मेल भी साढ़े कोल पहुंचा, कहिंदे कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत चंगा लग रहा, आनंद माण रहे हैं, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद आना चाहिए है ते तुसी आनंद माण रहे हो, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेल थोड़ा शामिल कर दिता गया। पिंड अरैण तो डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल, पूनम, चालिया ते इन्हां दे साथी जिहड़े कार्यक्रम सुन रहे ने, इन्हां दा मैसेज साढ़े कोल पहुंचा। श्री गंगानगर तो नेकी राम बंसीवाल, जौनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल का मैसेज भी पहुंचा। लो जी, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ तो इन्हां दा भी मैसेज पहुंचा। अगला मैसेज साढ़े कोल पहुंचा लातूर तो उस्मान शेख फौजी, शायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख ते करिश्मा शेख दा। अगला जिहड़ा मैसेज साढ़े कोल पहुंचा पिंड डाकखाना लोहगढ़ ठाकरूवाला तो स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरनोट सिंह, राम कुमार नारंग ते बलदेव सिंह भगवान गढ़ी। मेल दे नाल नाल साढ़े कोल जिहड़े मैसेज पहुँच रहे ने, मैसेज साढ़े कोल स्वर्ण सिंह पिंड दौलेवाला मोगा पंजाब तो कर रहे ने। अगला जिहड़ा मैसेज साढ़े कोल पहुंचा पिंड खारिया जिला सिरसा तो प्रताप सिंह जिनाकल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु ते बलदेव कटारिया दा। इन्हां ने हिंदी विच जिहड़ियां लाइनां लिख के भेजियां, लाइनां बहुत वधिया है पर हिंदी च है। सौंधी सौंधी इन हवाओं में कोई बात पुरानी है, ये मरुथल की रेत नहीं वीरों की कहानी है, जब पहली बूंद जमीन पर गिरती है सावन की, गूंज उठती है हर दिल में धड़कन इस आंगन की। जी हाँ दोस्तों, दिल दे जड़ा वेड़ा आएगा उस विच तां प्यार दी मुहब्बत दी गूंज हमेशा पैंदी रहिंदी है, पर ऐतकी थोड़ी मीह दी कमी महसूस हो रही है। करो रब अगे दुआवां कि मीह पैण ते जड़े वीराने आ वो आबाद होण। एक मैसेज साढ़े कोल होर पहुंचा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी ते दिशा गोस्वामी दा। अगला जड़ा मैसेज साढ़े कोल पहुंचा मिंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, पिंड शेरड़ा, तहसील पादरा तो अलीका डब्बवाली तो बसंत सिंह चन्न, यशिका, युवराज गांधी ते कुलदीप गांधी का मैसेज भी साढ़े कोल पहुंचा। बठिंडा रोड मंडी डब्बवाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग ते इन्हां दे साथियों का जड़ा मैसेज भी पहुंचा। फाजिलका पंजाब तो भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा ते आर बी खेड़ा दे नाल जीवन सिंह बूक का मैसेज भी पहुंचा। साढ़े साथी ने बिहार तो रविंद्र मोहनदास ते आशा देवी, इन्हों का मैसेज पहुंचा। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अबीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम का मैसेज भी पहुंचा। पिंड साबुआना फाजिलका तो करण कंबोज, चरण कंबोज, रियांश ते परिश कंबोज का मैसेज भी पहुंचा। पिंड सादे आला सरसा हरियाणा तो रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर ते जानवी भी कार्यक्रम में सुन रहे ने, इन्हों का भी बहुत बहुत शुकराना। रायसानगर तो सोन लाल जांगड़, मंजू जांगड़, सुनील, संजय, रवि, शिव प्रकाश, साबराम ते इन्हों साथी भी कार्यक्रम में सुन रहे ने, कहते कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू बहुत वधिया लग रहा। जसवीर सिंह जी का पिछली बार का जिहड़ा कार्यक्रम सीगा उन्हां दा जिक्र इन्होंने किया, थोड़ी मुहब्बत पहुँच रही है जी जसवीर सिंह जी ते। भोपालगढ़ राजस्थान तो त्रमेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा ते पूजा परिहार का मैसेज भी पहुँचा। बांडी कला फाजिलका पंजाब तो क्रिया

अंश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत ते मनीष चौधरी का मैसेज भी पहुंचा। ते मेल जिहड़ा साडे कोल पहुंच रहे ने, साडे साथी जिहड़े मैसेज भी करदे ते मेल भी करदे ने, इहने मेल पढ़न तो पहला लो सुन दे एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, टुडे मैसेज पहुँच रहे ने। अगला जिहड़ा मैसेज साडे कोल पहुँचे है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर तो लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीन हर्षिता ते खुशी गोस्वामी का। अगला मैसेज साडे कोल पहुँचे है पिंड हीरा वाली फाजिलका पंजाब तो सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र पादू कहते हैं कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। तो पिछला जो कार्यक्रम जसबीर सिंह जी का से बहुत वधिया लगे, इन्हों तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। रहन तुहानू नहीं दिंदे, शामिल तुसी हो गए हो। अगला जिहड़ा मैसेज साडे कोल पहुँचा तो मैसेज के नाल साडे कोल जिहड़े मेल पहुँचे इन्हें सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली बाजार जगराओं तो

रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया दा। दोस्तों मेल ते खत ते मैसेज थोड़े साढ़े कोले पहुंचे ने, पर एक गीत सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, साढ़े को मैसेज पहुँचा जरा मेल के राही पिंड ढाणी लाल खान नोहर तो। जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां। अगला जरा खत साढ़े को पहुँचे नई आबादी अबोर पंजाब तो, ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन सोनी, करण सोनी ते इन्हां दे साथियों का। लो जी, गिदड़वा पंजाब तो मनप्रीत तनेजा, प्रवीण तनेजा, पायल बेबी हनाशा ते नाल नाल पवन तनेजा ते योगेश तनेजा पदमपुर तो ये भी खत भेजते हैं मिट्टी की खुशबू दे लई। ते मिट्टी की खुशबू दे विच साढ़े कोल जिहड़ा मेल होर पहुँचे ने इन्हां विचों असी शामिल करते हैं। अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर ते मनिंदर इन्हे पंजाब तो। लो जी, अज दे कार्यक्रम की जड़ी कार्यक्रम जड़ा अंतिम पड़ाव ते पहुँच चुके हैं ते शामिल करांगे चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा ते विमला अनेजा नूं। हस के कट जिंदगी, तू एवें ना घबराया कर, छड़ निंदिया चुगली नूं मन चंगे पासे लाया कर, सब दा आउंदा समां चंगा, रब दी खेड अनोखी है, कोई ऐसा वी नहीं जग उत्ते जिंदगी जी दी सौखी है। इन्हां ही पंक्तियां दे नाल अपने दोस्त बलविंदर नूं दिओ इजाजत। कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू थोनू किस तरह का लगता है, सानू उम्मीद रहिंदी है थोड़े विचारां दी, थोड़े जड़े प्यार जड़ा साढ़े तक पहुँचता है, सानू बहुत चंगा लगता है। दिओ इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

नरसिम्हा। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और नगमा।

मैंने प्यार किया। लीजिए सुनते हैं, इस फिल्म में लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। इस गीत को असद भोपाली ने लिखा है, संगीत है राम लक्ष्मण का।

लता मंगेशकर की आवाज़ को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था राजा जानी। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। लीजिए सुनते हैं एक और गीत। राजा और रंक, लता की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, सुनिए।

राजकुमार, लीजिए इस फिल्म में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों को। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की धुन है।

0: आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर

0: the semi-finals. India trailed Netherlands 0-1 at half-time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।